0: Tracks with Radio Musty.
1: गुड मॉर्निंग वंस अगेन सभी को सुप्रभात। 6:10 हो चुके हैं और सैटरडे की सुबह धीरे धीरे रोशनी से भर रही है। आप सुन रही है चिलैक्स रेडियो मस्ती के साथ, मैं हूँ आपकी ही अपनी रिया। और क्या खूबसूरत शुरुआत हुई हमारे सेकंड आवर की राधा के सेना चली फिल्म लगान से। और आज का दिन खास भी तो है क्योंकि आज हम मना रहे हैं राधा अष्टमी, राधा रानी को समर्पित एक पवित्र दिन। राधा नाम में ही जैसे एक अलग ही मिठास है, प्रेम भक्ति समर्पण और सुकून का एहसास। और शायद इसीलिए आज सुबह का म्यूजिक भी कुछ और ही प्यारा लग रहा है। सैटरडे की सुबह वैसे भी थोड़ी अलग होती है ना, वीकडेज में सुबह आँख खुलती है तो दिमाग में होता है जल्दी उठना है, रेडी होना है, काम पर जाना है। लेकिन सैटरडे को आँख खुलते ही दिल कहता है कि आज थोड़ा आराम से, कोई जल्दी नहीं, कोई भाग दौड़ नहीं, बस सुबह की ठंडी हवा, चाय की खुशबू और रेडियो मस्ती के साथ खूबसूरत गाने। तो आज अपने सैटरडे को थोड़ा स्लो रखिए, थोड़ा मुस्कुराइए और जो खुशियां सामने हैं उन्हें आप महसूस कीजिए। राधा रानी का आशीर्वाद सब पर बना रहे, घरों में प्रेम और सुकून बना रहे और आज का दिन सबके लिए मंगलमय हो, बस हम यही प्रार्थना करते हैं। चलिए इस प्यारी सी सुबह को और भी खूबसूरत हम बनाएंगे हमारे इन गानों के साथ। और लेट मी टेल यू दैट वी हैव गॉट मिक्स गाने दिस आवर जो आपको पसंद जरूर आएंगे। सो आपके डेडिकेशंस मैसेजेस आप हम तक जरूर पहुंचा सकते हैं, नंबर आपको पता है लेकिन हम फिर भी बता देते हैं। सेंड अस आपके डेडिकेशंस मैसेजेस ऑन 5499-1294।
0: Chillax with Radio Musty,
2: your number one Bollywood radio station.

से ये मैसेज आया है और साथ ही हम हैप्पी बर्थडे विश करते हैं आंतिश बिकारी को जो रहते हैं वो सिल्मा सैतों थे. बेस्ट विशेज कमिंग फ्रॉम मामा लीना, पापा शर्मा आनंद, शर्वीना, दादा आनंद एंड दादी इंदिरा बिकारी, द होल बिकारी परिवार. विशिंग यू अ वेरी हैप्पी बर्थडे.

चलिए खूबसूरत गाना हम डेडिकेट करती है रानी स्वीता हुकुम के नाम जो है बुनाकर से। लगता है कि बुनाकर से काफी सारे लोग हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आपके पति रोशन की ओर

0: 19 सितंबर 2026 के प्रातःकालीन पहले समाचार बुलेटिन में आप सभी लोगों का स्वागत किया जाता है। सभी को नमस्ते और प्रणाम। सबसे आगे आज की सुर्खियां। सर शिव सागर राम गुलाम मेमोरियल सेंटर फॉर कल्चर आज शनिवार को करीब 11 महीने बाद जनता के लिए फिर खुलेगा। सर शिव सागर राम गुलाम की 126वीं जयंती के मौके पर सेंटर को नए रूप में तैयार किया गया है, जिसमें तस्वीरों, अखबारों की कटिंग्स, निजी सामान और किताबों को शामिल किया गया है। केवल नगर में कल सर शिव सागर राम गुलाम की 126वीं जयंती पर उन्हें भावभीनी श्रद्धांजलि दी गई। मॉरिशस के पहले प्रधानमंत्री के देश की स्वतंत्रता और सामाजिक आर्थिक विकास में योगदान को याद करते हुए स्मारक पार्क में पुष्पांजलि समारोह आयोजित किया गया। वहीं प्रधानमंत्री डॉ नवीन राम गुलाम ने राष्ट्रपिता की स्मृति को नमन करते हुए राष्ट्रीय एकता को प्रगति की अहम कुंजी बताया। मॉरिशस की रम को अब आधिकारिक तौर पर रोम दो मॉरिस भौगोलिक संकेत का दर्जा मिल गया है। ये प्रमाण मॉरिशस में बनी रम की उत्पत्ति, गुणवत्ता और पारंपरिक उत्पादन कौशल की रक्षा करने के साथ साथ अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में इसकी पहचान मजबूत करेगा। वर्ल्ड क्लीनअप डे से दो दिन पहले मॉरिशस में अवैध रूप से कचरा फेंकने वालों के खिलाफ कार्रवाई तेज। सरकार ने ओपरेशन जीरो डिपो शुरू की है, लेकिन लाशोमिया समेत कई इलाकों में अब भी खुले में कचरा फेंके जाने की समस्या बनी हुई है। त्रियोली की 60 वर्षीय सब्जी विक्रेता सरस्वती मुच्चा की गला घोट कर हत्या किए जाने की पुष्टि हुई है। उनका शव कल सुबह सब्जी के खेत में मिला। मामले की जांच थोबिश क्रिमिनल पुलिस कर रही है। राधा रानी के प्रेम और भक्ति में डूबा वातावरण श्रद्धा के साथ मनाई जा रही है। राधा अष्टमी मंदिरों में विशेष पूजा अर्चना और भजन कीर्तन के बीच भक्त राधा रानी से सुख शांति और समृद्धि का आशीर्वाद मांग रहे हैं। और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उत्तर पश्चिमी पाकिस्तान में मस्जिद के पास कार बम धमाके में कम से कम 21 लोगों की मौत हो गई और 100 से ज्यादा लोग घायल हुए हैं। इन सुर्खियों को अब हम विस्तार देते हैं। करीब 11 महीने तक बंद रहने के बाद प्लानवेयर स्थित सर शिव सागर राम गुलाम मेमोरियल सेंटर फॉर कल्चर आज शनिवार से जनता के लिए पुनः खुल रहा है। यह पुनः उद्घाटन सर शिव सागर राम गुलाम की 126वीं जयंती के अगले दिन हो रहा है। कल उनकी जयंती के अवसर पर एक स्मरण समारोह भी आयोजित किया गया था। सेंटर में सर शिव सागर राम गुलाम के जीवन और योगदान को दर्शाने वाली प्रदर्शनी को नए सिरे से तैयार किया गया है। इसमें आर्काइव से प्राप्त नई सामग्री शामिल की गई है, जिसमें तस्वीरें, अखबारों की कटिंग्स, निजी सामान और सर शिव सागर राम गुलाम के जीवन तथा उनके सफर पर आधारित पुस्तकें शामिल हैं। इस पर ज्यादा जानकारी करुणा लालू दे रही है।
1: एक जाना पहचाना पता, एक ऐतिहासिक घर जो सर शिव सागर राम गुलाम का है, पोटली में नंबर 87 दीपोज गली स्थित इस घर में उन्होंने 1936 में अपना मेडिकल क्लिनिक शुरू किया था। बाद में वे यहीं रहने लगे और 1965 तक इसी स्थान पर अपने चिकित्सीय और सार्वजनिक जीवन से जुड़े कार्य करते रहे। आज प्रधानमंत्री डॉक्टर नवीन राम गुलाम ने अपनी बहन सुनीता जयपुर के साथ मिलकर सर शिव सागर राम गुलाम मेमोरियल सेंटर फॉर कल्चर को फिर से जनता के लिए खोल दिया। लकड़ी से बने इस ऐतिहासिक घर के 8 कमरे, राष्ट्रपिता के रूप में पहचाने जाने वाले सर शिव

0: आगाराम गुलाम के जीवन के एक हिस्से की कहानी बयां करते हैं। यहाँ उनकी तस्वीरें, पुराने अखबारों में प्रकाशित लेख और उनके निजी जीवन से जुड़ी वस्तुएं प्रदर्शित की गई हैं। इस पुनः उद्घाटन के अवसर पर सबसे पहले शशि सागराम गुलाम की प्रतिमा के समक्ष श्रद्धांजलि अर्पित की गई। ये परिसर उनके पारिवारिक जीवन की यादों को फिर से जीवंत करता है, उनके चिकित्सीय सफर को सामने लाता है और देश की सेवा के लिए उनके समर्पण की कहानी भी बयां करता है।
1: केवल नगर सर शिव सागर राम गुलाम के जन्म स्थान पर कल प्रधानमंत्री डॉ. नवीन राम गुलाम समेत कई गणमान्य लोग एकत्र हुए और राष्ट्रपिता की 126वीं जयंती मनाई। सर शिव सागर राम गुलाम मेमोरियल पार्क में पुष्पांजलि अर्पित की गई। इस दौरान देश के इतिहास में उनके योगदान को याद किया गया, खासकर मॉरिशस की स्वतंत्रता हासिल करने में उनकी भूमिका और उन महत्वपूर्ण सुधारों के लिए जिन्होंने देश को आकार देने में अहम योगदान दिया। इस अवसर पर प्रधानमंत्री डॉ. नवीन राम गुलाम ने सर शिव सागर राम गुलाम की स्मृति को नमन किया। उन्हें मॉरिशस की धरती से जन्म लेने वाला सबसे महान जननेता बताया और कहा कि राष्ट्रीय एकता आज भी देश की प्रगति की प्रमुख कुंजियों में से एक है। इस पर प्रधानमंत्री डॉ. नवीन राम गुलाम को सुनते हैं।
2: विन सी पु सेलेब्रे प्लि ग्रैंड ट्रिब कि मॉरिस इन कोने से ग्रास आ सो पॉलिटिक स्ट्रेटजी qu'il nous confère, sa capacité contourne ma difficulté et sa persévérance qu'il finit réussir à gagner une liberté, une indépendance. Vous connaissez à l'époque-là, ma famille hindoue, pas très content, moi, j'ai des enfants dans mon école payant. Qui fait? Je le paye. Je le paye qui j'ai des enfants pour le gagner, apprendre côté européen. Je préfère vos enfants de Bédka. C'est si ça parle que voilà l'époque, il y a de Bédka. On parle hindi, on parle guitare, ramayan, je peux sentir tout cela. Mais qu'est-ce qui est arrivé? Quand j'étais dans 5 ans, il venait à Soulier, il vivait dans la campagne, je me suis posé l'aise un peu en lambeau. Les tous mes enfants peuvent marcher, ils mettent uniforme et Soulier. Il y a pas un garçon là, il dit écoute bien, ils ont bien l'école. Qu'il y fait? Les enfants 5 ans, ça. Ils rentrent ensemble en zone. Il y a l'école. Moi, c'est plus qu'un mille. Quand ils rentrent là-bas, c'est l'école catholique. Pose une question à ce dire. Madame Cyrus, un enfant, l'école payant à l'époque-là. Pour un enfant, peine en uniforme, l'IPAC, rentre leur casquette, et le professeur qui se bouffait là. J'ai mon petit, mais à toute la case. Mais Madame Cyrus, au lieu de faire ça, elle fait aller assiser sur place. Et après, quand l'école finit, Madame Cyrus dérangée, prend lit, amène lit sur la case. GMD Acha. GMD Acha, c'est une langue terre. Elle dit, il y a envie d'un man étudiant mauricien. Je ne peux pas causer à eux, il est dans les vignes côté sur sa gare. Je dis, mais où qu'il peut faire? Je dis, moi, je peux faire médecine. Acha, je me dis, qu'il faut dire, moi, je peux faire. Je dis, parce que moi, je vais arrêter. Je me fais une arrêté. Je n'ai pas si bien la casse. Là, mon petit travail, mon grand masse casse, et là, mon continue. J'aime des achats. Pas de dire non, mais quand ils rentrent Maurice, ils ramassent l'argent, ils ont réussi à suivre sa gare pour les continuer sur l'étude. C'est moi qui dis que parfois, comme tout, je fais comme une analyse. Je ne peux pas accepter. Je sais bien qu'il est arrivé là. Premier sens à suivre sa gare, une madame catholique. Deuxième sens, un musulman qui aide lui. Fini sur l'étude. C'est un SSR qui est passé. La cause, ça lui tient sa phrase, l'unité dans la diversité. C'est lui qui tient sa phrase. Et il élève nous comme ça, monsieur là. Quand il dit, il élève nous comme ça, pas fait de discrimination. Mon maman aussi pareil, mon maman là, c'est un 11. Lui aussi, il n'a pas fait de discrimination. Il a l'unité pour nous ici. Imagine bien, c'est mon pays, c'est où pays, c'est nous pays, ça, l'île Maurice là. As one people, as one nation in peace, justice and liberty. Un pays, une nation, un destin. Ça te rêve, c'est ça.
1: खबरों को आगे बढ़ाते हैं।

0: शस्की रम ने एक नई उपलब्धि हासिल की है। होम दे मोरिस को अब आधिकारिक तौर पर भौगोलिक संकेत यानी जियोग्राफिक इंडिकेशन का दर्जा मिल गया है। इस प्रमाण से मॉरिशस में उत्पादित रम की उत्पत्ति, गुणवत्ता और उत्पादन से जुड़े पारंपरिक कौशल की सुरक्षा होगी। साथ ही अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में मॉरिशस की रम की पहचान को और मजबूत करने में मदद मिलेगी। होम दे मोरिस का लेबल हासिल करने के लिए रम का उत्पादन मॉरिशस में ही होना अनिवार्य होगा। इस व्यवस्था के तहत 7 डिस्टिलरी शामिल हैं। नाबूदो ने सेंटोबें, ओक्सानम क्राफ्ट डिस्टिलरी, मेजिन शमारेल, ओबनिकेन और ग्रेस, इन सभी की अपनी अलग उत्पादन शैली बरकरार रहेगी, लेकिन होम दे मोरिस का दर्जा हासिल करने के लिए उन्हें एक समान निर्धारित मानकों का और नियमों का पालन करना होगा। ग्रेस के रम ब्रांड मैनेजर फ्लोरेंस दे कोरियोलिस को सुनते हैं, जिनसे बात की नियमा नारायण हदी ने।
1: मॉरिशस में रम बनाना साल 2000 के आसपास शुरू हुआ था। काफी समय तक मॉरिशस की रम आज जितनी अच्छी है उतनी अच्छी नहीं थी। उस समय चीनी मिलों के लिए रम बनाना इतनी बड़ी प्राथमिकता नहीं थी, लेकिन आज मॉरिशस की रम ने दुनिया की बाजार में अपनी एक खास जगह बना ली है। इसी वजह से अलग अलग रम बनाने वाली संस्थाएं एक साथ आई हैं, ताकि मॉरिशस की रम की अच्छी गुणवत्ता को बनाए रखा जा सके। रम की अच्छी गुणवत्ता शुरू से ही जरूरी है। हम चाहते हैं कि मॉरिशस की रम की अपनी पहचान और उसकी अच्छी गुणवत्ता हमेशा बनी रहे। इसीलिए ऐसे कोई भी विधि नहीं अपनाई जानी चाहिए जो मॉरिशस की रम की गुणवत्ता के अनुरूप ना हो।
0: ये मान्यता ऐसे समय में मिली है जब दुनिया भर में प्रीमियम और हाथों से बने रम की मांग बढ़ रही है, खासकर यूरोप, अमेरिका और एशिया में। मॉरिशस के लिए इसका उद्देश्य अपनी रम को अन्य उत्पादों से अलग पहचान दिलाना, उसकी प्रामाणिकता सुनिश्चित करना और निर्यात बाजार में उसकी विश्वसनीयता को मजबूत करना है। मेक्सा ने इस भौगोलिक संकेत को लागू करने के लिए स्थानीय रम उत्पादकों के प्रयासों में समन्वय किया है। संस्था की एक अहम भूमिका होम दे मोरिस नाम, उसकी पहचान और प्रतिष्ठा की रक्षा करना भी है, खासकर इसके गलत या अनधिकृत इस्तेमाल को रोकना। इस बारे में मेक्सा की निदेशिका लीलावती राजमन जूसरे ने विस्तार से जानकारी दी। मेक्सा की निदेशिका को सुनते हैं।
1: मॉरिशस की मिट्टी में कुछ ऐसे खास रासायनिक और भौगोलिक गुण हैं जो मॉरिशस के लिए बहुत विशेष हैं। इसी वजह से यह बनाने वाली रम और यहाँ की चीनी में भी कुछ ऐसे खासियतें हैं जो दुनिया के दूसरे देशों में आसानी से नहीं मिलती। मॉरिशस में यूरोपियन स्थान के बीच एक व्यापार समझौता है। इस समझौता में एक खास प्रावधान है जिसके तहत मॉरिशस की रम को विशेष भौगोलिक पहचान दिलाने के लिए काम शुरू किया गया है। इस पहचान के मिलने से मॉरिशस बनाने वाली रम को अपनी अलग पहचान और मान्यता मिल सकेगी।
0: वर्ल्ड क्लीन अप डे से 2 दिन पहले अवैध रूप से कचरा फेंकने के खिलाफ अभियान तेज कर दिया गया है। खास सरकार ने इस सप्ताह ऑपरेशन जीरो डिपो शुरू किया है। जनवरी से अब तक करीब 100 अवैध कचरा स्थलों की पहचान की जा चुकी है, जबकि 1000 से अधिक शिकायतें दर्ज हुई हैं। हालांकि लाशुमिया में निगरानी और कार्रवाई के बावजूद खुले में कचरा फेंकना जारी है। सीमेंट के टुकड़े, कबाड़ और घरेलू कचरे के ढेर लगातार बढ़ रहे हैं और कुछ जगहों पर तो कचरे के बड़े बड़े पहाड़ बन गए हैं। वहीं जो लोग कानूनी तरीके से कचरा फेंकना चाहते हैं, उनके लिए ट्रांसफर स्टेशन की सुविधा उपलब्ध है। इंस्पेक्टर अमासे के मुताबिक इन स्टेशन पर 500 किलो तक कचरा मुफ्त में जमा कराया जा सकता है। जॉन मिक मार्टिंगेल की 8 सितंबर 2024 में हुई मौत की न्यायिक जांच कल रोजिल अदालत में जारी रही। सुनवाई के दौरान 14 जुलाई को बुबासन जेल में मैजिस्ट्रेट डेनिस विलियन और डीपीपी के प्रतिनिधियों द्वारा की गई घटनास्थल की जांच पर चर्चा हुई। इसके अलावा अदालत में पहले जांच जेल अधिकारियों द्वारा दिए गए बयानों को भी सुनवाई का हिस्सा बनाया गया। लोविना सूफी, याचना मिश्रा।

0: जेलों के असिस्टेंट सुपरिंटेंडेंट मोहम्मद आसिफ रामतुला और अधिकारियों क्रितिश गुहा, जोनाथन वाइटिलिंगा, राजनंदलाल और इमानुएल कोंस्टन को दोबारा गवाही के लिए बुलाया गया। उन्होंने डीपीपी के प्रतिनिधि बैरिस्टर रिकी भुकन के सवालों के जवाब दिए। पूछताछ के दौरान ये बात सामने आई कि अदालत में इन अधिकारियों द्वारा दिए गए बयान बुबासन जेल में घटनाओं के पुनर्निर्माण के दौरान सामने आए दृश्यों से हमेशा मेल नहीं खाते थे। बैरिस्टर भुकन ने जॉन माइक मोतेगाल की मौत के बाद बार्कली पुलिस स्टेशन में दर्ज किए गए बयानों में भी समानताएं बताई। ये बयान एएसपी मोहम्मद आसिफ रामतुला और चारों अधिकारियों ने दिए थे। एक समय पर इमानुएल कोंस्टन ने स्वीकार किया कि पुलिस को अपना बयान देने से पहले उन्होंने और उनके सहयोगियों ने आपस में एक दूसरे से सलाह ली थी। हालांकि अन्य अधिकारियों ने इस बात से इनकार किया। मामले की सुनवाई 24 सितंबर तक स्थगित कर दी गई है। उस दिन बैरिस्टर भुकन इस मुद्दे को फिर से उठाएंगे। गौरतलब है कि जॉन माइक मोतेगाल की मौत से एक दिन पहले एएसपी आसिफ रामतुला ने उनकी कोठरी की तलाशी का आदेश दिया था। तलाशी के दौरान एक मोबाइल फोन जब्त किया गया था। पिछली सुनवाई के दौरान बैरिस्टर रिकी भुकन ने तय प्रक्रियाओं के उल्लंघन की ओर भी इशारा किया था। क्यूपिप के रहने वाले जॉन माइक मोतेगाल खुद को क्रिप्टोकरेंसी में निवेश करने वाला एक अमीर निवेशक और बेल्जियम में एक रेस्टोरेंट का मालिक बताते थे। उन्हें ड्रग तस्करी के मामले में न्यायिक हिरासत में रखा गया था। उन पर अक्टूबर 2022 में गिरफ्तार की गई दो यूक्रेनी महिलाओं के जरिए करीब 4,60,00,000 मॉरिशन रुपए की सिंथेटिक ड्रग्स मॉरिशस लाने की कोशिश करने का संदेह था। उनके परिजनों का मानना है कि न्यायिक हिरासत के दौरान उनके साथ मारपीट की गई थी। वहीं पोस्टमार्टम में ये निष्कर्ष निकला कि उन्होंने आत्महत्या की थी। उनके परिवार वालों ने मामले की दोबारा जांच के लिए दक्षिण अफ्रीका के एक फोरेंसिक डॉक्टर से दूसरी पोस्टमार्टम जाँच भी कराई थी।
1: खबरों को आगे बढ़ाते हैं। BMW 740D Drive, McLaren और Turan, Aston Martin Coupe और Mini Cooper, जो Yashish Amrit और उनकी प्रबंधन कंपनी की हैं, अब FCC द्वारा नीलाम नहीं किए जा सकेंगे। Yashish Amrit ने कल सुप्रीम कोर्ट से इंजंक्शन यानी अदालत से रोक लगाने का आदेश हासिल कर लिया। इन वाहनों को मनी लॉन्ड्रिंग की जांच के तहत जब्त किया गया था। अपने वकीलों के माध्यम से Yashish Amrit ने कहा कि उन्हें प्रेस के जरिए इन वाहनों की नीलामी के बारे में पता चला। उनका कहना है कि जाँच अभी जारी है और जब्ती का आदेश नहीं होने की स्थिति में इन वाहनों की बिक्री और बिक्री से पहले उनका निरीक्षण दोनों गैर कानूनी होंगे। FCC को 25 सितंबर को अदालत में ये स्पष्ट करना होगा कि इन वाहनों की बिक्री क्यों जारी रखी जानी चाहिए। और तलब है कि FCC 21 और 22 सितंबर को दूसरी नीलामी आयोजित कर रहा है। करीब 40 वाहनों के निरीक्षण की प्रक्रिया इस रविवार को निर्धारित है। 60 वर्षीय सरस्वती मुचिया की मौत गला घोंटने से हुई है। पुलिस के फोरेंसिक डॉक्टर द्वारा किए गए पोस्टमार्टम के बाद ये निष्कर्ष सामने आया है। त्रियोली की रहने वाली सरस्वती मुचिया का शव कल सुबह इलाके में स्थित उनके सब्जी के खेत से बरामद किया गया। वह सब्जी बेचकर अपना जीवन यापन करती थी। मामले की जाँच थोबिश क्रिमिनल पुलिस ने शुरू कर दी है। राधा, प्रेम, भक्ति और समर्पण का वह नाम जो श्री कृष्ण के बिना अधूरा और श्री कृष्ण जिनके बिना पूर्ण नहीं माने जाती। राधाष्टमी के पावन अवसर पर आज देश भर में भक्त राधा रानी के चरणों में श्रद्धा और प्रेम अर्पित कर रहे हैं। मंदिरों में विशेष पूजा अर्चना, भजन कीर्तन और धार्मिक अनुष्ठानों के बीच भक्तिमय वातावरण बना हुआ है। ये पर्व केवल राधा रानी के जन्मोत्सव का अवसर नहीं बल्कि प्रेम की उस पवित्र भावना का उत्सव है जिसमें भक्ति की सबसे बड़ा समर्पण बन जाती है। इस पर एक विशेष रिपोर्ट याचना मिश्रा द्वारा।

प्रेम, भक्ति और समर्पण का पर्व राधाष्टमी। भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि को ये पर्व मनाया जाता है। ये पावन दिन

0: भगवान श्री कृष्ण की परम भक्त और उनकी दिव्य प्रेम शक्ति माने जाने वाली राधा रानी के प्राकट्य दिवस के रूप में मनाया जाता है।
1: ब्रज धाम राधा जी की, ब्रज धाम राधा जी की राजधानी लागे।
0: राधा रानी का नाम आते ही मन में प्रेम, भक्ति और समर्पण की भावना जाग उठती है। कृष्ण के साथ राधा का संबंध केवल प्रेम की कहानी नहीं बल्कि आत्मा और परमात्मा के मिलन का प्रतीक माना जाता है।

0: धार्मिक मान्यताओं के अनुसार राधा रानी का जन्म बरसाना में हुआ था, इसी कारण उन्हें बरसाने वाली राधे कहा जाता है। उनके पिता का नाम वृषभानु और माता का नाम कीर्ति देवी बताया जाता है।
1: श्री राधे राधे राधे बरसाने वाली राधे,
0: राधा रानी बचपन से ही श्री कृष्ण के प्रति गहरी भक्ति और प्रेम से जुड़ी है। राधाष्टमी के अवसर पर मंदिरों में विशेष पूजा अर्चना की जाती है, राधा कृष्ण की प्रतिमाओं का श्रृंगार किया जाता है और भक्त पूरे श्रद्धा भाव से राधा रानी का स्मरण करते हैं। राधा रानी को केवल कृष्ण की प्रिया के रूप में नहीं बल्कि भक्ति के सर्वोच्च स्वरूप के रूप में भी देखा जाता है। उनका जीवन हमें सिखाता है कि सच्ची भक्ति में किसी फल की इच्छा नहीं होती, लेकिन उन्हें सबसे बड़ा फल ये मिला कि अभी भी उनका नाम श्री कृष्ण से पहले लिया जाता है, राधा कृष्ण।

आज भी भारत के कई शहरों में अभिवादन के रूप में लोग राधे राधे कहते हैं। राधा कृष्ण के मधुर भजनों से वातावरण में आध्यात्मिकता घुल जाती है। यही है राधा अष्टमी का संदेश। जहाँ प्रेम है वही भक्ति है, और जहाँ भक्ति है वहाँ राधा रानी का आशीर्वाद है।

0: आप सभी को राधा अष्टमी की शुभकामनाएं। आज 19 सितंबर को सुबह 9 बजे से पोर्ट लुइस में उनकी सीट पर सनातन धर्म टेंपल्स फेडरेशन की ओर से महाकाव्य रामायण पर आधारित रामायण गायन प्रतियोगिता का आयोजन हो रहा है। इस आयोजन के लक्ष्य के बारे में मौसे सनातन धर्म टेंपल्स फेडरेशन की सेक्रेटरी नवीन मातादीन ज्यादा जानकारी दे रहे हैं, उनको सुनते हैं।
1: जय श्री राम। मॉरिशस सनातन धर्म टेम्पल फेडरेशन सभी हिंदुओं को सूचित कर रहे हैं कि शनिवार 19 सितंबर 2026 यानी कि सैटरडे 19 सितंबर 2026 9:30 सवेरे मॉरिशस सनातन धर्म टेम्पल फेडरेशन भवन पोर्ट लुइस में अयोध्या रामायण प्रतियोगिता के संदर्भ में रामायण गायन प्रतियोगिता, ट्रेडिशनल नॉर्मल वर्शन, ट्रेडिशनल चौताल वर्शन और मॉडर्न क्लासिकल वर्शन मंदिरों के लिए आयोजित कर रहे हैं। सांस्कृतिक विरासत को बचाने, आध्यात्मिक और नैतिक मूल्यों को बढ़ावा देने और इस महाग्रंथ रामचरितमानस की सीख को युवा पीढ़ी तक पहुंचाने के लिए रामायण गायन प्रतियोगिता आयोजित कर रहे हैं। तो आप सभी आइए और देखिए कि हमारे नई पीढ़ी हमारे मंदिरों के टोलियाँ कैसे प्रदर्शन कर रहे हैं। जय श्री राम।
0: अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उत्तर पश्चिमी पाकिस्तान में एक मस्जिद के पास हुए कार बम धमाके में कम से कम 21 लोगों की मौत हो गई है जबकि 100 से अधिक लोग घायल हुए हैं। पाकिस्तान की समाचार एजेंसी के अनुसार मृतकों में 15 पुलिसकर्मी और 4 साल का एक बच्चा भी शामिल है। ये हमला खैबर पख्तूनख्वा प्रांत के कोवात शहर में हुआ जहां बंदूकधारियों ने पुलिस की एक सुविधा पर भी गोलीबारी की। पाकिस्तान के राष्ट्रपति आसिफ अली जरदारी ने एक बयान में धमाके में घायल लोगों के जल्द स्वस्थ होने की कामना की है। बताया गया है कि धमाका स्थानीय समय अनुसार दोपहर 1:15 पर हुआ। उस समय मस्जिद में शुक्रवार की

नमाज अदा की जा रही थी। मौसम का हाल, आम हालत, पूर्व दक्षिण पूर्व से आने वाले बादल हमारे स्थानीय मौसम को प्रभावित करेंगे। अगले 24 घंटों के लिए अनुमान है, सुबह के समय आमतौर पर मौसम सुहाना होगा। दिन के दौरान धीरे धीरे पूर्वी और सर्द प्रांतों वाले इलाकों में बादल घिराएंगे और बारिश होगी। ऊंचे इलाकों में कोहरा छाया रहेगा। रात के दौरान भी पूर्वी और सर्द प्रांतों वाले इलाकों में थोड़ी वर्षा होगी, अन्य इलाकों में बादल घिरे रहेंगे। हवा पूर्व दक्षिण पूर्व की ओर से 15 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से बहेगी। प्रवाह रेखा के पास समुद्र सामान्य रहेगा और 2 मीटर की लहरें उठेंगी। तापमान, अधिकतम तापमान सर्द प्रांतों पर 20 से 23 डिग्री सेल्सियस के बीच, साहिली इलाकों पर अधिकतम तापमान 25 से 28 डिग्री सेल्सियस के बीच, न्यूनतम तापमान सर्द प्रांतों पर 15 से 17 डिग्री सेल्सियस के बीच और तटीय इलाकों पर न्यूनतम तापमान 19 से 22 डिग्री सेल्सियस के बीच। आज सूर्योदय सुबह 6:02 पर और सूर्यास्त शाम 6:05 पर।

इसके साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हो चला। इसकी तैयारी में पूरे समाचार डेस्क का और कंसल पर हमारे सहयोगी फैजन का सहयोग मिला, जिन्हें हम धन्यवाद देते हैं। सुनने वालों को भी आपके ध्यान के लिए धन्यवाद। बढ़ते हैं अब हम शोक समाचारों की ओर। शोक समाचार सुनिए। रॉबर्ट एडवर्ड हॉट स्ट्रीट स्टैनली रोजिल में 70 साल की 70 years old के श्री सदानंद अंगुचिया, जिन्हें टून के नाम से लोग ज्यादा जानते थे, की मृत्यु हो गई है। उनकी अर्थी सोमवार को उनकी पत्नी बीना अंगुचा के घर रोजिल से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए बीघा की शमशान भूमि ली जाएगी। समय के बारे में बाद में बताया जाएगा। विदेशी लेन थ्रियोली में 73 साल की 73 years old के श्री हनुमान बंधुआ जो TBS के रिटायर्ड बस कंडक्टर हैं, की मृत्यु हो गई है। उनकी अर्थी आज दिन के 1 बजे उनके घर थ्रियोली से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए SSS लेन थ्रियोली की शमशान भूमि ली जाएगी। कमीशन टुडे एट 1 PM। सुमाहू लेन पोचित पॉइंट पीमो में 81 साल के 81 years old के श्री आर्यवीर सुभग जिन्हें सूर्यदत्त के नाम से लोग ज़्यादा जानते थे और जो SSRN अस्पताल में रिटायर्ड नर्सिंग ऑफिसर थे, की मृत्यु हो गई है। उनकी अर्थी आज दिन के 1 बजे उनके घर पोचित पॉइंट पीमो से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए प्रेमदेव पपाई की शमशान भूमि ली जाएगी। कमीशन टुडे एट 1 PM। पेलावाल स्ट्रीट पुत्रदो विलाज में OCA के आगे 63 साल के 63 years old के श्री राम प्रकाश रामकुलिया जिन्हें सुनील के नाम से बहुत ज़्यादा जानते थे, कि मृत्यु हो गई है। उनकी अर्थी आज दिन के 1 बजे उनके बेटे ऋषिदेव रामकुलिया के घर पुतोदो विलाज से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए बेलमो की शमशान भूमि ली जाएगी। कमीशन टुडे एट 1 PM। लक्ष्मण रोड ब्रिजवेजिया में 75 साल के 75 years old के श्री कृपानंद लक्कू जिन्हें राजेंद्र के नाम से बहुत ज़्यादा जानते थे, कि मृत्यु हो गई है। उनकी अर्थी आज सुबह 11 बजे उनके घर ब्रिजवेजिया से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए लावोचा की शमशान भूमि ली जाएगी। क्रिमेशन टुडे एट 11 AM। आकाशिया स्ट्रीट बाउंड्री रोजिल में 73 साल के 73 years old की जनाब मुख्तार अहमद अमीरुद्दीन जिन्हें मुख्तार के नाम से बहुत ज्यादा जानते थे, इंतकाल कर गई हैं। इनका जनाजा आज दिन के 2 बजे इनकी बहन काशिद बेन सुदन के मकान बाउंड्री रोजिल से उठाकर दफनाने के लिए सैमोते मोहोशका कब्रिस्तान ले जाएगा। Funeral today at 2 p.m. Rye Road, Grand Bay, 79 साल के 79 years old की श्री रजनी दियाला जिन्हें राजन के नाम से लोग ज़्यादा जानते थे, कि मृत्यु हो गई है। उनकी अर्थी आज दिन के 12:15 पर नाशा पेलाउदों दिलियन सैन बुबासे से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए लिसालिन की शमशान भूमि ले जाएगी। कमीशन टुडे आज 15 PM। डिफो एबेन में 83 साल की 83 years old की श्रीमती वारा दंबर कपन पैदाशाम तिरुवेंगादम और जिन्हें विनोदा वागादंबर के नाम से बहुत ज़्यादा जानते थे, कि मृत्यु हो गई है। उनकी अर्थी आज सुबह 10:15 पर उनके घर

0: बेंसिंग ठाकर अंतिम संस्कार के लिए गांधी पालमा कैटोबोन की शमशान भूमि ले जाया जाएगी। कमीशन टुडे एट 15 मिनट्स पास 10 AM राय रोड कैटोबोन में राय रोड ये शोक समाचार एक बार फिर सुन लेते हैं। रुद बासें कैटोबोन में 68 साल के 68 years old के श्री मोहलाल गोयराप जिन्हें सुनील के नाम से बहुत ज्यादा जानते थे की मृत्यु हो गई है। उनकी अर्थी आज दिन के 12 बजे उनके घर कैटोबोन से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए गांधी पालमा की शमशान भूमि ले जाएगी। क्रिमेशन टुडे एट नून बाल्मीक रोड सैमिशेल बेलेरिवियर सेश में 33 साल के 33 years old के श्री महादेश सौदागर जिन्हें परमुन के नाम से लोग ज्यादा जानते थे कि मृत्यु हो गई है। उनकी अर्थी आज सुबह 11 बजे उनके भाई मंदेश सौदागर के घर सैं मिशेल बेलेरिवियर सेश से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए बोशों की शमशान भूमि ले जाएगी। क्रिमेशन टुडे एट 11 AM स्कूल रोड दागुचिया में 53 साल के 53 years old के श्री धर्मानंद ज्योति जिन्हें जो एक पूर्व पुलिसकर्मी थे की मृत्यु हो गई है। उनकी अर्थी आज सुबह 11 बजे उनके घर दागुचे से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए सैकोसा सैपिया की शमशान भूमि ली जाएगी। कमिश्नर टुडे एट 11 AM शोक में डूबे इन सभी परिवारों के प्रति हमारी गहरी संवेदना है।
1: Welcome to RM2
2: Radio Musti
1: North, South
2: 103.5
1: East, West
2: 96.4
1: Center
2: 99.4
1: RM2 Radio Musti The latest news and the greatest mix of music. Feel the Musti.
3: Good morning, सभी को सुप्रभात। घर मिलाते चलिए सुबह के ठीक 7:01
4: Chillax with Radio Musti.
1: Your number one Bollywood radio station.

0: Lounge with Radio Musty.
1: गुड मॉर्निंग सभी को. देखिए 7:07 परफेक्ट टाइमिंग. अब तो सूरज पूरी तरह से निकल आया है. सैटरडे की सुबह है, ब्राइट सनशाइन, आसमान में रोशनी और साथ में वो हल्की सी ठंडी हवा. क्या खूबसूरत कॉम्बिनेशन है ना. आप सुन रहे हैं रिलैक्स सिर्फ रेडियो मस्ती पर, और मैं हूँ आपके साथ आपकी अपनी ही रिया. और थर्ड आवर की शुरुआत हुई एकदम रॉयल अंदाज में, घर मोरे परदेसिया के साथ. कुछ गाने सिर्फ गाने तो नहीं होते, वो एक पूरा एटमोसफियर क्रिएट कर देते हैं, एक पूरा वातावरण जैसे हम कहते हैं. और सुबह सुबह जब धूप खिड़की से अंदर आ रही हो, ठंडी हवा चल रही हो और बैकग्राउंड में एक खूबसूरत धुन हो, तो वीकेंड और भी खास लगने लगता है. और लेट मी टेल यू दैट आज का दिन वैसे ही बहुत ही खास है. राधाष्टमी हम मना रहे हैं. राधा रानी को समर्पित इस पवित्र दिन पर सभी श्रोताओं को दिल से शुभकामनाएं. राधा रानी की कृपा आपके जीवन में प्रेम, शांति और खुशियां लेकर आए. और देखिए आज रिलैक्स का मूड भी बिल्कुल वैसे ही है, सुकून भी, म्यूजिक भी, थोड़ी मस्ती भी और बहुत सारी पॉजिटिव वाइब्स भी. तो अगर आप घर पर है, चाय या कॉफी लेकर बैठ गए हैं, ब्रेकफास्ट की तैयारी में लगे हुए हैं या ब्रेकफास्ट ले रहे हैं, आप एंजॉय कीजिए. जी हाँ, ब्रेकफास्ट आप एंजॉय कीजिए. स्पेशली अगर आप परिवार वालों के साथ बैठे हुए हैं तो ये तो सोने पे सुहागा वाली बात हो ही गई. वो वंडरफुल टाइम उनके साथ था. और अगर आप मॉर्निंग वॉक पर निकल चुके हैं, इस धूप और हवा को फील कीजिए. हैव अ वंडरफुल टाइम इसके साथ भी. एंड अगर आप आज काम पर जा रहे हैं तो कोई बात नहीं, रेडियो मस्ती को अपना वीकेंड कंपेनियन आप बना लीजिए. सैटरडे है, मूड अच्छा रहना चाहिए. चलिए म्यूजिक का सिलसिला हम जारी रखते हैं. योर डेडिकेशन मैसेजेस ऑन 5499-1294.
0: Chillax with Radio Musty,
2: your number one Bollywood radio station.

फॉर सोफा है. और ऑनेस्टली सोफा प्लान को आप अंडर एस्टिमेट मत कीजिए. कभी कभी पूरे हफ्ते के बाद एक पीसफुल सैटरडे आफ्टरनून, फेवरेट खाना और फेवरेट म्यूजिक, इससे बेहतर क्या चाहिए. लेकिन आज एक थोड़ी सी रिक्वेस्ट हम करते हैं आपसे कि जो भी प्लान बनाए उसमें खुशी के लिए थोड़ा स्पेस आप ज़रूर रखिए. अगर फैमिली के साथ है तो फ़ोन थोड़ा साइड में रखिए, दोस्तों के साथ है तो पुरानी यादें ताज़ा कीजिए और इससे तो आप बहुत कुछ और कर सकते हैं. तो चलिए, वी हैव गॉट ब्यूटीफुल म्यूजिक यहाँ पर टू कीप यू एंटरटेन्ड. और लेट मी टेल यू दैट थोड़ी देर में 5-6 मिनट बाद आप ऑल्सो सुन पाएंगे स्पोर्ट्स की खबरें. सो स्टे राइट ट्यून्ड.

0: Tracks with Radio Musty.
1: Well, I'm sure कि आप में से बहुतों ने सैटरडे प्लान्स तो बना लिए होंगे, तो चलिए आपके प्लान्स हम जानते हैं। वैसे कई लोग कहेंगे कि आज तो ओनली घर की सफाई, कुछ लोगों के लिए शॉपिंग, कुछ के लिए फैमिली लंच, कुछ के लिए दोस्तों के साथ आउटिंग, और कुछ लोग तो कह रहे होंगे कि मेरा प्लान तो आज सिर्फ

0: Sports Magazine is brought to you by Quality Deco, the floor expert.
1: Sports News.
2: Radio Musti in the mix.
3: अपने घड़ी मिला दी चलिए सुबह के ठीक 7:31 और समय हो चला है आपको हम बताएंगे कि आजकल स्पोर्ट्स जगत में क्या कुछ हो रहा है. वी हैव विकास जी इन द स्टूडियो. हेलो गुड मॉर्निंग. नमस्ते आपको विकास जी.
4: नमस्ते रिया एंड वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल स्पोर्ट्स फैंस. ये प्रातःकालीन स्पोर्ट्स बुलेटिन शुरू करते हैं इंग्लिश प्रीमियर लीग के साथ जिसका पांचवा सप्ताह कल रात आरंभ हुआ. चेल्सी के समंदर में जैसे अचानक बवंडर आ गया. ब्रैंटफोर्ड ने चेल्सी के द ब्लूज को 3-0 से हराकर द ब्लूज की मुश्किलें और भी बढ़ा दी हैं. जबकि ब्रैंटफोर्ड का टाइम लगता है आ गया. अब वो लीग टेबल में मजबूती के साथ तीसरे स्थान पे है 9 अंक लिए. सो कल रात ब्रैंटफोर्ड ने चेल्सी को 3-0 से तोड़ा. फर्स्ट हाफ में कोई भी गोल न बन पाया तो सेकंड हाफ के 61वें दूसरे भाग के 61st मिनट पर जे अंटोनी का एक पहला गोल, फिर 83rd पर ईगो चियागो ने प्रीमियर लीग का अपना पहला गोल स्कोर किया और इंजरी टाइम में भी जाकर ब्रैंटफोर्ड ने चेल्सी को घायल किया. गोल कर्टेसी ऑफ फैबियो का वैल्यू खेल के 94th मिनट पर. सो ब्रैंटफोर्ड 3-0. उल्लेखनीय है कि ये चेल्सी का लगातार तीसरा लीग मैच है जिसमें उसे जीत नहीं मिली है. यानी अब क्षाबी अलोंजो की टीम को इस तूफान से निकलकर अपनी लय और आत्मविश्वास वापस पाने की बड़ी चुनौती है. हुआओ पेड्रो घायल है, कल खेल नहीं पाया तो गोल भी नहीं बन पाया. यानी चेल्सी की समस्या जारी है. ब्रैंटफोर्ड 3-0. बाकी मैच आज और कल खेले जाएंगे. पांचवा सप्ताह जारी रखा जाएगा आज शाम 3:30 अर्ली किक ऑफ. ये भी एक हॉट मुकाबला साबित होने वाला है बिटवीन टोटेनहम हॉटस्पर एंड एस्टन विला. ये मैच टोटेनहम के मैदान में खेला जाएगा शाम 3:30 टोटेनहम वर्सेस एस्टन विला. फिर शाम 6:00 लीग लीडर आर्सेनल एवे जाएगी ब्राइटन एंड होव के मैदान पे. ये भी एक काफ़ी कठिन मुकाबला साबित हो सकता है, खासकर इसलिए भी कि सप्ताह के दौरान ब्राइटन ने मैनचेस्टर यूनाइटेड को तोड़ा था 2-0 से हारने के बावजूद. 3-2 से उसकी जीत हुई थी, वो भी द रेड डेविल्स के विरुद्ध. सो आज शाम 6:00 ब्राइटन वर्सेस आर्सेनल. उसी समय एवर्टन के द टॉफीज खेलेंगे इप्स्विच टाउन के विरुद्ध. न्यूकासल यूनाइटेड का मुकाबला अपने सेंट जेम्सेस पार्क में हल सिटी से. और आज रात 8:30 लेट मुकाबला नॉटिंगहम फॉरेस्ट वर्सेस कोवेंट्री सिटी. बाकी 4 मैच कल के लिए निर्धारित हैं. कल शाम 5:00 लिवरपूल के लाल एवे जाएंगे बोनमुफ के मैदान पे. बोनमुफ लिवरपूल कल शाम 5:00. उसी समय लीड्स यूनाइटेड खेलेगी क्रिस्टल पैलेस के विरुद्ध. जबकि अर्लिंग हैलैंड की मैनचेस्टर सिटी अपने इतिहाद में होगी संडरलैंड के खिलाफ. और मैनचेस्टर यूनाइटेड एवे जाएगा कल रात 7:30 फुलहम के मैदान पे. इतना सब कुछ इंग्लिश प्रीमियर लीग को लेकर. कल रात इंग्लैंड के लीग चैंपियनशिप में भी जो मात्र मैच खेला गया उसमें ब्रिस्टल सिटी ने वाटफोर्ड को 1-0 से परास्त किया. फिर स्कॉटिश चैंपियनशिप में क्वींस पार्क 0 एयर यूनाइटेड 2. एफए कप के सेकंड क्वालिफाइंग राउंड में 2 मैच, वोचेस्टर 2 स्ट्रैटफोर्ड 1, येट 0 चिपेनहम 0. फिर बात करें यदि स्पेन की लालीगा की तो जो मात्र मैच खेला

0: गया। उसमें एल्चे की जीत हुई स्पान्योल के मैदान पे, स्पान्योल 1-3। जर्मनी के बुंडेसलीगा में भी कमाल हो गया, बवाल मच गया, कोलाहल कह सकते हैं, जब अलायंस अरेना में बायर्न म्यूनिख ने यूनियन बर्लिन को 7-0 से पछाड़ा, यानी एक नहीं, दो नहीं, तीन भी नहीं, 7-7 गोल स्कोर किए बायर्न म्यूनिख ने। जमाल मुसालिया ने खाता खोला 18वें मिनट पर, हैरी केन का एक डबल, माइकल ओलिजे ने एक हैट्रिक स्कोर किया और सहबारी का आखिरी गोल 70वें मिनट पर। फिर वे थक गए, बायर्न म्यूनिख 7 यूनियन बर्लिन 0। उल्लेखनीय है कि हैरी केन ने बुंडेसलीगा में अपना सेंचुरी बनाकर एक नया कीर्तिमान, एक नया रिकॉर्ड स्थापित किया है, यानी 98 मैचों में 100 गोल, ऊपर से एक गोल और जोड़ा, 101 गोल अब तक उसने बना लिए हैं, यानी जब से साल 2023 से वो बायर्न म्यूनिख में गया है तब से कुल मिलाकर इन ऑल कंपटीशन उसने 152 गोल्स इन 154 अपीयरेंसेस। केन का फेम जारी है, उसको सेंचुरी हार्दिक बधाई। सो बायर्न म्यूनिख 7 यूनियन बर्लिन 0, बाकी मैच आज रात खेले जाएंगे। इटली के सेरी ए में मोन्जा ने सासुओलो को 2-1 से परास्त किया। तो फ्रांस के लीग ए में आईएस मोनाको की जीत हुई, उसने रेसिंग क्लब दे लांस को 2-1 से परास्त किया, ब्रेन और ग्रैडिट का 1-1 गोल फॉर आईएस मोनाको। बता दें कि मोनाको अब लीग टेबल के शीर्ष स्थान पर आ गया है, 5 मैचों में 13 अंक, लिल अभी दूसरे स्थान पर है 10 अंक लिए, रेन के पास भी 10 अंक, जबकि ओलंपिक दि मार्सेय अभी 13वें स्थान पर है, उसके पास केवल 3 अंक, पेरिस सेंट जर्मेन थोड़ा ऊपर आ पाया है 8 मैचों के बाद, उसके पास हैं 5 अंक। सो फुटबॉल में इतने सारे मैच, इतने सारे नतीजे। बता दें कि मैनचेस्टर यूनाइटेड के युवा सेंसेशन 15 वर्षीय जे गैब्रियल ने खुद अपना रजिस्ट्रेशन रद्द, कैंसिल करने की मांग की है। खबरों के मुताबिक जे गैब्रियल फ्रांस के बाद अब स्पेन पहुंच चुका है, जबकि यूरोप के टॉप क्लब भी उसे साइन करना चाहते हैं, जिसमें पेरिस सेंट जर्मेन, बार्सिलोना, रियल मड्रिड और बायर्न म्यूनिख भी शामिल है। जे गैब्रियल फ्रांस भी गया था, अब स्पेन में है, मंजिल दूर नहीं, इसलिए चले चलो। क्रिकेट में भारतीय टीम ने अफगानिस्तान को T20 सीरीज में हरा तो दिया, किंतु बड़ी बात अभिषेक शर्मा की 30 बॉल सेंचुरी है, 30 गेंदों में उसने सेंचुरी बनाकर नया रिकॉर्ड स्थापित किया, और जिसके तुरंत बाद उसने भरे मैदान में तपस्या यानी मेडिटेशन का पोज लिया और पूरे विश्व को भारत का राज बताया। फिलहाल भारत और जापान के बीच एक और T20 सीरीज इस समय जारी है, अगला मैच मंगलवार को खेला जाएगा जापान में, जापान वर्सेस इंडिया T20 मुकाबला। मॉरिशस में स्थानीय फुटबॉल में कोसाफा अंडर-20 चैंपियनशिप के प्रथम मैच में ही हमारी अंडर-20 टीम हार गई। माटोला मोजाम्बिक के ABB स्टेडियम में कल शाम नमीबिया ने सरजू गौरशंकर के जवानों को 1-0 से हराया। अब कल रविवार को मॉरिशस के हमारे बेबी डोडोज अपना दूसरा मैच खेलेंगे सेशल्स अंडर-20 टीम के विरुद्ध मापुतो के स्टैडियो दे जिम्पेटो में, इसलिए हार्दिक शुभकामनाएं। अगली मुलाकात आज रात 7-9 के बीच हमारे झंकार बीट्स में, यहीं पर RM2 रेडियो मस्ती पर। इसलिए अभी के लिए बाकी के प्रोग्राम रिया के साथ, तब तक के लिए आज्ञा दीजिए, नमस्कार और शुभ दिन।
1: थैंक यू सो मच विकास जी, और शुभ दिन आपको भी।
2: दिस मैगजीन वॉज ब्रॉट टू यू बाय क्वालिटी डेको, द फ्लो एक्सपर्ट।
3: Pour donner vie à vos projets de rénovation, choisissez Quality Décor. Carrelage, quartz, granit, ardoise, slab, tout est là pour vous dans nos 12 showrooms répartis sur toute l'île. Besoin d'un petit coup de pouce? Nous offrons des facilités de crédit pour rendre vos rêves accessibles et un service de transport pour vous livrer à la maison. Venez découvrir nos produits de qualité tout en profitant des conseils de nos experts. Suivez-nous sur Facebook, Quality Décor, pour ne pas manquer nos offres exclusives. RM2 Radio Musty.

0: Chillax with Radio Musty.
1: रिलैक्स के थर्ड आवर में छोटी सी बात शेयर करते हैं।
2: वेल, हम सब जिंदगी में किसी ना किसी चीज़ का इंतजार करते रहते हैं, ये तो सब आप जानते हैं। जब वक्त मिलेगा, जब छुट्टी होगी, जब सब काम ख़त्म हो जाएगा, तब एंजॉय करेंगे। लेकिन सच ये है कि काम कभी पूरी तरह ख़त्म नहीं होता, इसलिए खुशी को फ्यूचर के लिए सेव मत कीजिए। आज जो खूबसूरत है, आज ही आप उसे फील कीजिए। आज की धूप, आज की हवा, आज की चाय, आज का म्यूजिक और आज किसी अपने की स्माइल, ये सब छोटी चीज़ें लगती है, लेकिन इन्हीं छोटी चीज़ों से ही तो लाइफ ब्यूटीफुल बनती है। तो इस सैटरडे को एक छोटा सा प्रॉमिस आप कीजिए खुद पर।

0: थोड़ा कम प्रेशर रखेंगे. हर चीज का जवाब आज ही नहीं चाहिए क्योंकि इट्स अ वीकेंड टाइम. हर प्रॉब्लम का सोल्यूशन आज ही नहीं चाहिए. आप अच्छे से ठंडे दिमाग से सोच विचार लीजिए, तब सोल्यूशन मिल ही जाएगा. और आज बस इतना काफ़ी है कि हम थोड़ा मुस्कुराए, अपनों के साथ समय बिताएं और दिल को सुकून दें. और जब म्यूज़िक अच्छा हो, मौसम खूबसूरत हो और वीकेंड सामने हो, तो फिर रिलैक्स करना तो बनता है. जी हाँ, यही हम यहाँ पर लेकर आते हैं, यही इरादा लेकर आते हैं आपको रिलैक्स फील करवाने का. टू ट्रिल एंड टू रिलैक्स, यही तो हमारे शो का मोटो है और यही हम कर रहे हैं. तो आप एंजॉय कीजिए रेडियो मस्ती की गाने सिर्फ रिलैक्स अप पर. और राधाष्टमी की बहुत बहुत शुभकामनाएं एक बार फिर. राधा रानी का आशीर्वाद सब पर बने रहे, बस हम यही प्रार्थना करते हैं. और इस सैटरडे को बनाइए आप सभी खुशियों, सुकून और ब्यूटीफुल म्यूजिक से भरा हुआ सैटरडे. ऐसे ही साथ निभाते चलिए. 7:51 हो चला है एंड विल हियर अ गुड सॉन्ग. एक बहुत ही खूबसूरत गाना है एंड दैट्स फ्रॉम द मूवी ऑल द बेस्ट.
1: Chillax with Radio Masti,
2: your number one Bollywood radio station.

चलिए इसी गाने के साथ इस टाइम फॉर मी रिया टू से बाय बाय टू ऑल ऑफ यू. आशा करती हूँ यू हैड अ गुड म्यूजिकल टाइम एंड हैव अ वंडरफुल सैटरडे. बाय बाय, टेक केयर.

आठ बजे के समाचार में सबको एक स्वागत कर जाता सबको एक नमस्ते आप प्रणाम। सबसे आगे हम नी देश के बारे में बतियाओ। अब जा सचिव सागर राम गुला मेमोरियल सेंटर

फॉर कल्चर आज सामदी के 11 महीना के बंद रहला के बाद जनता खातिर खुलता। शशि सागर राम गुलाम के 126वां जयंती के मौका पर सेंटर के नवा रूप में तैयार करगल बाटे, जेकर में तस्वीर, अखबार की कटिंग और उनकर निजी सामान और किताब भी शामिल बाटे। आर केवल नगर में काल शशि सागर राम गुलाम की 126वां जयंती पर उनकरा भावभीनी श्रद्धांजलि देवल गल। मॉरिशस के पहला प्रधानमंत्री के देश के स्वतंत्रता, सामाजिक, आर्थिक विकास व योगदान के याद करत स्मारक पार्क में उनकरा श्रद्धांजलि देवल गल, पुष्पांजलि समारोह के आयोजन भइल। आर यही अवसर पर प्रधानमंत्री डॉक्टर नवीन राम गुलाम सहित आर बहुत दूसर गणमान्य भी हुआ उपस्थित रहन जा। प्रधानमंत्री डॉक्टर नवीन राम गुलाम राष्ट्रपिता के स्मृति के नमन करत राष्ट्रीय एकता के प्रगति के अहम कुंजी बतैलन। मॉरिशस के रम के अब आधिकारिक तौर पर होम दो मोरिस भौगोलिक संकेत यानी जियोग्राफिक इंडिकेशन के दर्जा मिल गल बाटे। ई प्रमाण मॉरिशस में बनल रम के उत्पत्ति, ओकर गुणवत्ता और पारंपरिक उत्पादन कौशल के रक्षा करे के संगे संगे अंतर्राष्ट्रीय बाजार में एकर पहचान के भी मजबूत करेला। और दूसरा समाचार में ई भी शामिल बाटे कि वर्ल्ड क्लीन अप डे यानी के साफ सुथरा रखे के जो दिन है ओकर दो दिन अगते ही मॉरिशस में अवैध रूप से कचरा फेंके होला लोग के खिलाफ कार्रवाई तेज कर देवल गल बाटे। सरकार ओपेरेशन जीरो डेपो शुरू कर ले बाटे, पर लाशोमिया समेत कई गो दूसर इलाका में अभी ले खुला में कचरा फेंकल जाए के समस्या बनल बाटे। अब तनी हमनी कानूनी मामला के बारे में बताई ला जा। जॉन मिक मॉर्टिंगेल के 8 सितंबर 2024 में भयल मौत के न्यायिक जांच रोजिल अदालत में जारी रहल। काल की सुनवाई में बोबासें जेल में करलगल घटनास्थल के जांच और 5 जेल अधिकारी के पहला देवलगल बयान में सामने आल विसंगति पर सवाल उठावल गल बाटे। एगो दुखद घटना थ्रियोले में बीतल 60 के 3 के एगो सब्जी बेचे होला मौसम यानी कि सरस्वती मुचिया के गला घोंट के मुआ देवल गल बाटे। एकर पुष्टि भल बाटे उनकर दे उनका शव के काल फजीर के ओकरे खेत में मिलल। मामला के जांच थोबिश के क्रिमिनल पुलिस करता। आर याशिश इमरीत और उकर प्रबंधन कंपनी के 4 लग्जरी कार के नीलामी पर सुप्रीम कोर्ट अभी रोक लगा दिले बाटे। ऊपर एगो एजोंक्शन लगावल गल बाटे। FCC के 25 सितंबर के अदालत में ई बताए के पड़ी कि ई सब जो लुत्तो बाटे एके काहे बेचे के चाही और काहे नहीं बेचे के चाही। और अंत में आज हमनी मनावत हैं जा राधा अष्टमी। राधा रानी के प्रेम और भक्ति में डूबल बा अभी सब सारा वातावरण। श्रद्धा के संगे मनावल जात बा आज राधा अष्टमी। देश के कई गो मंदिर में आज विशेष पूजा अर्चना और भजन कीर्तन के बीच भक्त राधा रानी से सुख, शांति और समृद्धि के आशीर्वाद मांगत हवन जा। आप लोग के ई भी बता देवी ला जा कि जब हमने राधा रानी की बात बतियाए ला जा तो राधा रानी के नाम के संगे जुड़ेला श्री कृष्ण के भी नाम। और जब हमने श्री कृष्ण के बारे में बतियाए ला जा तो राधा रानी के हमने भुलाए नहीं सकब जा। राधा रानी के पावन अवसर राधा अष्टमी के पावन अवसर पर आज सब कोई के हमनी बहुत शुभकामना देवत हैं जा। आज ई जो धार्मिक अनुष्ठान बाटे ई भक्तिमय वातावरण में बितावल जाता। ई परब खाली राधा रानी के जन्मोत्सव के अवसर नहीं है बल्कि ई प्रेम के ऊ पवित्र भावना के उत्सव है जेकर में भक्ति ही सबसे बड़ा समर्पण बन जाला। और आप सब कोई के ई भी बता देवी ला जा कि आज ही के दिन आज सामदी के पोर्ट लुइस के सनातन धर्म टेम्पल्स फेडरेशन के अपन सीट में हुआ परी सनातन धर्म टेम्पल्स फेडरेशन महाकाव्य रामायण पर आधारित रामायण गान प्रतियोगिता के आयोजन करता। ये आयोजन के लक्ष्य यह हमनी के संस्कृति, हिंदू संस्कृति के आगे बढ़ाए के युवा के बीच परंपरा आज संस्कृति के बढ़ावा दे खातिर ये आयोजन करल जाता। दूसरा देश के समाचार में

0: RM2
1: Radio Masti.
0: Feel the Masti.
2: It's the weather broadcast with winners.
3: On est tous winners.
4: मौसम का हाल आम हालत पूर्व दक्षिण पूर्व से आने वाली बादल हमारे स्थानीय मौसम को प्रभावित करेंगे। अगले 24 घंटों के लिए अनुमान है सुबह के समय आमतौर पर मौसम सुहाना होगा। दिन के दौरान धीरे धीरे पूर्वी और उत्तर प्रांतों वाले इलाकों में बादल गिरेंगे और बारिश होगी। ऊंचे इलाकों में कोहरा छाया रहेगा। रात के दौरान भी पूर्वी और उत्तर प्रांतों वाले इलाकों में थोड़ी वर्षा होगी। अन्य इलाकों में बादल घिर आएंगे। हवा पूर्व दक्षिण पूर्व की ओर से परिक्रमण प्रति घंटे की रफ्तार से बहेगी। प्रवाह रेखा के पार समुद्र सामान्य रहेगा और 2 मीटर की लहरें उठेंगी। तापमान अधिकतम तापमान समुद्र प्रांतों पर 20 से 23 डिग्री सेल्सियस के बीच और साहिली इलाकों पर अधिकतम तापमान 25 से 28 डिग्री सेल्सियस के बीच। न्यूनतम तापमान समुद्र प्रांतों पर 15 से 17 डिग्री सेल्सियस के बीच और इलाकों पर न्यूनतम तापमान 19 से 22 डिग्री सेल्सियस के बीच। आज सूर्योदय सुबह 6:02 पर और सूर्यास्त शाम 6:05 पर।
1: Weather forecast on R2.
0: Red Musty.
5: Avis à tous les amoureux des animaux. 17 au 24 septembre, rendez-vous chez Winners pour profiter de super offres sur une sélection de produits pour vos compagnons avec vos grandes marques préférées. 1.2 kg de Whiskas Gourmet Seafood à 349,95 € et les 100 g de Manger pour chat et chaton Alpha Pet à 34,95 €. Profitez également de nombreuses offres sur une sélection de produits du quotidien. Alors, ne manquez pas cette occasion de faire plaisir à vos petits compagnons et à toute la famille.
6: On est tous
1: Timeless Tadka.
0: RM2.
1: Timeless Tadka.

0: RM2
1: रेडियो मस्ती।
0: सैमसंग गैलेक्सी S26 FE अब आ गया है सिर्फ 36,990 रुपीज में। साथ में मिल रहा है 6,000 रुपीज का डिस्काउंट। आप सब जानते ही हैं, लेकिन प्रोसेसर में आपके पास पेमेंट की चॉइस भी है। आप चाहें तो अपने बैंक कार्ड से 3 महीने में बिना किसी इंटरेस्ट की पेमेंट करें, या फिर अपने क्रेडिट कार्ड से 12 महीने में बिल्कुल बिना इंटरेस्ट की पेमेंट। और हाँ, भूलिएगा मत, गिफ्ट में मिलेंगे सैमसंग केयर प्लस और गूगल AI प्रो। तो देर किस बात की है, सैमसंग गैलेक्सी S26 FE अब अवेलेबल है थ्वासिसान के स्टोर्स में और थ्वासिसान.mu पर भी। RM2
1: रेडियो मस्ती,
0: टाइमलेस तड़का।
1: RM2
2: बजकर 17 मिनट, इट्स अ वार्म वेलकम ऑन रेडियो मस्ती। गुड मॉर्निंग एवरीवन, गुड मॉर्निंग मॉरिशस, एंड सबका हम स्वागत करेंगे ऑफ कोर्स ऑन आवर रेडियो मस्ती। सैटरडे की जो फ्रेश ताज़ी सुबह आई है उसी में बिल्कुल हमारा वार्म वेलकम स्वीकार कीजिए। वी विशिंग यू ऑल सुपर टाइम। स्पेशल थैंक यू टू आवर लवली रिया, शी वाज हियर एक्चुअली यहाँ पर चिलैक्स प्रोग्राम को स्टार्ट करने के लिए, एंड या टू गिव अस द वेकअप कॉल। स्पेशल थैंक यू टू यू डियर। और अभी शे इज ऑन हर वे बैक, विश यू अ सेफ ड्राइव। तो यहाँ पर बिल्कुल सफर जारी है हमारा, इट्स टाइमलेस तड़का, जहाँ पर हम लेकर आएंगे कुछ मैजिकल सॉन्ग्स। यहाँ पर कुछ टाइमलेस गाने जब हम सुनेंगे तो डेफिनेटली जो हमारा मूड है वो सेट हो जाएगा। तो आ गई है आपके साथ आपकी दोस्त आपकी आरजे हंसरी, और रहेंगे हम सब साथ 11 बजे तक। तो वॉल्यूम थोड़ा सा बढ़ा लीजिए, चाय या कॉफ़ी का कप हाथ में ले लीजिए, और शुरू करते हैं एक ब्यूटीफुल डे। कई जगहों पर इस समय बहुत ही सुहाना मौसम है, धूप खिली हुई है, और ऐसे मौसम में आपने क्या सोचा है करने के लिए? मे बी सुबह के टाइम पे कुछ साफ़ सफाई हो रही है और काम पर तो जाना है। कई लोग सैटरडे वाला दिन पर भी वो काम कर लेते हैं, कोई बात नहीं, हम भी तो काम करने के लिए आए हैं और आपका साथ बिल्कुल हम देने वाले हैं। सो वी आर हियर टू जॉइन अस, टू जॉइन यू एज वेल ऑन 549-1294, जहाँ पर आप कुछ लिखेंगे, आपके कुछ फीलिंग्स को आप बयां करने वाले हो, जो भी है बात, मे बी दिल खुश है या फिर दिल परेशान है। एनी हाउ, यहाँ पर रेडियो मस्ती जो है आपके साथ जुड़ जाते हैं। वी आर हियर टू शेयर योर फीलिंग्स। तो इसके लिए यहाँ पर करेंगे आप लोगों का इंतजार ऑन 549-1294। वैसे जो लोग काम नहीं करते हैं सैटरडे वाले दिन पर, तो उनकी सुबह कुछ अलग ही होती है ना। अलार्म बजता है और अलार्म को देखकर कहते हैं भाई आज नहीं। सो बिग हेलो टू एवरीवन, स्टे वेल कनेक्टेड। यहाँ पर विशिंग यू ऑल गुड फीलिंग्स, गुड वाइब्स, जहाँ पर भी साथ जुड़ रही है। इट्स अ वार्म वेलकम इन आज का टाइमलेस तड़का।
0: Timeless Tadka.
1: RM2.
0: Timeless Tadka.

वेलकम इन द म्यूजिकल वर्ल्ड, जहां पर हंसनी का साथ बिल्कुल यहां पर बरकरार है. एंड आई विश यू ऑल अ ग्रेट मॉर्निंग. वेल, आई होप कि सब ठीक है, अच्छी से शुरुआत आपने की है. और अगर नहीं हुई है अच्छी से शुरुआत तो कोई बात नहीं. अभी ये जो दिन आया है ना, बस हमारे पास बिल्कुल ये टाइम आया है टू मेक इट अ बिट बेटर. तो यहाँ पर ये चांसेस आपको मिलने वाले हैं. लेट अस बिलीव इन आवरसेल्फ्स. जो कल नहीं किया है वो आज हम करने वाले हैं. आज तो मिला है ना, ये तो हमारा प्रेजेंट हो गया है, ये तो ऊपर वाले का गिफ्ट हो गया है हमारे लिए. जिन घड़ियों में हम हंसेंगे, खुश रहेंगे, विल स्माइल, और हमारे अपनों के साथ कुछ अच्छे वक्त बताएंगे हम, तो उन घड़ियों को क्यों बर्बाद करेंगे. आज विल मेक द मोस्ट. मे बी इस समय कुछ बिजी आप हो, कोई बात नहीं, चलेगा. घर के कामकाज में कई हमारे फ्रेंड्स लगे हुए हैं साफ सफाई में, और कुछ तो अपने ट्रांसपोर्ट की साफ सफाई कर लेते हैं. और इसी फ्री टाइम में आपने डोमेस्टिक को ऑन कर लिया है. दैट्स वेरी नाइस. आपका हम वार्म वेलकम करते हैं. कभी कभी हम पूरे हफ्ते के लिए कितने बिजी रहते हैं ना, कि खुद के लिए टाइम ही नहीं मिल पाते. होता है ना आपके साथ भी, हमारे साथ भी कई बार ऐसा होता है. तो ये जो सैटरडे वाला दिन जो आया है, एक छोटी सी चीज अपने लिए जरूर करना, अपना फेवरेट म्यूजिक सुनना, किसी अपने जो आपके हैं उनको कॉल करना, थोड़ा सा वॉक कर लीजिए इन द फ्रेश एयर, मदर नेचर के साथ एक कनेक्शन आप बना लो, या बस कुछ देर के लिए जस्ट आप आराम से बैठ लीजिए सम पीस एंड लाइट के साथ टू एंजॉय योर फ्री टाइम. ये जरूरी है लाइफ में, हर वक्त प्रोडक्टिव होना जरूरी नहीं, कभी कभी बस खुश रहना भी एकदम काफी होता है. सो बी हैप्पी. यहाँ पे आपके स्माइल किसी के लिए तो बहुत ही मायने रखता है. सो कम ऑन जी, अगर अब तक आप नहीं मुस्कुराए हो, सो गिव मी अ क्यूट स्माइल. यहाँ पर मुस्कुराहटों का ये सफर आई कैन से, क्योंकि गाने जो हम इस तरह से लेकर आएंगे, जिनके साथ रहेंगे सुवेनियर्स, जिनके साथ रहेंगी आपकी खुशियाँ, जिनके साथ रहने वाला है आपका प्यार. तो आप भी अपनों को याद करें, हम तो अपने लोगों को याद करें, यानी कि आप लोग जो यहाँ पर साथ निभा रहे हैं ऑन रेडियो मस्ती. सो हंसनी इज हियर एंड आई विल बी वेटिंग फॉर यू गाइस ऑन 5499 12 94.

Smart boy. गाड़ी मांग रहे हो गाड़ी जानी सामी जो भी हो सुनो

0: करा दे।
1: ये से कैसे पैसे मांग रहे हो?
2: हमारे जासूस कोने में फैले हुए हैं।

0: RM2
1: Radio Musty.
0: Feel the Musty.
2: Le sport, c'est de l'énergie, de la sueur, des sacrifices.
3: Milo, libère ta force.
4: Riche en lait, cacao et orge maltée, Milo, libère ta force.
5: Nestlé, good food, good life.
6: फोर्टी ऑलरेडी ऑन रेडियो मस्ती, आप हम दिल से स्वागत तो करेंगे आप लोगों का. एंड अभी टाइम हो चला है टू गेट अ स्पेशल कोट ऑफ द डे. द वे टू गेट स्टार्टेड इज टू क्विट टॉकिंग एंड बिगिन डूइंग. अ स्पेशल कोट बाय वॉल्ट डिस्नी. सपने वही सच होते हैं जिनके लिए मेहनत करने का हौसला हो. हार तब नहीं

0: होती जब आप गिरते हैं, हार तब होती है जब आप दोबारा उठने से इनकार कर देते हैं। अपने आज को बेहतर बनाने पर ध्यान दीजिए, आपका कल अपने आप बेहतर हो जाएगा।
1: Le sport, c'est de l'énergie, de la sueur, des sacrifices.
2: Milo, libère ta force.
3: Riche en lait, cacao et orge maltée, Milo, libère ta force.
4: Nestlé, good food, good life.

हाँ जी बिल्कुल, यहाँ पे लाइफ की राइड विद रेडियो मस्ती हमारा और आपका RM2 एंड हमेशा आपके साथ विद द वंडरफुल सिलेक्शन ऑफ म्यूजिक। तो यहाँ पर कुछ अच्छे से बातें हो जाए जहाँ पर आपकी आंखें प्यारी है, आपकी बातें भी एकदम लाजवाब, बस और क्या चाहिए इस दिन को और भी मदमस्त बनाने के लिए। स्टे कनेक्टेड, अभी इशारा है कि कुछ ही पल में हम बढ़ेंगे ठीक 9 बजे के समाचारों की ओर। इसके बाद बिल्कुल हम मिलेंगे, कुछ और बातें शेयर करने वाले हैं इन द सेकंड आवर ऑफ आज का टाइमलेस सितर का। बी विद अस, यहाँ पर साथ निभाते रहिए हंसरी का अप टिल 11 AM। स्पेशल गाने जो है हम खास लोगों के लिए ही चलाते हैं, हमारे सब लिसनर्स के लिए जो सुबह से कनेक्टेड है, अर्ली राइजर्स बने हुए हैं, सबका वेलकम। और अभी आई गेस अपने चाय को एंजॉय कर रहे हैं या फिर कॉफी आज आपने चूज किया है, कोई बात नहीं चलेगा। हेलो टू अभिजीत सोना फ्रॉम मेनियर, कैसे हो जी? वेली हो कि सब ठीक? सो एंजॉय करिए अपने स्पेशल सॉन्ग को और इस सैटरडे को स्पेशल बना लीजिए।

0: संक्षिप्त समाचारों के साथ स्टूडियो में उपस्थित हो चुके हैं आशिता रघु। आशिता जी नमस्कार।
1: नमस्कार किरण, श्रोताओं को भी नमस्कार। संक्षिप्त समाचार में आप सभी लोगों का स्वागत है। केवल नगर शिवसागर राम गुलाम जी के जन्म स्थान पर कल प्रधानमंत्री डॉक्टर नवीन राम गुलाम समेत कई गणमान्य लोग एकत्र हुए और राष्ट्रपिता की 126वीं जयंती मनाई गई। शिवसागर राम गुलाम मेमोरियल पार्क में पुष्पांजलि अर्पित की गई। इस दौरान देश के इतिहास में उनके योगदान को याद किया गया।

0: खासकर मॉरिशस की स्वतंत्रता हासिल करने में उनकी भूमिका और उन महत्वपूर्ण सुधारों के लिए जिन्होंने देश को आकार देने में अहम योगदान दिया। इस अवसर पर प्रधानमंत्री ने सस्यसागर रामगुलाम की स्मृति को नमन किया। उन्होंने उन्हें मॉरिशस की धरती से जन्म लेने वाला सबसे महान जननेता बताया और कहा कि राष्ट्रीय एकता आज भी देश की प्रगति की प्रमुख कुंजियों में से एक है। और मॉरिशस की रम ने एक नई उपलब्धि हासिल की है। ओम दो मोरिस को अब आधिकारिक तौर पर भौगोलिक संकेत यानी जियोग्राफिक इंडिकेशन का दर्जा मिल गया है। इस प्रमाणन से मॉरिशस में उत्पादित रम की उत्पत्ति, गुणवत्ता और उत्पादन से जुड़ी पारंपरिक कौशल की सुरक्षा होगी। साथ ही अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में मॉरिशस की रम की पहचान को और मजबूत करने में मदद मिलेगी। रम की ओम दो मोरिस का लेबल हासिल करने के लिए रम का उत्पादन मॉरिशस में ही होना अनिवार्य होगा और इस व्यवस्था के तहत 7 डिस्टिलरी शामिल हैं। लाबूदो ने सेंट ओबेर, ओजानाम क्राफ्ट डिस्टिलरी, मेजिन, शामारेल, ओमनिकेन और ग्रेज। करीब 11 महीने तक बंद रहने के बाद प्लेनवेयर स्थित सस्यसागर रामगुलाम मेमोरियल कल्चर फॉर सेंट आज शनिवार से फिर जनता के लिए खुल रहा है। यह पुनः उद्घाटन सस्यसागर रामगुलाम की 126वीं जयंती के अगले दिन हो रहा है। कल उनकी जयंती के अवसर पर एक स्मरण समारोह भी आयोजित किया गया था। सेंटर में सस्यसागर रामगुलाम के जीवन और योगदान को दर्शाने वाली प्रदर्शनी को नए सिरे से तैयार किया गया है। इसमें आर्काइव से प्राप्त नई सामग्री शामिल की गई है जिसमें तस्वीरें, अखबारों की कटिंग्स, निजी सामान और सस्यसागर रामगुलाम के जीवन तथा उनके सफर पर आधारित पुस्तकें भी शामिल हैं। म्यूजियम जनता के लिए सोमवार से शुक्रवार सुबह 9 बजे से शाम 4 बजे तक और शनिवार को सुबह 9 से दिन के 12 बजे तक खुला रहेगा। और राधा, प्रेम, भक्ति और समर्पण का वह नाम जो श्री कृष्ण के बिना अधूरा है और श्री कृष्ण जिनके बिना पूर्ण नहीं मानी जाती। राधा अष्टमी के पावन अवसर पर आज देश भर में भक्त राजधानी के राधा रानी के चरणों में श्रद्धा और प्रेम अर्पित कर रहे हैं। मंदिरों में विशेष पूजा अर्चना, भजन कीर्तन और धार्मिक अनुष्ठानों के बीच भक्तिमय वातावरण बना हुआ है। ये पर्व केवल राधा रानी के जन्मोत्सव का अवसर नहीं बल्कि प्रेम की उस पवित्र भावना का उत्सव है जिसमें भक्ति ही सबसे बड़ा समर्पण बन जाती है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर की ओर बढ़ती हैं। उत्तर पश्चिमी पाकिस्तान में एक मस्जिद के पास हुए कार बम धमाके में कम से कम 21 लोगों की मौत हो गई है जबकि 100 से अधिक लोग घायल हुए हैं। पाकिस्तान की समाचार एजेंसी के अनुसार मृतकों में 15 पुलिसकर्मी और 4 साल का एक बच्चा भी शामिल है। पाकिस्तान के राष्ट्रपति आसिफ अली जरदारी ने एक बयान में धमाके में घायल लोगों के जल्द स्वस्थ होने की भी कामना की है। और चलते चलते हम आपको याद दिला देते है कि 9 बजे के समाचारों के बाद आज की चर्चा प्रोग्राम में आज जिस विषय पर चर्चा की जाएगी वह है मॉरिशस में बैठकाओं का स्थान और किरण जानकी के मेहमान होंगे श्री निरंजन बीगंजी जो कि शिक्षा मंत्रालय में कार्यवाहक निदेशक हैं और सेकेंडरी स्कूल और एंसेस्ट्रल लैंग्वेजेस के लिए भी जिम्मेदार हैं। तो इसके साथ ये संक्षिप्त समाचार समाप्त हो चला। आपके ध्यान के लिए धन्यवाद और नमस्कार।
1: Your news on NBC Play, NBC Play, NBC Radio.tv, NBC Radio.tv.
2: RM2
3: Radio Musti.
2: Feel the Musti.
4: The Mauritius Broadcasting Corporation invites you to submit your bid for the provision of medical insurance cover for the period 2026-2027. The bidding document is available free of charge on the Procurement Policy Office website, publicprocurement.govmu.org. Please note that bids must be submitted exclusively by email to tender@mbc.mu. For queries, contact the Tender Committee on 402-8000, extension 427, or email bidsec@mbc.mu by 17th of September 2026. And remember, the deadline for submission is 24th September 2026 at 2 p.m.
2: RM2 Radio Musti in the mix. Radio Musti in the mix.

0: RM2
1: Radio Musti.
2: Join the RM2 team this Monday, 21st of September, on the parking lot of Dream Prize Suyak for a job and training fair organized by the Ministry of Labour and Industrial Relations. RM2 will be live us from 10 a.m. to noon, so don't miss out.
0: RM2
1: Radio Musti.
0: Timeless Tadka.
1: RM2.
3: All about great music, all about a double dose of masti. ये तो है Saturday वाला time जो आप बता रहे हो with our radio masti, हमारा और आपका RM2. Wishing you all a very good morning. Saturday वाला जो feel है एकदम fresh, एकदम energetic और बिल्कुल मस्त गानों के साथ अभी हमारा entertainment हो रहा है. मैं हूँ आपकी दोस्त और जो हंसनी और हम बेशक चले आए हैं आप लोगों का साथ निभाने के लिए. और जब भी यहाँ पर हम होते हैं सच हमारी खुशियाँ हैं वो कुछ डबल हो जाती है. यहाँ पर इतना प्यारा साथ मिलता है. स्पेशल थैंक यू टू एवरीवन फॉर योर लविंग सपोर्ट आपके मैसेजेस के लिए जो आप बरसा रहे हो 105.9 to 12.94. आशिकाना मौसम है जी, सुहाना मौसम, कई जगहों पर छाया हुआ है. दैट्स वेरी नाइस. तो अब जरा

0: कर लीजिए, चाय हाथ में है या फिर आपने ले लिया है अपना चाय टाइम, ब्रेकफास्ट हो गया है, वेरी गुड। और मूड, अगर मूड अभी भी स्लीपी है, थोड़ी सी नींद और आ रही है, तो टेंशन मत लीजिए, हम है ना, हम आपके साथ है। और आज की मॉर्निंग को बनाएंगे हम फुल ऑन हैप्पी, म्यूजिकल एंड पॉजिटिव। तो अगर वॉल्यूम थोड़ी सी धीमी है, अगर हो सके तो वॉल्यूम थोड़ा सा बढ़ा लीजिए, स्माइल कीजिए। एंड सैटरडे जो है बिल्कुल ऑफिशियली आ गया है, सुबह से इतने सारे अच्छे अच्छे गाने हो रहे हैं और अभी सिलसिला जारी हम रखेंगे डेफिनेटली। सो काम करते समय वो ख्वाहिश आप सभी को, काम शुरू हो गया है कब से और मे बी अभी कुछ आप ले रहे हो, मे बी जब आप निकल रहे थे टाइम ही नहीं मिला है टू हैव योर नाश्ता, तो अभी ले लीजिए हमारे साथ, म्यूजिकल बनाएंगे अपने स्पेशल मॉर्निंग टाइम को। Be with us, yahan par it's all about great music souvenirs in our timeless tarka.
1: Timeless tarka.
2: RM2.
1: Timeless tarka.

0: US Tadka.
1: RM2.
2: Welcome in the magical world of music. Yes, 7 years are back with the timeless Tarka on Radio MST. But RJ Hansini, चलिए हम आगे बढ़ाते हैं हमारे इस musical journey को और अभी time हो चला है to have some dedications. Hello Hansini, hello G, good morning to you. यहाँ पर नानी कलावती कुंजबियारी जो रहती हैं गोबियो सेलिब्रेट कर गई कल जन्मदिन. So आज मौका हमको मिला है to wish your नानी माँ a happy birthday. Better later than never, right? Wishes coming from Beti Swasti, from Beti Preeti, Beta Kiran. We have Revi, Apodiyan, Aisha, Amit, Sohawan, jo kuch rafre se connected hai to Radio MST. Thank you. Nani ji ko bahut sara pyar hai hamare sabhi team ki taraf se. Aur yahan par saath nibhane ke liye aaye hai Vimal ji. Kaise ho? Vimal Bulak ka warm welcome on Radio MST. Really hope ki sab theek. और यहाँ पर रहेगा एक स्पेशल ट्रैक ऑफ कोर्स आपकी लवली वाइफ प्रीति के लिए एंड प्यारे से एंजल बेबी भाविया के लिए एंड फॉर ऑल योर फैमिलीज. यहाँ पर गाना बिल्कुल चल जाएगा आप सभी को विश करने के लिए अ जबरदस्त वीकेंड एंड सी यू ऑल वेरी सून. यहाँ पर वी हैव नीतीश रामदिकल फ्रॉम मोटा ब्लॉश. वेली होप कि सब ठीक ठाक ऑन योर साइड और आपकी मामा भी बिल्कुल ठीक है जी. यहाँ पर गाना आपके लिए मामा के लिए और पूरे रामदिकल परिवार के लिए भी चल जाएगा. वाई नॉट, इतने प्यार से जो आपने मैसेज भेजा है ये तो रहेगा एक गाना आपके लिए. एंड ऑल्सो वी हैव यलेश श्याम जो आई है फ्रॉम सुरीनाम टू कन्वे द लव टू ऑल आवर ऑडियंस. थैंक यू बेटा, आपका वार्म वेलकम है. रियली होप कि आपने ले लिया है अपना चाय नाश्ता एंड ऑल और अभी कुछ आराम फरमाते हुए साथ आप निभा रहे हो ऑन रेडियो मस्ती. तो यहाँ पर गाना आपके लिए एंड फॉर योर क्यूट मामा एज वेल, उनके लिए भी हो जाए राइट. सो जितने भी हमारे परिवार जुड़े हुए हैं हम सभी का वेलकम तो करेंगे ही एंड वी आर हियर टू सेलिब्रेट योर डे. सैटरडे वाला जो दिन आया है 19 सितंबर, कई लोग आज अपना स्पेशल दिन तो मना रहे हैं तो मिलकर धूमधाम से मनाएंगे और स्पेशल विशेस के साथ हंसनी है ऑन रेडियो मस्ती. तो चलिए आप भी साथ निभाते रहिए एंड वी आर हियर टू एंटरटेन यू, वी आर हियर टू मेक इट अ वंडरफुल डे.
0: टाइमलेस तड़का
1: RM2.
0: टाइमलेस तड़का.

0: तड़का
1: और रिम टू
0: टाइमलेस तड़का
2: तो यहाँ पर रंबा हो वाला सॉन्ग जो था उसमें बोला गया है नाचो, यहाँ पर नाचने गाने का टाइम तो आ गया है। अगर आप फ्री हो तो घर पर हो तो ये तो हो सकता है, यहाँ पर गाने के साथ थोड़ा सा डांस भी होता है। वो द रेडियो मस्ती, यहाँ पर घर ही में हम अपना जुम्बा कर लेते हैं और क्या। यहाँ पर कल रात में भी कुछ ज़्यादा खा लिया है, कोई बात नहीं जी, जो एक्सेस कैलोरीज इन हो गई है अब उनको बाहर निकालने का टाइम। दिस इज़ योर शो जहाँ पर हम धमाकेदार गाने लेकर आएंगे टू मेक इट अ बिट मोर फन मोर मस्ती ऑन आवर रेडियो, जो सबका है, जो आपका हम सफर है, जो हमारा दोस्त है हमारा रेडियो मस्ती। दिस इज़ फैमिली तड़का ब्रिंगिंग यू ओनली द बेस्ट। और कैसे भूल सकते हैं ये आज का तड़का जो है शान की आवाज में, थोड़ा सा मोशन फील भी आता है, तो लेट्स गो फॉर इट। शान जी को हम याद कर लेते हैं एक बार फिर से। आप सभी का वेलकम एंड विशिंग यू ऑल अ ग्रेट मॉर्निंग।

RM2. Radio Musty. In the mix.

0: Podcast तड़का
1: RM2
2: सैटरडे मॉर्निंग जो फुल स्विंग में है, फुल जोश के साथ, फुल ऑफ एनर्जी जो यहाँ पर हमारा शो आपको दे रहा है. दैट्स आवर टाइम रेसे तड़का और वीकेंड को सेलिब्रेट करती हुई आपके साथ हंसनी. और वीकेंड तो एकदम करीब ही है. वी आर ऑलरेडी ऑन सैटरडे और ये जो ब्यूटीफुल पार्ट है हमारा होता है ऑन रेडियो मस्ती. दिस इज फैमिली टाइम जो हम बताते हैं आपके संग. और हम तो कहेंगे वीकडेज में सब तो अपनी अपनी रूटीन लाइफ में बिजी तो हो जाते हैं ना. इतने बिजी हम रहते हैं, क्या पता यहाँ पर इतनी सारी जिम्मेदारियाँ होती रहती हैं, बढ़ती रहती है ना यहाँ पर दिन ब दिन. लेकिन आज ये जो चांस आपको मिला है कुछ पल बिताने के लिए अपने परिवारों के साथ, सो ज़रूर मे बी एक कप चाय ही हो जाए. कभी कभी बड़े बड़े मोमेंट्स नहीं होते, छोटी छोटी जो कन्वर्सेशंस होते हैं ब्यूटिफुल मेमोरीज बन जाती हैं. So we are here on a special yaadon ko ek bar phir se get karne ke liye. We are here to make it a bit more fun. Enjoy your family time, enjoy your Saturday wala mood with the radio masti. Aur so many people is samay strongly connected hai. यहाँ पर जो मॉर्निंग मूड है, जो पॉजिटिव वाइब्स है, सैटरडे वाला जो एनर्जी है, बस हम पहुँचाने की बिल्कुल कोशिश कर रहे हैं. यहाँ पर बड़े बड़े देशों में छोटी छोटी बातें होती रहती हैं ना हंसनी. दैट्स ट्रू. यहाँ पर अर्शिता की तरफ से है गुड विशेस टू एवरीवन ऑलरेडी एट वर्क लिसनिंग टू यू सिंस मॉर्निंग. और मस्त गानों के साथ बिल्कुल मूड एकदम झकास हो गया है. दैट्स वेरी नाइस. ब्यूटिफुल सैटरडे विद मेलोडियस चॉइस. दैट्स ग्रेट. अमिता जी जो यहाँ पर स्ट्रांगली कनेक्टेड है ये मोहबेद फैमिलीज का भी वेलकम हम करेंगे और गाना भी चल जाएगा आपके लिए. थैंक यू फॉर कनेक्टिंग विद आवर रेडियो मस्ती. प्लीज प्ले दिल दिया गला. ये तो हम चलाने की पूरी कोशिश करेंगे. अगर लिस्ट में है तो वाई नॉट. ये रहेगा फॉर ब्यूटिफुल लवली वाइफ अच्छाया के लिए जिनसे आप बहुत ही प्यार करते हो. लट्स ऑफ लव कमिंग फ्रॉम हबी सर्वेश. एंड हेलो टू भिवा फैमिलीज जो बेलिया से है. एंड वी हेलो चुमन फैमिलीज ऑफ सेंट बेन. तो यहाँ पर जितने भी परिवार जुड़े हुए हैं यहाँ पर ये मौका हम आपको देते हैं एक्चुअली टू शेयर योर फैमिली टाइम ऑन 549-812-94.
0: टाइमलेस तड़का.
1: RM2
0: टाइमलेस तड़का.

0: तड़का
1: और एम टू
0: टाइमलेस तड़का
1: और एम टू रेडियो मस्ती इन द मिक्स रेडियो

0: The Mauritius Broadcasting Corporation invites you to submit your bid for the provision of medical insurance cover for the period 2026-2027. The bidding document is available free of charge on the Procurement Policy Office website, publicprocurement.govmu.org. Please note that bids must be submitted exclusively by email to tender@mbc.mu. For queries, contact the Tender Committee on 402-8000, extension 427, or email bidsec@mbc.mu by 17th of September 2026. And remember, the deadline for submission is 24th September 2026 at 2 p.m.
1: RM2 Radio Misty.
2: The time is brought to you by
3: McDonald's. Ba-da-ba-ba-ba. I'm loving it.
2: And RKG Classic Pure Cow Ghee.
1: Radio Musti.
4: North, South,
1: 103.5.
4: East, West,
1: 96.4.
4: Center,
1: 99.4.
5: RM2 Radio Musti.
1: Radio Musti.
5: The latest news and the greatest mix of music. Feel the Musti.
6: A very good morning. Aap sabhi ko check the time. Din ke already 10 baj chuke hain. आइए सुनते हैं संक्षिप्त समाचार अर्शिता के साथ। आपको नमस्कार अर्शिता।
7: नमस्कार हंसिनी, श्रोताओं को भी नमस्कार। संक्षिप्त समाचार में आप सभी लोगों का स्वागत है। करीब 11 महीने तक बंद रहने के बाद प्रणवियत स्थित सचिव सागर राम गुलाम मेमोरियल सेंटर फॉर कल्चर आज शनिवार से फिर जनता के लिए खुल रहा है। यह पुनः उद्घाटन सचिव सागर राम गुलाम की 126वीं जयंती के अगले दिन हो रहा है। कल उनकी जयंती के अवसर पर एक स्मरण समारोह भी आयोजित किया गया था। सेंटर में सचिव सागर राम गुलाम के जीवन और योगदान को दर्शाने वाली प्रदर्शनी को नए सिरे से तैयार किया गया। इसमें आर्काइव से प्राप्त नई सामग्री शामिल की गई है, जिसमें तस्वीरें, अखबारों की कटिंग्स, निजी सामान और सचिव सागर राम गुलाम के जीवन तथा उनके सफर पर आधारित पुस्तकें शामिल हैं। म्यूजियम जनता के लिए सोमवार से शुक्रवार सुबह 9 बजे से शाम 4 बजे तक और शनिवार को सुबह 9 से दिन के 12 बजे तक खुला रहेगा। जेल के असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट मोहम्मद आसिफ रामतुल्ला और अधिकारियों कृतिश गुरा, जोनातो वाइथिलिंगा, राज नंदलाल और इमानुएल कोस्टो को फिर गवाही के लिए बुलाया गया। उनसे डीपीपी के प्रतिनिधि वकील रिकी बुकन ने सवाल किए। पूछताछ के दौरान यह बात सामने आई है कि अदालत में अधिकारियों द्वारा दिए गए बयान, बोबासन जेल में घटनाओं के पुनर्निर्माण के दौरान रिकॉर्ड की गई तस्वीरों में हमेशा मेल नहीं खाते थे। वकील बुकन ने बॉकली पुलिस स्टेशन में जॉन मिक मॉटिंगेल की मौत के बाद दर्ज किए गए बयानों में भी असमानताओं की ओर ध्यान दिलाया। ये बयान ए एस

एसपी मोहम्मद आसिफ रामतुल्ला और चार अन्य अधिकारियों ने दिए थे। एक मौके पर इमानुएल कोस्टा ने माना कि पुलिस को अपना बयान देने से पहले उन्होंने और उनके सहयोगियों ने आपस में एक दूसरे से सलाह ली थी, हालांकि बाकी अधिकारियों ने इस बात से इनकार किया था। मार्टिंगेल के परिजनों का मानना है कि हिरासत के दौरान उनके साथ मारपीट की गई थी। वहीं पोस्टमार्टम में उनकी मौत को आत्महत्या बताया गया था। उनके परिजनों ने दोबारा पोस्टमार्टम के लिए दक्षिण अफ्रीका के एक फोरेंसिक डॉक्टर की सेवाएं भी ली थी। BMW, McLaren, Acura, Aston Martin Coupe और Mini Cooper जो यशीश अमृत और उनकी प्रबंधन कंपनी के हैं, अब FCC द्वारा नीलाम नहीं किए जा सकेंगी। आशीष अमृत ने कल सुप्रीम कोर्ट से इंजंक्शन यानी अदालत से रोक लगाने का आदेश हासिल कर लिया। इन वाहनों को मनी लॉन्ड्रिंग की जांच के तहत जब्त किया गया था। अपने वकीलों के माध्यम से आशीष अमृत ने कहा कि उन्हें प्रेस के जरिए इन वाहनों की नीलामी के बारे में पता चला। उनका कहना है कि जाँच अभी जारी है और जब्ती का आदेश नहीं होने की स्थिति में इन वाहनों की बिक्री और बिक्री से पहले उनका निरीक्षण दोनों गैर कानूनी होंगे। FCC को 25 सितंबर को अदालत में ये स्पष्ट करना होगा कि इन वाहनों की बिक्री क्यों जारी रखी जानी चाहिए। गौरतलब है कि FCC 21 और 22 सितंबर को दूसरी नीलामी आयोजित कर रहा है। करीब 40 वाहनों के निरीक्षण की प्रक्रिया इस रविवार को निर्धारित है। 60 वर्षीय सरस्वती मुचिया की मौत गला घोंटने से हुई है। पुलिस के फोरेंसिक डॉक्टर द्वारा किए गए पोस्टमार्टम के बाद ये निष्कर्ष सामने आया है। थ्रियोली की रहने वाली सरस्वती मुचिया का शव कल सुबह इलाके में स्थित उनके सब्जी के खेत से बरामद किया गया। वे सब्जी बेचकर अपना जीवन यापन करती थी। मामले की जाँच थोबिश क्रिमिनल पुलिस ने शुरू कर दी है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुएल मैक्रों ने कहा है कि यूरोप और फ्रांस के खिलाफ रूस की ओर से हाइब्रिड हमलों का खतरा बढ़ गया है। एलिजे पैलेस में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान मैक्रों ने बताया कि उन्होंने इस खतरे को देखते हुए महत्वपूर्ण बुनियादी ढांचे और रक्षा उद्योग से जुड़ी जगहों की सुरक्षा के लिए एक योजना तैयार करने का आदेश दिया है। उन्होंने कहा कि पिछले कुछ हफ्तों में फ्रांस को रूस की ओर से कई हाइब्रिड हमलों का निशाना बनाया गया है और इन घटनाओं को बिना जवाब के नहीं छोड़ा जाएगा। इसके साथ संक्षिप्त समाचार समाप्त हो चला। आपके ध्यान के लिए धन्यवाद और नमस्कार।

0: Seamless तड़का
1: RM2
2: दस बजकर दस मिनट हो चला है. वाह, दैट्स एन एंजल टाइम. सो अगर इस समय कनेक्टेड हो, मेक अ विश जल्दी जल्दी. क्या पता घूम रही है आसपास हमारी प्यारी सी लेडी लक और आपका साथ दे जाए. सो विशिंग यू ऑल द बेस्ट एंड विशिंग यू अ वंडरफुल स्टार्ट ऑफ द थर्ड आवर ऑफ टाइमलेस तड़का. आप सभी का वेलकम है. आपके साथ हंसनी और बिल्कुल इसी म्यूजिकल सफर में आप लोगों का साथ मैं दे रही हूँ. दोस्तों, सैटरडे वाला जो टाइम है, इट्स लाइक अ ब्राइट मॉर्निंग सबके लिए. तो ब्राइट सपनों के साथ ही आप ऐसे ही शाइन करें. मे बी आपने कुछ सोचा है, सपने आपने देख लिए हैं और आज पूरे करने के लिए बिल्कुल मेहनत का जो काम है जारी हो गया है. सो खुराज आप सभी को. अभी तो सफर जारी है, वैसे कांटे आएंगे, ये सब आएंगे, तकलीफें आएंगे, ऑब्स्टेकल्स आएंगे, लेकिन डटकरों का मुकाबला अगर आप करेंगे, ओवरकम करेंगे, तो और क्या, यहाँ पर आप स्ट्रांग हो इनफ उन सबको पार करने के लिए. और इस ब्यूटिफुल शो में we have got your support, आपका प्यार होता है और कोशिश में हम लग जाते हैं to send you only the positive vibes. So, दिल से आप सभी को thank you, हमेशा साथ निभाने के लिए. और याद रखिए, life सिर्फ Monday से Friday तक की race नहीं होती है. कभी रुकना भी ज़रूरी है, कभी relax करना भी एकदम ज़रूरी है जी. कभी बिना किसी reason के खुश रहना भी एकदम ज़रूरी है. तो इस Saturday stress को थोड़ी छुट्टी दीजिए, स्माइल को थोड़ी सी एक्स्ट्रा जूती जो है उनको दे दीजिए. आज वो काम करेंगी तो अच्छी बात रहेगी. सो थोड़ी और स्माइल आज हो जाए अपनों के लिए, अपने परिवारों के लिए, अपने फ्रेंड्स के लिए, जहाँ पर भी आप जाओगे, यहाँ पर बिल्कुल शेयर दी हैप्पीनेस, शेयर दी स्पेशल हैप्पी मूड. वी आर हियर आपके साथ टू मेक इट अ बिट मोर फन. इट्स अ टाइमलेस तड़का जहाँ पर सिवनियर्स के साथ यहाँ पे

मैसेजेस भी आते हैं कॉम्बिनेशन बिल्कुल सही हो जाते हैं ना कुछ हमारी तरफ से बातें कुछ आपकी तरफ से अच्छी बात है अच्छा सा सफर जारी है यहाँ पर है ऑन रेडियो मस्ती थैंक यू फॉर कनेक्टिंग विद अस थैंक यू फॉर कनेक्टिंग विद आवर म्यूजिकल शो जो है आपका और हमारा एक वंडरफुल सा टाइमलेस तरका

0: नाइस सूदिंग वाला गाना था सभी प्यार करने वालों के लिए स्पेशली फॉर यू प्रीति जो अमोगी से यहाँ पर साथ निभा रही है ये आपका फेवरेट गाना है ना चल पड़ा है आपके लिए एंड सभी रिकाई फैमिलीज के लिए थैंक यू फॉर बीइंग साथ साथ ऑन रेडियो मस्ती
1: आई लव यू RM2 Radio Musty in the mix. Radio

0: टू रेडियो मस्ती।
1: शादी के खरीदारी खातिर अलग अलग जगह जाए के सोचत हो तब भूल जा, एकर जरूरत नहीं पड़ी। काहे की हलकोड़ी फैशन के हिया पूरा परिवार खातिर एक ही छत के नीचे सब कुछ मिली। डिजाइनर लहंगा, लच्छा साड़ी, जोधपुरी क्रॉप टॉप, शेरवानी सूट, ब्लेजर और वो भी सस्ता दाम में। हलकोरी फैशन, रॉयल रोड, पॉपुलर मिसेस गार्डन के सामने। फोन नंबर 5799-3782। हलकोरी फैशन, परंपरा, एलिगेंस और क्वालिटी।
0: RM2 रेडियो मस्ती।
2: RM2 वेलकम अगेन इन द वर्ल्ड ऑफ ग्रेट सॉन्ग्स। यहाँ पर एंटरटेनमेंट का ये सफर चल रहा है। दिस इज टाइमलेस तड़का। एंजॉय द सैटरडे वाला मूड हमारे साथ। और हमने सोचा है व्हाई नॉट एक रिकॉर्ड को हो जाए, एक गेम रहेगा तो और भी जबरदस्त हो जाएगा। सो प्ले विद एमबीसी।

और यहाँ पे जीतने के चांस हम आपको दे रहे हैं टू विन टू टिकट्स टू बी पार्ट ऑफ द फर्स्ट एवर भोजपुरी कंसर्ट जो होने वाला है शनिवार 26th of September यानी कि अगले शनिवार को होने वाला है एट ब्लिस बैंक्वेट हॉल आर्सेनल. So MBC Radio lovers, aap ho tayar for a night full of Bhojpuri music, dance.

0: द फर्स्ट भोजपुरी लाइव कंसर्ट जो होने वाला है एट ब्लिस बैंक्वेट हॉल आर्सेनल और एमबीसी रेडियो आपको दे रहा है वो चांस टू विन द टू टिकट्स टू बी पार्ट ऑफ द फैंटास्टिक इवनिंग. सो कुछ डिटेल्स हम आपको देते हैं अबाउट जलसा की रात. वहां पे लाइव परफॉर्मेंसेस होने वाले हैं एंड विल बी हैविंग आवर लोकल आर्टिस्ट रंबा रामटोहल. वी बी हैविंग नीरज गुप्त मधु किशोर खिमिया कुनल हिरुलाल रोशन सदा सिंह एंड कृषि मनिक. डीजेस होंगे नील के स्पाइकी वी डीजे वकील डीजे अभी डीजे अनी. एंड फॉर मोर इन्फॉर्मेशन दोस्तों यू कैन कॉल ऑन 5792 6262. यहाँ पे जलसा की रात होने वाला है और वहाँ पर कौन जाना चाहेंगे इसके लिए चांस सर्वे टू मस्ती आपको दे रहा है. वेरी इजी क्वेश्चन यहाँ पर हमने रखा है रिलेटेड टू बॉलीवुड. एक ऐसा गाना चलने वाला है बस आपको पहचाना है कि मूवी का नाम क्या है द टाइटल ऑफ द मूवी और उसमें जो लीडिंग रोल्स थे द मेन एक्ट्रेस और एक्ट्रेस जो एक्टर है एक्ट्रेस है और दोनों के नाम आपको पता लगाना है. दैट विल बी इजी बहुत ही इजी होने वाला है डोंट यू वरी. यहाँ पर तीन जवाब आप देंगे फर्स्ट मूवी का नाम और बाद में जो नजर आई थी अभिनेत्री और एक्टर के बारे में भी आपको उनका नाम पता लगाना होगा. ऑन 5992 1294 ये एक ऐसा नंबर है जहां पर आप अपने राइट आंसर्स को भेजेंगे. डोंट फॉरगेट भूलिएगा मत जो आपका पूरा नाम है पता है ये सब प्लीज आप लिखे ताकि या आप इन हो जाए फॉर द लकी जो. सो चलिए हंसनी और पूरे टीम की तरफ से आप सभी को गुड लक.
1: टाइमलेस तड़का
2: RM2
1: टाइमलेस तड़का.

ये जो मस्ती भरा गाना है किस मूवी से लिया गया है, जल्दी से ट्राई योर लक ऑन 54994। उस मूवी में ही कौन नजर आया था आज लीडिंग हीरो और कौन नजर आई थी आज लीडिंग एक्ट्रेस, ये तो है सवाल। जल्दी से जवाब दीजिए, आई एम वेटिंग फॉर यू।

0: Shameless तड़का
1: RM2
2: बैक हुए दर्शकों को यहाँ पर सवाल था इस गाने से पहले वी हैड वन यहाँ पर नच दे दे सारे दैट वाज अ ग्रेट धमाकेदार गाना फैमिली वाला गाना था और किस मूवी से लिया गया था दैट वाज एक्चुअली सवाल और साथ में जो नजर आए थे एक्टर और एक्ट्रेस दोनों के नाम भी आपको पता लगाना था दैट वाज वेरी इजी और कई लोगों ने भाग लिए है हमारे दर्शकों को में स्पेशल थैंक यू आप सभी को से जवाब इस 2016 की बनी मूवी बार बार देखो जिसमें नजर आई थी कैटरीना कैफ और साथ में थे सिद्धार्थ मल्होत्रा दैट्स द करेक्ट आंसर यहाँ पर चलिए हम आगे बढ़ाते हैं हमारे इस सफर को जानते हैं कि यहाँ पर किसकी जीत हुई है लेट्स गो फॉर इट

हमारे जीतने वाली है वो तो ब्रह्मस्थान की रहने वाली है और नाम है अर्चना गोपी हीरा. कंग्रेचुलेशंस टू यू माय डियर, आपकी जीत हो गई है. डेफिनेटली धूमधाम के साथ आप देखने जा रही हो द जलसा की रात वाला भोजपुरी कंसर्ट जो होने वाला है शनिवार 26 सितंबर 2026 को. दैट विल बी लाइव एट ब्लिस बॉनक्वेट हॉल ऑर्सेनल. और आपको दिए गए हैं 2 टिकट्स ऑफकोर्स

टू बी पार्ट ऑफ द ग्रेट फैंटास्टिक जलसा किराता जो धूमधाम से होने वाला है फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम वेरी फर्स्ट भोजपुरी कंसर्ट जो होने वाला है सो मेनी कंग्रेचुलेशंस आपको बस वीकडेज में आपको आना है एमबीसी विद योर आईडी कार्ड डोंट फॉरगेट आपको आना है ड्यूरिंग द वीकडेज ओनली 9 बजे से लेकर 3 बजे तक इसी टाइम शेड्यूल में आपको आना है वंस अगेन अर्चना जी आपको कंग्रेचुलेशंस

0: फैशन टिप्स पावर्ड बाय हलकरी फैशन हाउस ऑफ रेडीमेड गार्मेंट्स टाइमलेस तड़का
1: RM2।
2: चलिए दोस्तों, अब थोड़ा फैशन की बात हो जाए। आज का फैशन टॉपिक है ग्रे जीन्स। तो वार्डरोब से आज आपने क्या निकाला है, मे बी कॉन्फिडेंस ग्रे जीन्स, तो इससे रिलेटेड थोड़े से फैशन टिप्स आप लोगों के लिए हम लेकर आए हैं। ग्रे जीन्स एक ऐसा वार्डरोब एसेंशियल है जो कैजुअल भी लग सकता है और स्मार्ट भी, बस स्टाइलिंग थोड़ी स्मार्ट होनी चाहिए। सो एक पहला टिप हम आपको देते हैं, अपने ग्रीन जीन्स के साथ वाइट टी शर्ट, ग्रे जीन्स के साथ वाइट टी शर्ट सिंपल क्लीन और एकदम क्लासिक वाला लुक आपको देगा। और अगर आपको एफर्टलेस लुक चाहिए तो वाइट स्निकर्स के साथ जो है आप कर सकते हो। यहाँ पर जो लुक है आपका, इट विल बी लाइक मोर देन एलिगेंट। और अगर व्हाइट टी शर्ट आपको पसंद नहीं है तो ब्लैक टी शर्ट को भी आप पहन सकते हो ऑन योर ग्रे जीन्स। अगर थोड़ा स्टाइलिश और शॉर्प लुक चाहिए तो ग्रे जीन्स के साथ आपका ब्लैक टी शर्ट बिल्कुल जाएगा। ब्लैक टी शर्ट प्लस ग्रे जीन्स प्लस एक क्लीन स्निकर्स और क्या, यहाँ पर जो सैटरडे वाला लुक है बन जाएगा। और अगर थोड़ी सी ठंड लग रही है तो यू कैन एड ऑन डेनिम जैकेट, लेट्स से ब्लू वाला कलर अगर आपके पास है तो बिल्कुल मैच हो जाएगा। ग्रे जीन्स के ऊपर ब्लू डेनिम जैकेट, एब्सोल्युटली यस। और अंदर प्लेन व्हाइट टी शर्ट, ग्रे जीन्स प्लस यू ब्लू डेनिम जैकेट और स्नीकर्स, बन गया है जी आपका कैजुअल वाला।

0: इस वीकेंड के लिए। तो दोस्तों ग्रेडियंस को बोरिंग समझने की गलती बिल्कुल मत कीजिए। अगर आपने निकाल लिया है वार्डरोब से तो बिल्कुल परफेक्ट चॉइस आपका हुआ है आज, वाइट टी शर्ट, वाइट जूते और थोड़ा सा और कॉन्फिडेंस, यानी कि जो आपका सिंपल ग्रे जीन्स लुक है बन सकता है एकदम फुल ऑन स्टाइलिश वीकेंड वाला लुक। सो जो पहनो कॉन्फिडेंस के साथ पहनो, क्योंकि कॉन्फिडेंस इज ऑलवेज इन फैशन।
1: Fashion Tips was powered by Halkori Fashion, House of Ready-Made Garments.

0: Bez Tadka.
1: RM2.
2: Let's continue with the energy in आज का टाइमलेस तड़का. Thanking you so much आपके messages के लिए, इतना सारा प्यार हम तक पहुंचाने के लिए दिल से आपको कहेंगे thank you so much. And we have a friend जो यहाँ पर connected है with RM2 Radio MST. Hello to Nilesh. Really hope you're all ठीक. And Nilesh, my part का warm welcome है आपके लिए. जरूर एक गाना हम dedicate करेंगे आपके लिए and for all your dear ones जो यहाँ पर strongly connected है on our radio station. चलिए यहाँ पर कुछ messages हो जाए. जिंदगी छोटी सी है, दूसरों को खुश रखते रखते खुद को मत भूल जाना. जिंदगी बहुत खूबसूरत है, बस हम ही इसे मुश्किल बना देते हैं. ओके, अपनों को खुश रखो और खुद की खुशी भी मत भूलो. क्या पता कल रहे ना रहे. That's so beautiful, so deep. Thank you so much, Disha. आप आई हो फ्रॉम रिवियर-जुरांपा हमारे साथ निभाने के लिए और ऐसे खास पॉजिटिव थॉट्स के लिए आपको दिल से कहेंगे थैंक यू वेरी मच. इसके बाद चलते हैं कॉटेज. वेलकमिंग आशा जानू हमारे साथ जुड़ गई है. इट्स अ वार्म वेलकम टू यू. पायस राधाष्टमी आपको भी, आपके परिवारों के लिए भी मंगल कामनाएं हैं. और आज आपका बर्थडे है, क्या बात है, बहुत ही शुभ दिन है आपका. और लेकर आए हैं बेस्ट विशेस मामा कुमारी, नेफ्यूज शुभम, ऋषभ, दीदी आरती, विहार जी जुराज और पूरे जानू परिवार यहाँ पर आए हैं आपको देने के लिए लॉट्स ऑफ खुशियाँ, लॉट्स ऑफ बधाइयाँ. चलिए यहाँ पर घूमने जाते हैं. लेट्स गो टू बेल्जियम. वहाँ पर 15 डिग्रीज लेकिन मूड एकदम जबरदस्त विद मॉरिशस विद रेडियो मस्ती. थैंक यू प्रकाश वेती जी यहाँ पर साथ निभाने के लिए. ऑल द वे फ्रॉम बेल्जियम जो सफर है बहुत ही हसीन है. स्पेशल थैंक यू आपको. Hello, enjoying the peppy selection for this happy Saturday. That's great. Thank you, Anu, for sharing your love. Stay blessed. Aur gana aapke liye chal jayega. And I've got a message from someone jo ek store mein kaam kar rahi hai, at Rejui, wishing all the team great Saturday. That's very nice of you. Thank you so much for your love. Akash Chetan Mansoor, hello ji, aapka welcome hai from Bamboo. Wishing you a great Saturday wala morning. Great selection ko enjoy karte hue Mansoor parivar jude gaye hai hamare saath on Radio Masti. Thanking you all. Aur yahan par jaate jaate jo wonderful song hai, that will be aapke liye specially. Aur iske saath I'll wave goodbye. Thank you very much for all your messages. Theek 11 baje sunenge samachar Ashita ke saath. Aur iske baad aayegi hamari pyari si Poonam lekar aaj ka Bolly Brunch. Stay connected on Radio Masti. Milenge jald. Tab tak ke liye, I wish you all a safe and happy day. Take very good care.

0: Welcome to RM2
1: Radio Musti.
2: North, South,
1: 103.5,
2: East, West,
1: 96.4,
2: Center,
1: 99.4.
0: RM2 Radio Musti.
1: Radio Musti.
0: The latest news and the greatest mix of music. Feel the Musti.
3: Time check. सुबह के 11 बज रहे हैं. सभी को नमस्कार. अब सुनते हैं संक्षिप्त समाचार आशिता से. आशिता आपको नमस्कार.
4: नमस्कार पूनम. श्रोताओं को भी नमस्कार. संक्षिप्त समाचार में आप सब लोगों का स्वागत है. करीब 200 युवा नवंबर में प्रधानमंत्री द्वारा शुरू किए गए नेशनल इनिशिएटिव फॉर सिविक एजुकेशन नाइस कार्यक्रम में हिस्सा लेंगे. इस बड़े कार्यक्रम के आयोजन से कुछ महीने पहले इसके प्रशिक्षकों के लिए 3 दिन की ट्रेनिंग आयोजित की गई जो 19 सितंबर 2026 को लुशालों स्थित गौदकुट नेशनल के मुख्यालय यानी कि एनसीजी के मुख्यालय में समाप्त हुई. इस ट्रेनिंग में सैद्धांतिक सत्र के साथ साथ 4.5 किलोमीटर की पैदल यात्रा भी शामिल थी. थाईलैंड ने भी फ्रांस की तरह मॉरिशस के लिए दक्षिण अफ्रीका में तैनात एक नए नामित राजदूत को नियुक्त किया है. एकापोल पीपत ने 16 सितंबर को रिजवी स्थित स्टेट हाउस में राष्ट्रपति धर्मवीर गोखुल के समक्ष अपने परिचय पत्र पेश किए. दोनों के बीच विभिन्न क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने के तरीकों पर चर्चा हुई. इसमें जॉइंट कमीशन की स्थापना, व्यापार, निवेश और वित्तीय सहयोग को मजबूत करने के उपाय शामिल थे. ब्लू इकोनॉमी और गुणवत्तापूर्ण पर्यटन भी चर्चा के मुख्य विषय रहे. थाईलैंड कृषि क्षेत्र में अपनी विशेषज्ञता साझा करना चाहता है. इसके अलावा कृषि और खाद्य उत्पादों, कृषि मशीनरी तथा प्रशस्कृत उत्पादों के आदान प्रदान को बढ़ावा देने पर भी जोर दिया गया ताकि दोनों देशों के संबंधों को और मजबूत किया जा सके. वर्ल्ड क्लीनअप डे से 2 दिन पहले अवैध रूप से कचरा फेंकने के खिलाफ अभियान तेज कर दिया गया है. सरकार ने इस सप्ताह ऑपरेशन जीरो डिपो शुरू किया है. जनवरी से अब तक करीब 100 अवैध कचरा स्थलों की पहचान की जा चुकी है जबकि 1000 से अधिक शिकायतें दर्ज हुई हैं. हालांकि लक्ष्मिया में निगरानी और कार्रवाई के बावजूद खुले में कचरा फेंकना जारी है. सीमेंट के टुकड़े, कबाड़ और घरेलू

0: लू कचरे के ढेर लगातार बढ़ रहे हैं और कुछ जगहों पर तो कचरे के बड़े बड़े पहाड़ बन गए हैं। वहीं जो लोग अपने कचरे की कानूनी तरीके से कचरा फेंकना चाहते हैं उनके लिए ट्रांसफर स्टेशन की सुविधा उपलब्ध है। इसके बारे में इंस्पेक्टर अमासे ने बताया कि इन स्टेशनों पर 500 किलो तक कचरा मुफ्त में जमा कराया जा सकता है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर रुख करते हैं भारत की ओर। महाराष्ट्र शिक्षक पात्रता परीक्षा यानी TET पेपर लीक मामले में नया मोड़ आया है। थाने सिटी पुलिस ने लीक हुए प्रश्न पत्रों का स्रोत उत्तर प्रदेश के आगरा स्थित एक निजी प्रिंटिंग प्रेस तक पहुंचाया है। इस मामले में 18 आरोपियों के खिलाफ करीब 3,500 पृष्ठों की चार्जशीट दाखिल की गई है। और कुछ अलग बात करते हैं, 6 साल बाद 2032 के ब्रिस्बेन ओलंपिक और पैरालंपिक खेलों में रोइंग और कानोई स्प्रिंट की प्रतियोगिताएं इसी जल क्षेत्र में आयोजित की जाएगी। इस जगह का हाल ही में तकनीकी आकलन किया गया है और इसे खिलाड़ियों के लिए सुरक्षित और निष्पक्ष माना गया है। हालांकि इस नदी में खारे पानी के मगरमच्छों को देखना आम बात है। यहाँ करीब 500 मगरमच्छ हैं जो 4 मीटर यानी लगभग 13 फीट तक लंबे हो सकते हैं, लेकिन वहाँ के राज्य सरकार की 40 साल से ज़्यादा पुरानी फाइलों के मुताबिक इन मगरमच्छों के इंसानों पर हमले का कोई मामला दर्ज नहीं हुआ है। तो इसी के साथ संक्षिप्त समाचार समाप्त हो चला, साथ रहे बढ़ते हम शोक समाचारों की ओर। लकावेन नंबर दो वाकुआ में 86 साल की 86 साल की श्री श्रवण कुमार हजारी सिंह जिन्हें मेघदत्त के नाम से लोग ज्यादा जानते थे की मृत्यु हो गई है। उनकी अर्थी कल रविवार को उनके घर लकावेन नंबर दो वाकुआ से उठाकर दिन के 1:15 पर सोलफेरिनो की शमशान भूमि ले जाएगी अंतिम संस्कार के लिए। क्रिमिशन टुमोरो एट 1:15 PM। ब्रांच रोड फोंजसाक में 31 साल के श्री तेजस्वीराज जीतन जिन्हें बेबे के नाम से भी लोग ज्यादा जानते थे की मृत्यु हो गई है। उनकी अर्थी आज शाम 3 बजे उनके पिता श्री सुभाषन जीतन के घर फोंजसाक से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए त्यामिनी स्त्रियों की शमशान भूमि ले जाएगी। कमीशन टुडे एट 3 PM। शोक में डूबे इन दोनों परिवारों के प्रति हमारी गहरी संवेदना है।
1: Your news on NBC Play, NBC Radio.TV. Body Branch, RM2, Radio Masti.

ब्रांच RM2 रेडियो मस्ती। गुड मॉर्निंग, 11:12 हो चुके हैं और मैं तो यही कहूंगी RM2 रेडियो मस्ती में आप सभी का स्वागत है। इतने सारे मैसेजेस, ओ माय गॉड, अभी तो प्रोग्राम स्टार्ट भी नहीं हुआ, मैंने कुछ बोला भी नहीं, पर इतने सारे मैसेजेस, थैंक यू सो मच एवरीवन। यहां पर मैं सबसे पहले थैंक यू बोलना चाहूंगी

0: रिया को जो सुबह से आपके साथ है, उसके बाद हंसनी दे और इसके बाद ये ड्यूटी दे दी गई है मुझे। और मैं भी आपको यही बोलूँगी, मस्ती करो, झूमो, नाचो, क्योंकि वीकेंड का दिन है और ये जो मूड है इसको मस्ती भरा बनाना है, इंजॉय करना है, क्योंकि बहुत सारे गाने आज प्लेलिस्ट में हैं। अगर आपको भी कोई मैसेज करना है तो आप कर सकते हैं, क्योंकि मुझे पता है आपने ऑलरेडी कर दिए, पर फिर भी आपके दिल का कोई मैसेज, कोई कोने में कोई बात जो याद हो, कोई ऐसी किसी का बर्थडे हो, किसी के लिए डेडिकेशन हो, किसी के लिए थैंक यू बोलना हो, किसी को मोटिवेट करना हो, तो आप मैसेज कर सकते हैं 5499124 पर। मैं हूँ आपके साथ इस समय पूनम, और मैं तो यही कहूँगी आप अपना मूड बनाए रखें, इंजॉय कीजिए गानों को, साथ में जो भी काम कर रहे हैं उसको करते रहिए बहुत ही शिद्दत के साथ। ये वाला गाना आप सबके नाम इंजॉय कीजिए और डांस भी मेरे साथ कीजिएगा, ये क्योंकि हमने बनाना ही है मॉर्निंग को, ये प्यारे से सैटरडे को, ऐसा कि जैसे कि कोई ब्लास्टिंग डे होता है जहाँ पे पूरी तरह से मस्ती में घुल जाएंगे। इंजॉय कीजिए इस गाने को।
1: Body Branch RM2 Radio Masti.

0: मस्ती ब्रांच
1: आर एम टू
0: रेडियो मस्ती।
2: 11:24 हो चुके हैं दोस्तों, और मैं तो यही कहूँगी कि जो हमारी हाउसवाइफ्स हैं, चाहे वो वर्किंग है, चाहे हाउसवाइफ घर में रह रही हैं, चाहे यंग कोई ऐसी गर्ल है जो अभी शादी करने के लिए मतलब बस रेडी हैं, और किसी के घर में, जिया के घर में, पिया के घर में जाने वाली हैं, उनको हम इतना ही कहेंगे, थोड़ा सा टाइम अपने लिए ज़रूर निकालिएगा। हो सकता है आप सुबह से काम कर रही हो, 5 बजे उठी हो, ब्रेकफास्ट बनाया हो, पढ़ाई थोड़ी सी बच्चों को कराई होगी, हो सकता है हस्बैंड वर्किंग में होंगे आज भी, या कहीं पर ऐसे कुछ प्लानिंग किया होगा, तो हम इतना ही कहेंगे 5-10 मिनट अपने लिए रेस्ट ज़रूर निकालिएगा। ये नहीं बस पिया के घर चले गए तो बस काम काम काम काम काम, कोई नो आराम, ऐसा बिल्कुल मत कीजिएगा। हमारे ऐसे लिसनर्स भी होते हैं जो कि एक उम्र में हो चुके होते हैं पर फिर भी बच्चों की रिस्पॉन्सिबिलिटी के आगे बस कहते हैं कि नहीं करते जाएंगे, बच्चे हैं। नहीं, थोड़ा सा 5-7 मिनट अपने आप को रेस्ट दीजिएगा, थोड़ा सा रिलैक्स कीजिएगा, गानों के साथ जुड़िएगा। कई बार बहुत हमारे ऐसे लिसनर्स हैं जिनको नए गाने, लेटेस्ट गाने इतने ज़्यादा पसंद नहीं होते, पुराने गाने पसंद होते हैं, पर हम आपको बोलेंगे कि आप लिरिक्स को मत सुनिए, आप सिर्फ मूड को बनाएं, डांस कीजिए, थोड़ा सा इंजॉय कीजिए, थोड़ा सा ठुमका लगाएं, थोड़े से घर के अंदर ना एक लाइवली जो कहते हैं ना वाइब्रेशन और एक मस्ती का माहौल रहता है, वो सिर्फ मदर्स की वजह से रहता है, क्योंकि जेंट्स तो होते हैं थोड़े से सीरियस होते हैं, थोड़े से काम में बिजी होते हैं, तो थोड़ा सा आप ऐसा रखो, थोड़ा सा 5-10 मिनट अपने आप को रेस्ट दो, थोड़ा सा जूस पी लो, थोड़ा कुछ ऐसा खा लो जिससे कि थोड़ा सा दही खा लो, कुछ भी जो आपको ठीक लगता है इस टाइम के हिसाब से आप कुछ खाइए, थोड़ा सा अपने आप को रेस्ट दीजिए और सबको बोल दीजिए कोई जिद परेशान नहीं करेगा, 5 मिनट सिर्फ मेरे हैं, तो एंजॉय कीजिए गानों को और साथ में बने रहिए। अगर आपको भी कोई मैसेज करना है तो आप कर सकते हैं 5499124 पर, एंजॉय कीजिए इस ब्यूटीफुल सॉन्ग को।
0: बॉडी ब्रांच
1: RM2
0: रेडियो मस्ती।

0: Polly Branch RM2 Radio Masti
1: 11:40 हो चुके हैं दोस्तों, आप जुड़े हैं अपने ही प्रोग्राम बॉली ब्रंच के साथ, जहाँ पे बहुत सारी मस्ती वाले गाने चलते हैं, जहाँ पे आपका मूड को बहुत ही अच्छा किया जाता है और आपको अपडेट्स दिए जाते हैं बॉलीवुड में क्या चल रहा है, ज़िंदगी में क्या चल रहा है, आप कैसे ज़िंदगी को कितना ब्यूटीफुली बना रहे हैं, चला रहे हैं, तो आपके मैसेजेस होते हैं। तो चलिए भाई, कल जो थे हमारे मॉरिशस के फादर ऑफ द नेशन सर शिव सागर राम गुलाम जी का जन्मदिन था। जी हाँ, उन्होंने वो थे हमारे पहले प्रधानमंत्री और एक डॉक्टर भी थे। गरीबी से निकलकर उन्होंने अपने आप को बनाया, उसके बाद उन्होंने मॉरिशस को आज़ादी दिलाई, मुफ्त शिक्षा दी, मुफ्त इलाज कराया, बुज़ुर्गों को पेंशन दी, ये सब उन्हीं की देन है। तो आज जो ये खास दिन है, चाहे कल निकल गया पर फिर भी हमारे फादर ऑफ द नेशन है, तो हम तो उनको सलाम करते हैं। और उनके एक MGI ने बहुत ही MGI प्रोडक्शन ने बहुत ही अच्छा उनके लिए एक बहुत ही प्यारा गाना बनाया, तो हम चाहते हैं कि आप सब सुने, इंजॉय कीजिए, क्योंकि कहते हैं ऐसे बड़ों का जब काम दिखता है ज़िंदगी में, उन्होंने इतना कुछ किया हम लोगों के लिए, तो आज हमारा भी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि उनके लिए एक प्यारा सा कुछ ना कुछ स्पेशल ज़रूर बनाएं या चलाएं। तो हमारे लिए MGI प्रोडक्शन ने बनाया है और हम यहाँ से चला रहे हैं, और आप सबको ये इतना ही कहेंगे, इंजॉय कीजिए इस प्यारे से गाने को।
0: Body Branch RM2 Radio Masti.

0: ब्रंच RM2 रेडियो मस्ती
1: 11:52 हो चुके हैं दोस्तों आपके जुड़ने का हमारे साथ रहने का थैंक यू सो मच आप सभी का। इस समय हमारे साथ राजन रघुपति जी साथ दे रहे हैं लंदन से और इन्जॉय कर रहे हैं इस प्रोग्राम को। थैंक यू सो मच सर, आपका मैसेज हमेशा ही हम मेरे चेहरे पर बहुत मुस्कान लेकर आता है। थैंक यू सो मच। योशिता एंड कृष्णा साथ दे रहे हैं और इन्जॉय कर रहे हैं इस प्रोग्राम को। ललित जी साथ दे रहे हैं USA से और इन्जॉय कर रहे हैं। कमल जी साथ दे रहे हैं नीदरलैंड से और बहुत ही इन्जॉय कर रहे हैं। राहुल साथ दे रहे हैं कनाडा से और बस एक ही कह रहे हैं कि काश आप समझ पाते हमारा हाल यहाँ पर क्या होता है अपनों के बिना, तो हम तो चाहते हैं प्लीज हमारे लिए भी एक गाना जरूर चलाइए। थैंक यू सो मच सर, बिल्कुल चलाएंगे आपके लिए, क्यों नहीं चलाएंगे, हमारा तो फर्ज भी बनता है और आपका साथ देना हमारी ड्यूटी भी बन जाती है क्योंकि RM2 रेडियो मस्ती सबको मस्ती कराता है। और ऐसे कैसे हो सकता है कि आपको आपके चेहरे पर उदासी छाए और हम आपकी बात का एहसास ना करें।

0: तो चलिए जी, बिल्कुल आपके लिए नेक्स्ट गाना चलेगा। शिप्रा और कुशाल विवान एंड हाजरिया साथ दे रहे हैं और इंजॉय कर रहे हैं। बीना काथरबोन से साथ दे रही हैं और इंजॉय कर रही हैं इस प्रोग्राम को। हम भी यही कह रहे हैं, आप इंजॉय कीजिए अपने मॉर्निंग को, सुबह क्वालिटी बनाइए। कहते हैं ना कि जब मॉर्निंग की एक शुरुआत अच्छी होती है तो पूरा दिन अच्छा जाता है। इसलिए हम हमेशा आपको यही कहते हैं कि मॉर्निंग की जो शुरुआत है थोड़ी सी मस्ती और मजाक के साथ करनी चाहिए। थोड़ा सा लाइफ को ज़्यादा सीरियस मत लो, इंजॉय कीजिए इस गाने को।
1: Body Branch RM2 Radio Masti।

0: RM2 Radio Masti.
1: The time is brought to you by
2: McDonald's. Ba-da-ba-ba-ba. I'm loving it.
1: And RKG Classic Pure Cow Ghee.
0: Radio Masti.
1: North, South,
0: 103.5.
1: East, West,
0: 96.4.
1: Center,
0: 99.4.
3: RM2 Radio Masti.
0: Radio Masti.
3: The latest news and the greatest mix of music. Feel the Masti. The Masti.
4: Time check. दोपहर के 12 बज रहे हैं. सभी को नमस्कार. अब सुनते हैं संक्षिप्त समाचार आशिता से. आशिता, आपको नमस्कार.
5: नमस्कार पूनम, श्रोताओं को भी नमस्कार. संक्षिप्त समाचार में स्वागत है आप सभी का. ब्राजील के 57 वर्षीय एक व्यक्ति का शव साज ब्रिज के पास से बरामद किया गया है. वह कल से लापता था. उसकी मोटरसाइकिल भी पुल के पास से मिली है. मौत की परिस्थितियों का अभी पता नहीं चल पाया है. थाईलैंड ने भी फ्रांस की तरह मॉरिशस के लिए दक्षिण अफ्रीका में तैनात एक नए नामित राजदूत को नियुक्त किया है. एकापोल पुलपीपत ने 16 सितंबर को रेजुस स्थित स्टेट हाउस में राष्ट्रपति धर्मवीर गोकुल के समक्ष अपने परिचय पत्र पेश किए. दोनों के बीच विभिन्न क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने के तरीकों पर चर्चा हुई. इसमें ज्वाइंट कमीशन की स्थापना, व्यापार, निवेश और वित्तीय सहयोग को मजबूत करने के उपाय शामिल थे. ब्लू इकोनॉमी और गुणवत्तापूर्ण पर्यटन की चर्चा के मुख्य विषय रहे. थाईलैंड कृषि क्षेत्र में अपनी विशेषज्ञता साझा करना चाहता है. इसके अलावा कृषि और खाद्य उत्पादों, कृषि मशीनरी तथा प्रसंस्कृत उत्पादों के आदान प्रदान को बढ़ावा देने पर भी जोर दिया गया, ताकि दोनों देशों के संबंधों को और मजबूत किया जा सके. करीब 200 युवा नवंबर में प्रधानमंत्री द्वारा शुरू किए गए नेशनल इनिशिएटिव फॉर सिविक एजुकेशन यानी नाइस कार्यक्रम में हिस्सा लेंगे. इस बड़े कार्यक्रम के आयोजन से कुछ महीने पहले इसके प्रशिक्षकों के लिए 3 दिन की ट्रेनिंग आयोजित की गई, जो 19 सितंबर 2026 को ले शालों स्थित एनसीजी के मुख्यालय में समाप्त हुई. इस ट्रेनिंग में सैद्धांतिक सत्र के साथ साथ 4.5 किलोमीटर की पैदल यात्रा भी शामिल थी. अन्य खबरों में, करीब 11 महीने तक बंद रहने के बाद प्लेनवेयर स्थित सरसिव सागर रामगुला मेमोरियल सेंटर फॉर कल्चर आज शनिवार से फिर जनता के लिए खुल रहा है. यह पुनः उद्घाटन सरसिव सागर रामगुलाम की 126वीं जयंती के अगले दिन हो रहा है. कल उनकी जयंती के अवसर पर एक स्मरण समारोह भी आयोजित किया गया था. सेंटर में सरसिव सागर रामगुलाम के जीवन और योगदान को दर्शाने वाली प्रदर्शनी को नए सिरे से तैयार किया गया है. इसमें आर्काइव से प्राप्त नई सामग्री शामिल की गई है. इसमें तस्वीरें, अखबार की कटिंग्स, निजी सामान और सरसिव सागर रामगुलाम के जीवन तथा उनके सफर पर आधारित पुस्तकें भी शामिल हैं. गौरतलब है कि म्यूजियम जनता के लिए सोमवार से शुक्रवार सुबह 9 बजे से शाम 4 बजे तक और शनिवार को सुबह 9 बजे से दिन के 12 बजे तक खुला रहेगा. वर्ल्ड क्लीन अप डे से 2 दिन पहले अवैध रूप से कचरा फेंकने के खिलाफ अभियान तेज कर दिया गया है. सरकार ने इस सप्ताह ऑपरेशन जीरो डिपू शुरू किया है. जनवरी से अब तक करीब 100 अवैध कचरा स्थलों की पहचान की जा चुकी है, जबकि 1000 से अधिक शिकायतें दर्ज हुई हैं. हालांकि लक्ष्मी में निगरानी और कार्रवाई के बावजूद खुले में कचरा फेंकना जारी है. सीमेंट के टुकड़े, कबाड़ और घरेलू कचरे के ढेर लगातार बढ़ रही है और कुछ जगहों पर तो कचरे के बड़े बड़े पहाड़ बन गए हैं. राधा, प्रेम, भक्ति और समर्पण का वह नाम जो श्री कृष्ण के बिना अधूरा है और श्री कृष्ण जिनके बिना पूर्ण नहीं माने जाते. राधा अष्टमी के पावन अवसर पर

0: आज देश भर में भक्त राधा रानी के चरणों में श्रद्धा प्रेम अर्पित कर रहे हैं। मंदिरों में विशेष पूजा अर्चना, भजन कीर्तन और धार्मिक अनुष्ठानों के बीच भक्तिमय वातावरण बना हुआ है। यह पर्व केवल राधा रानी के जन्मोत्सव का अवसर नहीं है, बल्कि प्रेम की उस पवित्र भावना का उत्सव है जिसमें भक्ति ही सबसे बड़ा समर्पण बन जाती है। और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर महाराष्ट्र शिक्षक पात्रता परीक्षा यानी TET पेपर लीक का मामले में नया मोड़ आया है। थाने पुलिस ने लीक हुए प्रश्न पत्रों का स्रोत उत्तर प्रदेश के आगरा स्थित एक निजी प्रिंटिंग प्रेस तक पहुंचाया है। इस मामले में 18 आरोपियों के खिलाफ करीब 3,500 पृष्ठों की चार्जशीट दाखिल की गई है। और उधर 6 साल बाद 2032 की ब्रिस्बेन ओलंपिक और पैरालंपिक खेलों में रोइंग और कैनोई स्प्रिट की प्रतियोगिताएं इसी जल क्षेत्र में आयोजित की जाएगी। इस जगह का हाल ही में तकनीकी आकलन किया गया है और इसे खिलाड़ियों के लिए सुरक्षित और निष्पक्ष माना गया है। हालांकि इस नदी में खारे पानी के मगरमच्छों को देखना आम बात है। यहाँ करीब 500 मगरमच्छ हैं जो 4 मीटर यानी लगभग 13 फीट तक लंबे हो सकती हैं, लेकिन ब्रिस्बेन राज्य सरकार की 40 साल से ज्यादा पुरानी फाइलों के मुताबिक इन मगरमच्छों के इंसानों पर हमले का कोई मामला दर्ज नहीं हुआ है। तो इसके साथ संक्षिप्त समाचार समाप्त हो चला। साथ रहे पटना शोक समाचारों की ओर। शोक समाचार सुनिए। एवेन्यू ओलिए कैट्रबोन में 87 साल की 87 ईयर्स ओल्ड की श्रीमती चंद्रकला रामसरन पैदाशाह मुनीराम और जिन्हें लीता के नाम से लोग ज्यादा जानते थे की मृत्यु हो गई है। उनकी अर्थी आज 2:30 बजे उनके बेटे श्याम रामसरन के घर कैट्रबोन से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए गांधीपाल मां के शमशान भूमि ले जाई जाएगी। क्रिमिशन टियर हाफ पॉस्ट 2 PM। ब्रांच रोड फोंजसाक में 31 साल के 31 ईयर्स ओल्ड की श्री तेजस्वी राज जीतन जिन्हें बेबी के नाम से भी लोग ज़्यादा जानते थे कि मृत्यु हो गई है। उनकी अर्थी आज 3 बजे उनके पिता श्री सुभाषंद जीतन के घर फोंजसाक से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए त्यामिनी स्थल के शमशान भूमि ले जाएगी। मिशन टूडे 3 PM। लकावेयन नंबर दो बाकवा में 86 साल के 86 ईयर्स ओल्ड की श्री श्रवण कुमार हजारी सिंह जिन्हें मेघदत्त के नाम से लोग ज्यादा जानते थे कि मृत्यु हो गई है। उनकी अर्थी आज 1:15 पर उनके घर लकावेयन नंबर दो बाकवा से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए सुल्फिगिनो की शमशान भूमि ली जाएगी। ये शोक समाचार एक बार फिर सुन लेते हैं। श्रवण कुमार हजारी सिंह जिन्हें मेघदत्त के नाम से लोग ज्यादा जानते थे कि मृत्यु हो गई है। उनकी अर्थी कल दिन के 1:15 पर उनके घर लकावेयर नंबर 2 वाकवा से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए सुल्फिगिनो की शमशान भूमि ली जाएगी। क्रिमेशन टुमारो एट 1:15 PM। शोक में डूबे इन तीनों परिवारों के प्रति हमारी गहरी संवेदना है।
1: Body Branch RM2 Radio Masti.

0: वाली ब्रांच
1: और M2 रेडियो मस्ती। 12:15 हो चुके हैं। कहते हैं हर सांस में कृष्ण राधा हैं, पर आज कृष्ण की हर सांस में सिर्फ राधा ही होंगी, क्योंकि आज है राधा अष्टमी, उनका जन्मदिन। तो हम तो यही कहेंगे आपके घर में बहुत बहुत सुख समृद्धि आए और राधा रानी की कृपा सब पर बनी रहे, आपके जीवन में प्रेम सुख और सब कुछ जो एक इंसान को जो एक कहते ना ईश्वरी शक्ति चाहिए होती है, वो सब आप सबकी ज़िंदगी में रहे। और ये गाना जो है बहुत ही खूबसूरत है, हमारी एक बहुत ही खूबसूरत प्यारी सी आशिता के लिए। मैं तो यही कहूँगी, वो इतनी इस गाने को प्यार से सुनती है ना हमेशा, तो आशिता ये गाना आपके लिए।

0: रेडियो मस्ती
1: एगो लास्योरेंस लावी कौन ची है जे काल कुछ तोहरा हो जाए तो ई तोहर और तोहर परिवार खातिर एगो सुरक्षा है। पर जाने ला ई से तू एगो इन्वेस्टमेंट भी करे सकबा। सिकम मैक्स इन्वेस्टमेंट ऐसन कई गो ऑप्शन बा जो बहुत फ्लेक्सिबल बाटी। तोहर महीना के पेमेंट के एगो हिस्सा तोहर लास्योरेंस लावी में जाए और दूसर हिस्सा तोहर पसंद के फोन में सकबा एवेस्टी करे, जो निर्भर रही कि आप कितना रिस्क ले सकबा। नतीजा एगो ऐसन लास्योरेंस जो तोहर परिवार के सुरक्षा करी और तोहर निवेश योजना में भी कामे आई। सिकम के प्रस्तावित लाइफ इंश्योरेंस प्लान पर जस्ती जानकारी खातिर हमनी के प्रतिनिधि से संपर्क कर या sikkim.mu पर जाइह। इमे नियम आ शर्त भी लागू बा। सिकम FSC के लाइसेंस के तहत काम करेला।
2: सिकम ग्रुप, ए लाइफटाइम कमिटमेंट।
3: Join the RM2 team this Monday, 21st of September, on the parking lot of Dream Prize Suyak for a job and training fair organized by the Ministry of Labour and Industrial Relations. RM2 will be live us from 10 a.m. to noon, so don't miss out.
0: RM2 Radio Musti.

0: Holly Branch RM2 Radio Masti
1: 12:37 हो चुके हैं और बाहर धूप अच्छी निकली हुई है, बारिश नहीं है, बट कहते हैं ना कि ये टाइम जो होता है बहुत ही बढ़िया होता है। इस समय आप कपड़े धो सकते हैं, घर साफ कर सकते हैं, मतलब मैं तो ये कहूँगी कि जो छोटे मोटे काम होते हैं और साथ में वीकेंड भी है, छुट्टी भी है, तो क्यों ना इस टाइम को इस्तेमाल किया जाए। परफेक्ट टाइमिंग है, मौसम भी परफेक्ट है, और जो काम सुबह सुबह हो सकते हैं उसको निपटा दिया जाए। और इस समय अगर आपको बालकनी में बैठ के अगर आपको आराम से कुछ खाना है तो आराम से खाओ, कुछ चाय पीनी है, जूस पीना है, जस्ट चिल, क्योंकि ये बार बार टाइम नहीं आता क्योंकि इतना अच्छा वेदर और जहाँ पे ठंडी ठंडी सी प्यारी प्यारी सी हवा साथ साथ चल रही है। तो हम तो आपको यही कहेंगे, थोड़ा सा अपने लिए समय निकालिए, इंजॉय कीजिए गानों को, और साथ में जो काम कर रहे हैं उसको थोड़ा सा ब्रेक देते देते साथ में अपने इंजॉय करते रहिए अपने खाने को, क्योंकि अगर आपने जो खा पी रहे हैं उसको वही तो शरीर पर लगेगा, और अगर आपने उसको टाइम दे दिया तो सच में आपका जो वीकेंड है ना बिल्कुल क्लासिक और मज़ेदार बनने वाला है। इंजॉय कीजिए गानों को और उसके साथ साथ प्लानिंग कीजिए शाम की, शाम को क्या करना है सिर्फ खाने के बारे में मत सोचना, थोड़ा सा मूड चेंज करने के लिए, थोड़ा बाहर घूमने के लिए, किसी को फ़ोन करने के लिए जिसको कितने दिनों से बात नहीं किया उनके साथ में एंजॉय कीजिए शाम को, बनाए खूबसूरत ये गाने आप सबके लिए।
0: बॉडी ब्रांच RM2 रेडियो मस्ती।

0: रेडियो मस्ती।
1: जिंदगी एक सफर है सुहाना, यहाँ कल क्या हो किसने जाना।
2: हम भी वो हैं जो कभी किसी के पीछे नहीं खड़े होते, जहाँ खड़े हो जाते हैं लाइन वहीं से शुरू होती है। चलते

0: हमारी ब्रांच RM2 रेडियो मस्ती।
1: 12:51 हो चुके हैं दोस्तों और आप जुड़े हैं अपने ही प्रोग्राम बॉली ब्रंच के साथ। और इस समय आपको हम इतना ही बता दें कि बहुत सारे बच्चों के एग्ज़ाम्स आने वाले हैं भाई। कई घरों में पढ़ाई का जो कहते हैं ना एक अलग सा सिलेबस बन गया होगा, घर में उठने का, सोने का, बैठने का, खाना पीना भी अलग तरीके का हो रहा होगा उनको। कई पेरेंट्स बहुत हेल्दी खाना दे रहे होंगे, डिफरेंट सोच रहे होंगे कि क्या दे सकते हैं जिससे उसको थोड़ी नींद ना आए। तो हम तो आपको इतना ही बोलेंगे कि फ्राइड अगर कोई चीज़ें हैं तो उसको अवॉइड कीजिएगा, पानी ज़्यादा पीजिएगा, स्टूडेंट्स कुछ अच्छा खाइएगा, दूध पीजिएगा, जूस नेचुरल फ्रूट्स खाइएगा। ये सब चीज़ें मेमोरी के लिए भी बहुत अच्छे हैं। और आपको इतना ही बोलेंगे कि रट्टा मत मारना, जो भी चीज़ पढ़ोगे ना उसको अच्छा समझना। हम गाने जो मर्जी चलाएं उससे वो नहीं होना चाहिए, क्योंकि मैं अगला गाना यही लगाने वाली हूँ कि रट्टा मार, पर रट्टा नहीं, क्योंकि रट्टा करने से ना वो जब चीज़ समझ नहीं आती तो जब आप पेपर के सामने जैसे ही पेपर आएगा तब आपको ब्लैंक हो जाएगा, आपको रियलाइज़ होगा अरे यार ये कुछ तो था। पर आप नहीं करना, आपको बस वो चीज़ को बिल्कुल फोकस होकर समझनी है। अगर आपको किसी के सामने बैक करना पड़े ना कि भाई ये क्या है, फ्रेंड के सामने बिल्कुल शर्माना नहीं, दोस्त से पूछो कि भाई इसको कैसे करते हैं, ये क्या है, इसको मैं भूल गया, हो सकता है आपको क्लास में याद रहा हो पर अभी नहीं याद आ रहा, तो क्योंकि आपने उस टाइम उसी मोमेंट पे वो लर्न किया था और उस टाइम भूल चुके हैं। तो आप रटना नहीं, उसको फ्रेंड सर्कल से पूछो, टीचर को फ़ोन करो, अपने प्रोफेसर से पूछो, ट्यूशन टीचर से पूछो, वो लोग सब एक्सप्लेन करने के लिए बैठे हुए हैं, रेडी हैं, बट सिर्फ आपकी देर है कि आप कब पूछेंगे, क्योंकि उन्हें एहसास होता है कि अगर आपने यस यस यस यस हर चीज़ में कर दी तो उनको भी रियलाइज़ होता है कि हाँ शायद आ ही गया होगा समझ। पर आप नहीं करना, आप लिखिए कि ये पॉइंट मुझे समझ नहीं आया, दोबारा पूछना है। तो चलिए भाई गानों के साथ में आगे बढ़ते हैं, थोड़ी देर में आप सुन पाएंगे संक्षिप्त समाचार और उसके बाद हम लोग चलेंगे 1:05 पर फिर से दोबारा से शौनदार मौज की तरफ। तो इतना ही कहेंगे आपको, साथ बने रहिए RM2 रेडियो मस्ती और मैं हूँ आपके साथ पूनम।
0: Body Branch RM2 Radio Masti.

0: Welcome to RM2
1: Radio Musti.
2: North, South,
1: 103.5,
2: East, West,
1: 96.4,
2: Center,
1: 99.4.
0: RM2 Radio Musti.
1: Radio Musti.
0: The latest news and the greatest mix of music. Feel the Musti.
3: टाइम चेक दोपहर के एक बज रहे हैं। सभी को नमस्कार। अब सुनते हैं संक्षिप्त समाचार आस्था से। आस्था आपको नमस्कार।
4: नमस्कार, एक बजे के समाचारों में स्वागत है आप सभी का। यशीष इमरित और उनकी कंपनी की चार गाड़ियों की नीलामी फिलहाल नहीं हो सकेगी। सुप्रीम कोर्ट ने उनकी अर्जी पर रोक लगाने का आदेश दिया। इनमें बीएमडब्ल्यू, मैक्लारेन, एस्टन मार्टिन और मिनी कूपर शामिल हैं। मनी लॉन्ड्रिंग की जांच के दौरान इन गाड़ियों को जब्त किया गया था। यशीष इमरित का कहना है कि जांच अभी जारी है और गाड़ियों को जब्त करने का अंतिम आदेश भी नहीं आया है। एफसीसी को 25 सितंबर को अदालत में अपना पक्ष रखना होगा। एफसीसी की दूसरी नीलामी 21 और 22 सितंबर को तय है। और अब ये खबर, थ्रियोले में 60 साल की सरस्वती मुचिया की गला घोटे जाने से मौत हुई। पुलिस के डॉक्टर ने पोस्टमार्टम के बाद ये जानकारी दी है। सब्जियां बेचकर गुजारा करने वाली सरस्वती मुचिया का शव उनके खेत में मिला था। पुलिस मामले की जांच कर रही है। ससुर सागर राम गुलाम की 126वीं जयंती पर कल उनके जन्म स्थान केवल नगर में श्रद्धांजलि दी गई। ससुर सागर राम गुलाम मेमोरियल पार्क में आयोजित समारोह में प्रधानमंत्री डॉक्टर नवीन राम गुलाम सहित कई मंत्री और स्थानीय प्रतिनिधि शामिल हुए। अवसर पर मॉरिशस की आजादी और देश के विकास में ससुर सागर राम गुलाम के योगदान को याद किया गया। अंतर्राष्ट्रीय स्तर की खबरों में, अमेरिका और डेनमार्क ने ग्रीनलैंड की सुरक्षा को लेकर एक समझौते की घोषणा की है जिस पर अगले हफ्ते हस्ताक्षर होने की उम्मीद है। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के अनुसार इससे अमेरिका को ग्रीनलैंड की सुरक्षा पर स्थायी नियंत्रण मिलेगा और उसकी मंजूरी के बिना कोई विरोधी देश वहां सैन्य मौजूदगी या संवेदनशील निवेश नहीं कर सकेगा। हालांकि समझौते का पाठ अभी जारी नहीं हुआ है। डेनमार्क और ग्रीनलैंड के प्रधानमंत्रियों ने कहा कि यह समझौता आर्कटिक क्षेत्र की साझा सुरक्षा मजबूत करेगा और ग्रीनलैंड की स्वायत्तता तथा वहां के लोगों के अपने भविष्य का फैसला करने के अधिकार का सम्मान करेगा। इसके संक्षिप्त समाचार समाप्त हुए।
1: Your news on NBC Play, NBC Play, NBC Radio.tv, NBC Radio.tv.
5: The Mauritius Broadcasting Corporation invites you to submit your bid for the provision of medical insurance cover for the period 2026-2027. The bidding document is available free of charge on the Procurement Policy Office website, publicprocurement.govmu.org. Please note that bids must be submitted exclusively by email to tender@mbc.mu. For queries, contact the Tender Committee on 402-8000, extension 427, or email bidsec@mbc.mu by 17th of September 2026. And remember, the deadline for submission is 24th September 2026 at 2 p.m.
1: Body Branch RM2 Radio Musti.
3: थोड़ी देर में आप जुड़ेंगे शॉन मॉस की तरफ।

0: Family Brunch RM2 Radio Masti।
1: एक बजकर 14 मिनट हो चुके हैं दोस्तों, आप जुड़े हुए हैं अपने ही प्रोग्राम बॉली ब्रंच के साथ, जहां पे बॉलीवुड के बातें चलती हैं, जहां पे आपकी दोस्ती और यारी, जहां पे प्यार आपका यहां पर आपको मिलता है, जहां पे बहुत सारे गाने चलते हैं और वहां पर आपको हम यही कहते हैं नून आवर्स में बहुत अच्छा खाएं, इंजॉय कीजिए अपने गानों के साथ साथ अपने खाने को। तो चलिए जी, बहुत सारे मैसेजेस पेंडिंग पड़े हुए थे, क्यों ना उनको पढ़ लिया जाए। नेक्स्ट सॉन्ग जाएगा नवीन जी के लिए, जो कि उनकी वाइफ की तरफ से बेस्ट विशेज आई हैं और बहुत सारी बातों के साथ कह रही हैं कि प्लीज़ मेरे हस्बैंड को बस इतना बता दो कि मैं उनसे कितना प्यार करती हूँ। तो भाई हम तो यही कहेंगे, नवीन जी आपकी वाइफ आपको बहुत प्यार करती है, थोड़ा सा सुन लिया कीजिए। वैसे हस्बैंड जब वाइफ बोल रही होती है ना कि मैं आपसे प्यार करती हूँ, तो कान पे कुछ लगा लेते हैं और कहते हैं मुझे सुनाई नहीं दिया। पर हम आपको यही कहेंगे, कानों से ये पट्टी हटाओ और समझ लो उनके प्यार को। चलिए जी, डैरिन मालिनी, श्वेता, रविश, प्रिशा इंजॉय कर रहे हैं इस प्रोग्राम को। पूरिया पादू फैमिली कह रही हैं जो कृष्णा वाला गाना लगाया था ना, बहुत ही मस्त लगाया था, थैंक यू सो मच। मैं भी आपको यही कहूंगी कि आप इस गानों के साथ में इंजॉय कीजिए और अपने काम करते रहिए। चलिए जी, हमारी नेक्स्ट लिसनर हैं, कह रही हैं मेरा नाम नहीं बताइएगा पर मेरी ज़िंदगी जिसके साथ जुड़ी हुई है ना, वो बिल्कुल मेरे सामने बैठे हैं और उनकी स्माइल इतनी प्यारी है, प्लीज़ उनके लिए एक गाना चला दो। तो भाई जी, उन मैम के लिए उन्होंने बोला नाम नहीं बताना, तो हम तो कह रहे हैं उनकी ज़िंदगी को कि भाई जरा थोड़ा सा मुड़ के देख लो, कोई आपके सामने बैठा हुआ है और अपने दिल की बात कह रहा है, तो यही मोमेंट होता है जिसको जीना बहुत अच्छा लगता है और जी लो। तो चलिए जी, एक प्यारी सी विशेज आई है हस्बैंड सतीश शिव सावगर शिव गुलाम जी की तरफ से और उनकी पत्नी प्रीति जी, जो कि इस समय वेल्स में हैं, हॉलीडेज पे हैं और अपने हस्बैंड को विश कर रही हैं और कह रही हैं विशिंग यू वेरी हैप्पी बर्थडे डियर, हमेशा खुश रहो, एंजॉय करो अपनी ज़िंदगी को, यू आर अ ब्लेसिंग फॉर मी। क्या बात है भाई, ऐसे ही है, अच्छे हस्बैंड मिल जाएं तो ब्लेसिंग्स ही होती हैं और हस्बैंड सारे अच्छे ही होते हैं, बस थोड़ा सा कभी कभी ध्यान नहीं देते। तो चलिए भाई, जो नहीं ध्यान दे रहे हम उनको बोलेंगे प्लीज़ साथ रहो। साथ में अभी जुड़ते जुड़ते एक और भी मैसेज आ गया है, बहुत ही प्यार से भरा हुआ, इंडिया से है रवि जी। रवि जी आपको थैंक यू, आपने जुड़े और एंजॉय कर रहे हैं इस प्रोग्राम को, थैंक यू आप सभी का जो भी इस समय जुड़े हुए हैं, एंजॉय कीजिए अपने गानों को।
0: बॉली ब्रंच RM2 रेडियो मस्ती।

0: RM2
1: Radio Musti.
2: एगो लास्योरेंस लावी कौन जी है जी काल कुछ तोहरा हो जाए तो ई तोहर और तोहर परिवार खातिर एगो सुरक्षा है पर जाने ला ई से तू एगो इन्वेस्टमेंट भी करे सकबा सिकम मैक्स इन्वेस्टमेंट ऐसन कई गो ऑप्शन बा जो बहुत फ्लेक्सिबल बाटी तोहर महीना के पेमेंट के एगो हिस्सा तोहर लास्योरेंस लावी में जाए और दूसर हिस्सा तोहर पसंद के फोन में सकबा इन्वेस्ट करे जो निर्भर रही की आप कितना रिस्क ले सकबा नतीजा एगो ऐसन लास्योरेंस जो तोहर परिवार के सुरक्षा करी और तोहर निवेश योजना में भी कामे आई सिकम के प्रस्तावित लाइफ इंश्योरेंस प्लान्स पर जस्ती जानकारी खातिर हमनी के प्रतिनिधि से संपर्क कर या sikkim.mu पर जाइहा इमे नियम आ शर्त भी लागू बा सिकम FSC के लाइसेंस के तहत काम करेला
3: सिकम ग्रुप ए लाइफटाइम कमिटमेंट
4: Join the RM2 team this Monday, 21st of September on the parking lot of Dream Prize Suyak for a job and training fair organized by the Ministry of Labour and Industrial Relations. RM2 will be live us from 10 a.m. to noon. So don't miss out.
0: RM2
1: Radio Musti.

तो सुनो जरा, आप सब कमाते हैं, घर चलाते हैं, हमारे वो मील्स जिनके लिए हम तो यही कहेंगे हैट्स ऑफ टू यू, पर थोड़ा सा टाइम अपने लिए भी निकालो, चाय पियो, थोड़ा सा इंजॉय करो, गानों के साथ साथ अपनी जिंदगी को भी ब्यूटीफुल, आपके साथ आपका ये सफर रहे जो भी इस समय ड्राइव कर रहे हैं।

0: Holly Branch RM2 Radio Masti.
1: 1:52 हो चुके हैं और इसी के साथ में बॉली ब्रंच यहीं रुकता है, पर मस्ती कंटिन्यू रहेगी क्योंकि हमारी जो भी नेक्स्ट आरजे आएंगी आपके कहते हैं ना मॉर्निंग को जिस तरीके से खूबसूरती से रिया ने बनाया, उसके बाद हंसनी आपके साथ थी, उसके साथ में मैं अब थी आपके साथ पूनम, पर मेरे बाद आने वाले हैं संजय जी और संजय जी भी अपने खूबसूरत गानों के साथ आने वाले हैं। तो हम तो यही कहेंगे आपकी आपकी मॉर्निंग जो है ना बहुत खूबसूरत रही होगी, अब नून भी बहुत अच्छा रहा होगा, अब आपकी बात आती है शाम की तो शाम भी आपकी बहुत अच्छी सी रहे। इंजॉय कीजिएगा अपने दिन को और शाम को। मेरे जाने का वक्त हो गया, आपसे लेती हूँ इजाज़त, पर संजय जी का साथ ज़रूर दीजिएगा, इंजॉय कीजिएगा अपने गानों को और साथ में बॉली ब्रंच को जो आपने इतना प्यार और इतने सारे मैसेजेस दिए, आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। तो मेरी तरफ से होगा बाय बाय और संजय जी की तरफ से होगा हाय।
0: बॉली ब्रंच RM2 रेडियो मस्ती।

0: Center 99.4
1: RM2 Radio Musti.
2: Radio Musti.
1: The latest news and the greatest mix of music. Feel the Musti.
3: Din ke 2 baj rahe hain. सुनते समाचार आसाजी के साथ नमस्कार
4: नमस्कार दो बजे के समाचारों में स्वागत है आप सभी का। एफसीसी सोमवार और मंगलवार को खिजवी में करीब 40 गाड़ियों की नीलामी करेगी। नीलामी सुबह 10 बजे से दोपहर 1:30 बजे तक होगी। लोग गाड़ियां रविवार को सुबह 9:30 बजे से दोपहर 1 बजे तक देख सकेंगे। पहली नीलामी में 69 सामान की बिक्री के 3,34,00,000 रुपए मिले थे। इस बीच सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद यशीष इमरत और उनकी कंपनी की 4 गाड़ियां इस नीलामी में नहीं बेची जा सकेंगी। त्रियोले में सरस्वती मुचिया की हत्या के मामले में पुलिस संदिग्ध की तलाश कर रही है। 60 साल की इस सब्जी विक्रेता की गला घुटने से मौत हुई थी। उनका शव उनके खेत में मिला था। थोबिश के अपराध शाखा क्राइम यूनिट कई पहलुओं से जांच कर रही है। सर अनिरुद्ध जगनाथ ब्रिज के पास आज सुबह 57 साल के एक व्यक्ति का शव मिला। वो रूसिल का रहने वाला था और कल से लापता था। उसकी मोटरसाइकिल भी पुल के पास मिली। मौत किन परिस्थितियों में हुई इसकी जांच की जा रही है। जॉन मिक मॉटिंगेल की मौत की न्यायिक जांच कल रोजेल की अदालत में जारी रही। सुनवाई में बोबा सेंट जेल में की गई घटनाओं की पुनर्रचना और 5 जेल अधिकारियों के पहले दिए गए बयानों पर सवाल उठे हैं। जॉन मिक मॉटिंगेल की मौत 8 सितंबर 2024 को हुई थी। फोर मिलिटेंट प्रोग्रेसिस्ट ने प्रस्तावित नेशनल क्राइम एजेंसी पर सवाल उठाए हैं। पार्टी के नेता पुल बिहोंजी का कहना है कि नई संस्था के अधिकार पुलिस कमिश्नर के अधिकार को प्रभावित कर सकती है। उन्होंने इसके भावी डायरेक्टर जनरल की नियुक्ति पर भी सवाल किया। एफएमपे ने सरकार से नेशनल क्राइम एजेंसी बिल राज्यसभा में पेश न करने को कहा है। पार्टी के अनुसार प्रस्ताव आगे बढ़ा तो वो अदालत जा सकती है। विदेश स्तर की खबरों में पाकिस्तान के कोहाट में पुलिस हेडक्वार्टर्स पर हमले में कम से कम 31 लोगों की मौत हो गई है। मृतकों में 16 पुलिसकर्मी और 100 से अधिक लोग घायल हुए हैं। हमला एक आत्मघाती विस्फोट से हुआ जिसके बाद गोलीबारी हुई। इसके साथ संक्षिप्त समाचार समाप्त हुए। बढ़ते हैं शोक समाचारों की ओर। श्वाजी रोड पुस्तफ्लाक में 70 साल की 70 की श्रीमती राजकुमारी बिस्तुनुत की मृत्यु हो गई है। उनके अर्थ कल सुबह कल रविवार 20 सितंबर को सुबह के 10 बजे उनकी बहन फुलमनी बिस्तुनुत के मकान पुस्तफ्लाक से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए श्वाजी पुस्तफ्लाक की शमशान भूमि ले जाया जाएगी। क्रीमेशन टुमारो एट 10 AM। रॉबर्ट एडवर्ड ओबिया एडवर्ड हॉट ट्रेफ रोजिल में 58 साल की 58 की आरती कुमारी बंधु की मृत्यु हो गई है। पैदाइश नाम सिबोरत, लोग उन्हें अमिता के नाम से अधिक जानते थे। उनके अर्थी कल दिन के 12:30 उनके पति धीरज बंधु के मकान रोजिल से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए पालमा की शमशान भूमि ले जाया जाएगी। क्रीमेशन टुमारो एट 12:30। शोक में डूबे इन दोनों परिवारों के प्रति हमारी गहरी सहानुभूति है।
5: Plug and play.
1: RM2.
5: Plug and play.

0: Plug and play.
1: RM2.
2: दो बजकर सात मिनट ऑन द फ्रीक्वेंसीज ऑफ रेडियो मस्ती. हमारे तमाम सुनने वालों को बहुत बहुत शुक्रिया. टू प्लग इन एंड एंजॉय द म्यूजिक ऑन द फ्रीक्वेंसीज ऑफ रेडियो मस्ती. याद है कि समय समय पर हम आपको ले चलेंगे शनिवार फॉर द रेसेस, और बेशक आपके मैसेजेस का इंतजार रहेगा ऑन 549-9294. विशिंग यू ऑल अ वेरी वेरी नाइस लिसनिंग ऑन योर फेवरेट रेडियो स्टेशन.

0: FM2
1: रेडियो मस्ती।
0: क्या आप शादी की शॉपिंग करने के लिए अलग अलग जगह जाने की सोच रहे हैं? अब इसकी जरूरत नहीं, हर कोड़ी फैशन के यहाँ पूरे परिवार के लिए सब कुछ एक ही छत के नीचे अवेलेबल है। डिजाइनर लहंगास, लच्छास, जोधपुरीज, सारीज, क्रॉप टॉप्स, शेरवानीज, कंप्लीट सूट्स, ब्लेजर्स एंड मच मोर एट अनबीटेबल प्राइसेस। हर कोड़ी फैशन, रॉयल रोड अपोजिट पॉपुलर मुसेस गार्डन। फोन नंबर 5799-3782। हर कोड़ी फैशन, परंपरा, एलिगेंस एंड क्वालिटी।
2: एगो लास्योरेंस लावी कौन ची है? जे काल कुछ तोहरा हो जाए तो ई तोहर और तोहर परिवार खातिर एगो सुरक्षा है। पर जाने ला ई से तू एगो इन्वेस्टमेंट भी करे संगबा। सिकम मैक्स इन्वेस्टमेंट ऐसन कई गो ऑप्शन बा जोन बहुत फ्लेक्सिबल बाटी। तोहर महीना के पेमेंट के एगो हिस्सा तोहर लास्योरेंस लावी में जाए और दूसर हिस्सा तोहर पसंद के फोन में संगबा इन्वेस्ट करे, जो निर्भर रही कि आप कितना रिस्क ले सकबा। नतीजा एगो ऐसन लास्योरेंस जोन तोहर परिवार के सुरक्षा करी और तोहर निवेश योजना में भी कामे आई। सिकम के प्रस्तावित लाइफ इंश्योरेंस प्लान्स पर जस्ती जानकारी खातिर हमनी के प्रतिनिधि से संपर्क कर या sikkim.mu पर जाइह। इमे नियम आ शर्त भी लागू बा। सिकम FSC के लाइसेंस के तहत काम करेला।
3: सिकम ग्रुप, ए लाइफटाइम कमिटमेंट।
4: Join the RM2 team this Monday, 21st of September, on the parking lot of Dream Prize Suyak for a job and training fair organized by the Ministry of Labour and Industrial Relations. RM2 will be live as from 10 a.m. to noon, so don't miss out.
0: RM2
1: Radio Musti.
0: Plug and play.
1: RM2
0: Plug and play.

0: RM2
1: Radio Musti.
0: Samsung Galaxy S26 FE अब आ गया है सिर्फ 36,990 रुपीस में. साथ में मिल रहा है 6,000 रुपीस का डिस्काउंट. आप सब जानते ही हैं, लेकिन थ्वासिसाई में आपके पास पेमेंट की चॉइस भी है. आप चाहें तो अपने बैंक कार्ड से 3 महीने में बिना किसी इंटरेस्ट की पेमेंट करें, या फिर अपने क्रेडिट कार्ड से 12 महीने में बिल्कुल बिना इंटरेस्ट की पेमेंट. और हाँ, भूलिएगा मत, गिफ्ट में मिलेंगे सैमसंग केयर प्लस और गूगल AI प्रो. तो देर किस बात की है, सैमसंग गैलेक्सी S26 FE अब अवेलेबल है थ्वासिसाई के स्टोर्स में और thwasisan.mu पर भी. RM2
1: रेडियो मस्ती.
2: Plug and play.
1: RM2.
2: Plug and play.

0: Plug and play.
1: RM2.
2: A very pleasant remake of Ishq Khudai Rab Ne Banai. Thank you for joining Plug and Play on the frequencies of Radio Masti. Sanjay aapke saath on the mic. और शुक्रिया आपके मैसेजेस के लिए ये मैसेजेस आए हैं नाशिन की ओर से वी आर ऑल विजिटर्स टू दिस टाइम टू दिस प्लेस वी आर जस्ट पासिंग थ्रू आवर पर्पस हियर इज टू ऑब्जर्व टू लर्न टू ग्रो टू लव एंड देन वी रिटर्न होम ब्यूटीफुल बहुत ही प्यारा सा मैसेज है आपकी ओर से नाशिन फ्रॉम रूमी और आज जो आपने मैसेज भेजा है पर्टिकुलरली नाउ लिखा गया है द केव यू फियर टू एंटर जो गुफा में आप एंटर करने से डर रहे हैं हु नोज मे हो द लाइट यू सिंक कौन जाने जिस ज्योति की तलाश में आप हैं वह ज्योति उसी गुफा में है ब्यूटिफुली ब्यूटिफुली रिटन एंड ब्यूटिफुली सेंट फ्रॉम नाशरीन ऑफ पोर्ट लुइस थैंक यू

0: Plug and play.
1: RM2.
2: Yes, Plug and Play संजय के साथ काफी प्रेरणादायक, काफी inspirational, काफी motivational messages हम तक पहुंच रहे हैं on 5499294. जैसे कि माला जी ने हमें भेजा, बहुत बहुत शुक्रिया माला जी for this very sweet message from you. लिखते हैं कि life is short, love deeply, forgive often, stay humble and never give up. और वो आगे लिखते हैं वेरी ब्यूटीफुल लाइन कि व्हाट्स मेंट फॉर यू विल फाइंड यू. जो आपके लिए लिखा गया है, जो आपके लिए लिखा है विधाता ने, वो आपको ढूंढ ही लेगा, वो ही आपको ढूंढ लेगा. दैट्स वेरी वेरी डीप माला जी. और शी फिनिशेस जस्ट कीप मूविंग फॉरवर्ड. वंडरफुल माला जी, जस्ट वंडरफुल. थैंक यू.

0: Plug and play.
1: RM2.
2: बज के 45 मिनट यू आर लिसनिंग टू प्लग एंड प्ले संजय के साथ. इफ यू आर सेलिब्रेटिंग योर बर्थडे ऑन दिस 19th ऑफ सितंबर देन लेट मी टेल यू दैट यू आर शेयरिंग योर बर्थडे एक ऐसी अभिनेत्री के साथ जिनको आपने देखा होगा इन द फिल्म फिजा, इक्वली इन द फिल्म राहुल, इन द फिल्म कंपनी. यस, साथ ही साथ उनको आपने देखा होगा इन प्यार इश्क और मोहब्बत.

फिल्म में इस आइटम सॉन्ग में नजर आने के बाद और खासकर उनकी डेयरिंग डांसिंग के बाद शी केम टू बी नोन एज द खलास गर्ल इन बॉलीवुड नजर

0: subscribe to Radio Masti.
1: The time is brought to you by
2: McDonald's. Ba-da-ba-ba-ba. I'm loving it.
1: And RKG Classic Pure Cow Ghee.
0: Radio Masti.
1: North, South,
0: 103.5.
1: East, West,
0: 96.4.
1: Center,
0: 99.4.
3: RM2 Radio Musty.
0: Radio Musty.
3: The latest news and the greatest mix of music. Feel the Musty.
4: सुबह के 3 बज रहे हैं। सुनते समाचार आसाजी के साथ नमस्कार।
5: नमस्कार। एफसीसी सोमवार और मंगलवार को रेजी में करीब 40 गाड़ियों की नीलामी करेगी। नीलामी सुबह 10 बजे से दोपहर 1:30 बजे तक होगी। लोग गाड़ियां रविवार को सुबह 9:30 बजे से दोपहर 1 बजे तक देख सकेंगे। पहली नीलामी में 69 सामान की बिक्री से 3 करोड़ 34 लाख रुपए मिले थे। इस बीच सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद यशीश अमृत और उनकी कंपनी की 4 गाड़ियां इस नीलामी में नहीं बेची जा सकेंगी। त्रियोले में सरस्वती मुचिया की हत्या के मामले में पुलिस संदिग्ध की तलाश कर रही है। 60 साल की सब्जी विक्रेता की गला घुटने से मौत हुई थी। उनका शव उनके खेत में मिला। तोबिश की क्राइम यूनिट कई पहलुओं से जांच कर रही है। सर अनिरुद्ध जगन्नाथ ब्रिज के पास आज सुबह 57 साल के एक व्यक्ति का शव मिला। वो रोजिल का रहने वाला

0: वाला था और कल से लापता था। उसकी मोटरसाइकिल भी पुल के पास मिली है। मौत किन परिस्थितियों में हुई इसकी जांच जारी है। जॉन मिक मॉटिंगेल की मौत की न्यायिक जांच कल रोजिल की अदालत में जारी रही। सुनवाई में बोबा सैन जेल में की गई घटनाओं की पुनर्रचना और 5 जेल अधिकारियों के पहले दिए गए बयानों पर सवाल उठे हैं। जॉन मिक मॉटिंगेल की मौत 8 सितंबर 2024 को हुई थी। फ्रों मिलिटेंट प्रोग्रेसिस ने प्रस्तावित नेशनल क्राइम एजेंसी पर सवाल उठाए हैं। पार्टी के नेता पोल बिरांजे का कहना है कि नई संस्था के अधिकार पुलिस कमिश्नर के अधिकार को प्रभावित कर सकती हैं। उन्होंने इसके भावी डायरेक्टर जनरल की नियुक्ति पर भी सवाल किया। एफएनपी ने सरकार से नेशनल क्राइम एजेंसी बिल राज्यसभा में पेश न करने को कहा है। पार्टी के अनुसार प्रस्ताव आगे बढ़ा तो वो अदालत जा सकती है। विदेश स्तर पर पाकिस्तान के कोहाट में पुलिस हेडक्वार्टर्स पर हुए हमले में कम से कम 31 लोगों की मौत हो चुकी है। मृतकों में 16 पुलिसकर्मी और 100 से अधिक लोग घायल हुए हैं। हमला एक आत्मघाती विस्फोट से शुरू हुआ जिसके बाद गोलीबारी हुई। प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने हमले की निंदा की है। परिसर को पूरी तरह सुरक्षित करने के लिए अभियान जारी है। इसी के साथ संक्षिप्त समाचार समाप्त हुए।
1: Your news on NBC Play, NBC Play, NBCRadio.tv, NBCRadio.tv.
2: The Mauritius Broadcasting Corporation invites you to submit your bid for the provision of medical insurance cover for the period 2026-2027. The bidding document is available free of charge on the Procurement Policy Office website, publicprocurement.govmu.org. Please note that bids must be submitted exclusively by email to tender@mbc.mu. For queries, contact the Tender Committee on 402-8000, extension 427, or email bidsec@mbc.mu by 17th of September 2026. And remember, the deadline for submission is 24th September 2026 at 2 p.m.
3: Plug and play.
4: RM2.
3: Plug and play.

0: Tag and play.
1: RM2.
2: सुबह के 3:07 हुए सभी लिसनर्स को संजय की ओर से प्यार भरा नमस्कार एंड वेलकम इन द सेकंड आवर प्लग एंड प्ले. आज की तारीख 19th of September और 19th of September इन वर्ल्ड हिस्ट्री इन 1893 न्यूजीलैंड वो पहला देश बना. It became the first self-governing country in the world to grant women the right to vote. That was 19 September 1893. जबकि आप तो जानते हैं कि मॉरिशस में ये सुफ्राज यूनिवर्सल बाद में आया, much much later in the 1950s. So 1893 में न्यूजीलैंड became the first self-governing country in the world to grant women the right to vote. और 1982 में कंप्यूटर साइंटिस्ट स्कॉट फलमैन प्रपोज द फर्स्ट इमोटिकन. आजकल तो सोशल मीडिया का ज़माना है, आजकल हाउ वी राइट वो भी बहुत बदल चुका है. आजकल बच्चे जब लिखते हैं तो मोबाइल पर दे यूज लॉट्स ऑफ इमोटिकन्स. So the जो पहला emoticon उपयोग हुआ, that was 19th September 1982 में, जब computer scientist Scott Fallman ने एक smile की जगह क्या propose किया, आप जाकर ढूंढे. The first ever emoticon used online. So all this on the occasion of 19th September. Good listening on Radio Masti.

0: रेडियो मस्ती।
1: जिंदगी एक सफर है सुहाना, यहाँ कल क्या हो किसने जाना।
2: हम भी वो हैं जो कभी किसी के पीछे नहीं खड़े होते, जहाँ खड़े हो जाते हैं लाइन वहीं से शुरू होती है। चलते

0: बेबी को बेस पसंद है।
1: Plug and play.
2: RM2.
3: It's all on the mood. आपका मूड जैसा होता है गाने में आप वैसा ही कुछ ढूंढते हैं। अगर आपको डांस करने का मूड है तो आप गाने में बेस ढूंढेंगे। अगर आप खुश हैं वैसे ही खुश हैं लेकिन डांस करना नहीं चाहते हैं, यूल बी लुकिंग फॉर गुड म्यूजिक एंड लाइटनिंग म्यूजिक। और जब आप उदास होते हैं तो आपका ध्यान ज़्यादा गाने के लिरिक्स पर जाता है। Thank you for joining me in this musical safar plug and play Sanjay ke saath up till 4 PM 3:17 hue hain. Back to you messages aur ye message aaya hai Madhvi ki aur se from Saint François. Kuch samay pehle humne Mala ji ka message padha tha, bahut hi shiksha par bahut hi motivational message Mala ji ne bheja tha aur Madhvi ji ne bahut dhyan se suna wo message और लिखती हैं गॉड गूसबम्प्स महाराज जी के शब्दों को सुनकर। व्हाट वी ऑलवेज फॉरगेट व्हाट मालवी जी लिखती हैं, व्हाट वी ऑलवेज फॉरगेट इज दैट व्हाट इज मेंट फॉर यू विल श्योरली फाइंड यू। लिखते हैं वी जस्ट नीड टू ट्रस्ट इन गॉड्स प्रोसेस। थैंक यू माधवी जी। और जितने भी लोग हमें इस समय सैन फ्रांसवा कैलजिन की ओर से सुन रहे हैं, आप सबों को हमारा सलाम।

खाते की बात हम बात में करेंगे जरूर, लेकिन अभी आपको ले चलते हैं शौर्यमास आज की छठी रेस की के सीधा प्रसारण के लिए।

0: Plug and play.
1: RM2.
2: You're sending some good vibes across the world. रेडियो मस्ती और जितने भी लोग हमें सुन रहे हैं हमारे साथ जुड़े हुए हैं अक्रॉस द वर्ल्ड आपको हम करते हैं सलाम ये मैसेज है देविका जी की ओर से जो पेरिस से हमारे साथ जुड़ी हुई हैं हेलो देविका जी très bonne émission à vous लिखती हैं nice to be having you on board देविका जी and big hi to all those connected with Radio Musti in Paris en France in UK in US in Australia thanks from deepest in our heart. We are sending you some good vibes and from good fragrance from Mauritius. साथ ये मैसेज देते हैं किस्तमा जी की ओर से लिखते हैं कि आज उनकी बहन आशा जानू का जन्मदिन है ओके आशा जानू का जन्मदिन है सो हैप्पी बर्थडे टू आशा जानू फ्रॉम मामा कुमारी एंड फ्रॉम द होल जानू फैमिली साथ ही साथ ये मैसेज है निशा गोकुल की ओर से फ्रॉम अश्विन गेनिये बेटी राया बेटे तविश और पति रमेश के लिए नेक्स्ट सॉन्ग एंड फॉर द होल गोकुल फैमिली जिनको हम करते हैं सलाम एंड टू ऑल दोस कनेक्टेड विद रेडियो मस्ती फ्रॉम अश्विन गेनिये बिग बिग हाई टू यू फ्रॉम द होल टीम

0: Plug and play.
1: RM2.
2: एक प्यार का नगमा है मौजों की रवानी है जिंदगी और कुछ भी नहीं तेरी मेरी कहानी है bringing some very nice memories back from the early 70s and 80s आप सुन रहे हैं प्लग एंड प्ले संजय के साथ 3:44 थोड़ी देर में हम आपको ले चलेंगे शॉनी माउस फॉर द सेवंथ रेस इन दिनों अभी भी कुछ जगहों पर गणेश उत्सव के मौके पर स्थापना हुई है और कल विसर्जन होने वाला है सो आज रात को और भी चंद जगहों पर झांकरी डांसर्स देखने को मिलेंगे खान पान होगा मस्ती होगी भजन भी सुनने को मिलेंगे और गणपति बाप्पा की जय जयकार भी होगी गणपति बाप्पा मोरया पुचावर्षी लोकरिया सो ये सप्ताहांत भी ऐसे ही चलने वाला है लेकिन सर्द के मौसम में प्लीज टेक गुड केयर ऑफ योरसेल्फ्स और बेशक जहां जहां भीड़ होगी वहां पर चालकों से मांग की जाती है दैट यू बी वेरी कॉशियस व्हाइल ड्राइविंग स्पेशली इन द नाइट

सदियन लिसनर्स और कुछ मिनटों में शाम के 4 बज जाएंगे टाइम फॉर मी टू साइन ऑफ लेकिन थोड़ी देर में हम आपको ले चलेंगे शॉनिमास फॉर द रेसेस उसके बाद समाचार और समाचारों के बाद बाकी प्रोग्राम आप सुनेंगे परी के साथ टेक केयर सी यू टुमारो एज फ्रॉम 4 PM बाय बाय

0: 4:03 सुनते हैं देश विदेश की खबरें टीना से आपको नमस्कार
1: नमस्कार संक्षिप्त समाचारों में सबसे पहले स्थानीय खबरें फाइनेंशियल क्राइम्स कमीशन दूसरी बार गाड़ियों की नीलामी कर रही है सोमवार और मंगलवार को सुबह 10 बजे से दोपहर 1:30 बजे तक करीब 40 गाड़ियां रेजवी ट्रियोंग में बेची जाएंगी नीलामी से पहले रविवार को सुबह 9:30 बजे से दोपहर 1 बजे तक लोग इन गाड़ियों को देख सकेंगे खरीदारों के लिए नीलामी से लेकर बिक्री पूरी होने तक एक तय प्रक्रिया है पहली नीलामी में 79 सामान बेचकर 33.4 मिलियन रुपये की रकम जमा हुई थी पुलिस सरस्वती मुथिया की हत्या के मामले में अब भी संदिग्ध की तलाश कर रही है 7 साल की सब्जी बेचने वाली सरस्वती मुथिया की मौत गला दबाने से हुई ये पोस्टमार्टम में सामने आया है उनका शव कल सुबह त्रियोले में उनकी सब्जियों की खेती में मिला था थ्रोबिश की क्राइम ब्रांच मामले की जांच कर रही है और कई पहलुओं पर गौर किया जा रहा है ब्राजील के 57 साल के एक व्यक्ति का शव आज सुबह साज ब्रिज पर मिला वे कल से लापता थे उनकी मोटरसाइकिल भी पुल के पास से मिली है मौत किन हालात में हुई इसकी जांच जारी है आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में फ्रंट मिलिटेंट प्रोग्रेसिस्ट ने प्रस्तावित नेशनल क्राइम एजेंसी पर अपनी बात रखी पर बेरांजे का कहना है कि इस नई संस्था से मॉरिशस में पुलिस कमिश्नर के अधिकार पर असर पड़ सकता है उनके मुताबिक कुछ मामलों में पुलिस कमिश्नर को नेशनल क्राइम एजेंसी के डायरेक्टर जनरल के निर्देश मानने पड़ सकते हैं एफएमपी ने सरकार से नेशनल क्राइम एजेंसी बिल को संसद में पेश न करने की मांग की है विदेश में राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने डेनमार्क के साथ ग्रीनलैंड में अमरीकी सैन्य मौजूदगी बढ़ाने के लिए समझौता होने का ऐलान किया है समझौते के तहत डेनमार्क ग्रीनलैंड पर अपना अधिकार बनाए रखेगा जबकि अमरीका को इस आर्कटिक इलाके की सुरक्षा पर स्थायी नियंत्रण मिलेगा तो इसी के साथ संक्षिप्त समाचार समाप्त हुए हमें आगे आदि नमस्कार
2: Your news on NBC Play, NBC Play, NBC Radio.tv, NBC Radio.tv.
3: RM2 Radio Musti.
4: The time is brought to you by
5: McDonald's. Ba-da-ba-ba-ba. I'm loving it.
4: And RKG Classic Pure Cow Ghee.
3: Radio Musti.
4: North, South,
3: 103.5.
4: East, West,
3: 96.4.
4: Center,
3: 99.4.
6: RM2, Radio Musti.
3: Radio Musti.
6: The latest news and the greatest mix of music. Feel the Musti.
0: Time check, 4:06.

0: म्यूजिक टक टक
1: RM2 रेडियो मस्ती।
2: तो चलिए दोस्तों, 4:09 हो गए हैं एंड टाइम टू वेलकम यू ऑल वंस अगेन RM2 रेडियो मस्ती आफ्टर रेसेस। इट्स टाइम फॉर योर म्यूजिक टक टकाटक। अभी से लेकर शाम के 7 बजे तक मैं हूँ परी आपके साथ। एंड आज का ये खूबसूरत सैटरडे कर रहा है आपका फुल ऑन वेलकम। मौसम एकदम मस्त, और इस मस्त मौसम में जो भी है आपके प्लान्स, हाँ मुझे सजाने वाली हैं विद सम ब्यूटीफुल सॉन्ग्स। साथ ही यहाँ पर आप अपने मैसेजेस, अपनी बेस्ट विशेज हम तक पहुँचा सकते हैं ऑन 5499-1294। And to start with, आज on 19th of September, जो भी लोग अपना birthday celebrate कर रहे हैं, loads of good wishes आपके नाम।

0: रेडियो मस्ती।
1: So well, यहाँ पर we have special wishes, happy first birthday to आराध्वी मूरत। Best wishes लेकर आई हैं मामा युधिषा, पापा नितेश, दादी कविता, चाचा निलेश, भाई अवीश, गाँव मामा अनिशा एंड गाँव पापा आतिश, साथ में है नानी पून, नाना सूरज एंड मामू युवान। Special special wishes from गणपत। तो चलिए good good wishes to you dearest आराध्वी। आज 1 year की हुई है, 1 साल की हो गई हैं आप। So special wishes, loads of love, ये है पूरे परिवार की ओर से। Everyone who's celebrating their birthday, आज special wishes हमारी पूरी रेडियो मस्ती टीम की ओर से।

0: North, South, East, or West. Tune into the very best. Radio Masti, your number one Balalut station.
1: एंड बेस्ट विशेस के साथ बेस्ट मिक्स ऑफ म्यूजिक आपके लिए अभी से लेकर शाम के 7 बजे तक मैं हूं परी आपके साथ दोस्तों एंड योर मैसेजेस योर डेडिकेशंस हैपनिंग 5499124 पर फॉर नाउ वी हैव शफकत अमानत अली की आवाज ब्यूटीफुल सॉन्ग हमारे सभी लिसनर्स के नाम हैव अ ग्रेट टाइम ये है आरएम2 रेडियो मस्ती

So well friends, यहाँ पर best mix of music लेकर आए हैं आपके लिए and साथ दे रहे हैं हमारे सभी listeners. So जहाँ कहीं से भी tune in किया है, जो भी है आपके weekend plans, हम तो हैं आपके साथ, आपको entertain करने. यहाँ पर अंकिता हमारा साथ दे रही हैं आप एंड डेडिकेट करना चाहती हैं गाना फॉर विकी, ही सेलिब्रेटिंग हिज बर्थडे आज. ओके, सो आज ऑन 19th ऑफ

आपके लिए एंड साथ दे रहे हैं हमारे सभी लिसनर्स. सो जहां कहीं से भी ट्यून इन किया है, जो भी है आपके वीकेंड प्लान्स, हम तो हैं आपके साथ आपको एंटरटेन करने. यहाँ पर अंकिता हमारा साथ दे रही हैं आप एंड डेडिकेट करना चाहती हैं गाना फॉर विकी. ही सेलिब्रेटिंग हिज बर्थडे आज. ओके, सो आज ऑन 19th ऑफ सेलिब्रेट कर रहे हैं आप सभी के साथ जो इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं. मेरी का साथ है मैसेजेस डेडिकेशंस 5499 1294 पर.

0: म्यूजिक टकटकाटक
1: RM2 रेडियो मस्ती
2: एंड वेल यहाँ पर राधा अष्टमी की शुभकामनाएं दारिन श्वेता रवि श्रीशा लवशाना पाडू फैमिलीज फ्रॉम गोशनुआ थैंक यू सो मच और चलिए गुड आफ्टरनून विशेष के साथ यहाँ पर स्वीट से डेडिकेशन कहते हैं गाना हो जाए फपति लाल देव बेटा विकी बहू कृति और साथ में है बेटी श्वेता दामाद रोशन रिद्धि सोनाक्षी अवनी एंड क्यूट वंश एंड दैट्स कमिंग फ्रॉम सुया बिहारी कुंकुमा से आप साथ दे रही हैं सो गाना आपके स्वीट परिवार के नाम साथ देने के लिए शुक्रिया रेडियो मस्ती को चुनने के लिए शुक्रिया Well, यहाँ पर गाना हो जाए फॉर नितिन एंड मिसिंग हिम सो मच दैट्स कमिंग फ्रॉम पूजा उनके लिए डेडिकेशन क्या बात है गानों को सुनकर आप भी मिस कर रही हैं उन्हें सो गाना होगा उनके लिए एंड साथ ही यहाँ पर सीता गीता बोलोराम हमारा साथ दे रहे हैं शातो बनारस से सो हैव अ वंडरफुल वंडरफुल टाइम RM2 रेडियो मस्ती के साथ खूबसूरत गानों का कारवा जारी है यहाँ पर पूनम जी अपनी स्वीट स्माइल के साथ आई हैं सो उनको भी हम वेलकम करते हैं एक चाय की चुस्की उनके साथ भी लगाते हैं एंड एंजॉय योर टाइम थोड़ी ही देर में लेकर चलेंगे आपको शॉन दे मास फॉर योर रेसेस स्टे वेल कनेक्टेड

0: म्यूजिक टकटकाटक
1: RM2 रेडियो मस्ती।
2: एंड वेल फ्रेंड्स, जैसे हम कहते हैं वक्त किसी के लिए नहीं रुकता, लेकिन जब वीकेंड आता है थोड़ा सा वक्त जो है वो आपको मिलता है जिसे आप ब्यूटीफुल मेमोरीज में कन्वर्ट कर सकते हैं। मोमेंट्स को स्पेशल बनाना ज़रूरी होता है और यही मोमेंट्स हैं जो बाद में आपकी ब्यूटीफुल मेमोरीज बनकर आपके दिल के करीब रहेंगी। सो आज के इस सैटरडे को आप बिल्कुल भी वेस्ट मत करिए। अगर आप आराम फरमा रहे हैं, दैट्स अ वेरी नाइस थिंग टू डू। और जो भी अगर प्लान्स बन रहे हैं कहीं घूमने फिरने के, या फिर अभी भी हम जानते हैं कि बहुत सारी जगह गणेश चतुर्थी चल रही है, प्रेयर्स चल रहे हैं, तो अगर आपका प्लान है कि आज किसी प्रेयर का हिस्सा बनने वाले हैं या फिर आज राधा अष्टमी के लिए आप प्रेयर करने जाने वाले हैं, जो भी है आपके प्लान्स, हम तो हैं आपके साथ जुड़े हुए। शॉपिंग का प्लान है, घूमने फिरने का प्लान है, लॉन्ग ड्राइव पर जाने का प्लान है, आप भूलिएगा नहीं दैट RM2 रेडियो मस्ती इट्स ऑलवेज कनेक्टेड आपके साथ। गुड म्यूजिक आप तक पहुंचाते रहते हैं, आपके दिलों को बहलाते रहते हैं। और वेल नेक्स्ट गाने के साथ, नेक्स्ट ट्रैक के साथ हम बढ़ने वाले हैं टुवर्ड्स द नेक्स्ट आवर। होने वाले हैं इंग्लिश फ्लैश न्यूज एग्जैक्टली एट 5 PM। उसके बाद म्यूजिक कंटिन्यूज, दैट्स योर म्यूजिक टकटकाटक। मैं हूं परी आपके साथ शाम के 7 बजे तक।

0: बिल्कुल दोस्तों, यहाँ पर 5:10 हो गए हैं एंड सैटरडे की ये दोपहर जहाँ पर आप हमारा साथ दे रहे हैं, दोपहर से धीरे धीरे हम शाम की ओर बढ़ रहे हैं, लेकिन द म्यूजिक कंटिन्यूज मॉर्निंग हो या फिर आफ्टरनून या फिर नाइट 24/7 आपके साथ, ये है आपका अपना RM2 रेडियो मस्ती। अभी के लिए वार्म वेलकम, 5:10 हो गए हैं सैटरडे आफ्टरनून में, आप हमारे साथ जुड़े हुए हैं एंड आई डू होप दैट आज आप अपना सैटरडे एकदम मस्त एंजॉय कर रहे हैं। करना भी चाहिए दोस्तों, बिकॉज मौके तो कम ही मिलते हैं जिंदगी को खुल कर जीने के, हमेशा दिमाग में कुछ ना कुछ चलता रहता है। और ये भी एक बहुत ही ऑब्वियस सी बात है कि हमेशा हम वेट करते हैं राइट टाइम का, या फिर सोचते हैं कि भाई वो घड़ी जब आएगी, जब सब कुछ ठीक हो जाएगा तब देखेंगे, तो वो घड़ी तो कभी नहीं आती है। लाइफ में कुछ ना कुछ हसल्स हमेशा चलते रहते हैं एंड आई गेस दैट्स द ब्यूटी ऑफ लाइफ। सो हमेशा परफेक्ट सब कुछ तो नहीं होने वाला है, लेकिन जो टाइम आपको आज मिला है, जो पल आपको आज मिले हैं, उन्हें आप परफेक्ट जरूर बना सकते हैं। सो मेक द मोमेंट काउंट, और अपनों के साथ है, दोस्तों के साथ है, या फिर खुद के साथ मी टाइम स्पेंड कर रहे हैं, जो भी है आपके प्लान्स, हम तो आपको एंटरटेन करने वाले हैं विद सम ब्यूटीफुल ट्रैक्स। मैं हूं परी आपके साथ शाम के 7 तक एंड गुड म्यूजिक लेकर आए हैं आपके लिए ऑन RM2 रेडियो मस्ती।
1: नॉर्थ, साउथ, ईस्ट और वेस्ट, ट्यून इन टू द वेरी बेस्ट Radio Masti, your number one beloved station.
0: सभी के लिए लगाते हैं थोड़ा सा रोमांस का तड़का, दैट्स कुणाल गांजा वाला ऋचा शर्मा की आवाजें फ्रॉम द फिल्म सिंघम। वी हैव दिस सुपर सुपर ब्यूटीफुल सॉन्ग डेडिकेट कर रहे हैं आप सभी के लिए, हमारे डियर लिसनर्स जो साथ दे रहे हैं। सो आपके सैटरडे को बना रहे हैं स्पेशल विद दिस ब्यूटीफुल मेलोडी। एंजॉय दिस वन।

0: म्यूजिक टकटकाता
1: RM2 रेडियो मस्ती.
2: So that was in the voice of Usha Uthup and Rekha Bharadwaj. Saath Khoon Maa FM ka ye gaana aap sabhi ke liye jo is waqt saath de rahe hain on Radio Masti. So well friends, Saturday hai and aapka pyar, aapke messages, aapke dedications yahan par pahunch gaye hain on 54991294. Hamari pyari si Vijaya ji, hello, hello to you as well. I do hope you're enjoying your weekend, Vijaya ji, aur tabiyat ab thodi si theek ho rahi hai aapki. Good wishes aap tak pahuncha rahe hain aur good music ke saath koshish yahi rahegi ki aapke dil ko, aapke मन को हम खुश रखें. और चलिए यहाँ पर कहते हैं हेलो प्यारी दिव्या. हाँ, मेरी और दिव्या की आवाज़ बहुत मिलती जुलती है, लेकिन इट्स फरी यहाँ पर. और दिव्या आज छुट्टी एंजॉय कर रही है, सो हमने सोचा कि क्यों ना हम आपको बहलाएं उनकी जगह यहाँ पर आकर. सो टीना यहाँ पर साथ दे रही हैं, कहती है गाना हो जाए फॉर लेडी अरुणा एंड शी इज सेलिब्रेटिंग हर बर्थडे टुमारो. उनके लिए लोड्स ऑफ लव, किसेज, हेल्थ, वेल्थ, गुड विशेज कमिंग फ्रॉम लेडीज टीम. टीना है रागिनी, संजना, डाना और उनके हस्बैंड संदरन. उनके लिए एडवांस विशेस और उनके लिए बहुत सारा प्यार. ये है पूरी उनकी लेडीज गैंग की ओर से. एंड ऑफकोर्स हैवी ड्यूरेस्ट सेंडिंग लोड्स ऑफ लव उनके नाम. चलिए एंजॉय कर रही हैं शो को, थैंक यू सो मच. अगला गाना होगा फॉर बेटी खायरा और साथ में है बेटा प्रयान. ममा कृष्टी है, उनके लिए भेज रही है बहुत सारा प्यार. कृष्टी निकित सिंह ऑफ रोजबेल. साथ में है नानी जानी, सरिता, अनिता, शोभा, नाना, मुकेश, मनोज, सुरेन, सभी त्रिपोल परिवार लेस्कालिये से एंड उब्रू परिवार रोजबेल से भेज रहे हैं अपना प्यार. साथ ही यहाँ पर जाना जी आई है अपने ढेर सारे प्यार के साथ. कहती है कि आज बहन सकुन अपना बर्थडे सेलिब्रेट कर रही है, सेलिब्रेटिंग हर 55th बर्थडे आज. उनके लिए स्पेशल विशेज, स्वीट बहन के लिए बहुत सारा प्यार और उनके लिए शुभकामनाएं. ये है उनके पूरे परिवार की ओर से, रीमा, जनता, सेष्टा, अंजनी, सिल्विया, युवी, कृषि, शिवसरण परिवार और फ्लाक. विश करना चाहते हैं सकुन जी आपको वेरी हैप्पी बर्थडे एंड ऑफकोर्स टू ऑल दोस्ट जो आज सेलिब्रेट कर रहे हैं अपना बर्थडे, हैव अ ग्रेट वन.

0: RM2 रेडियो मस्ती
1: फैशन टिप्स पावर्ड बाय हलकरी फैशन हाउस ऑफ रेडीमेड गार्मेंट्स म्यूजिक टकटकाटक
2: RM2 रेडियो मस्ती
3: तो चलिए दोस्तों अभी के लिए इट्स टाइम टू शेयर सम फैशन टिप्स. जैसे हम बता रहे थे दैट फेस्टिव सीजन है तो ट्रेडिशनल लुक के बारे में ही बात करेंगे. सो सेम साड़ी ये तो हम जानते हैं कि हर बार नई साड़ी खरीदना अच्छा लगता है लेकिन एट टाइम्स होता है दैट यू डोंट हैव

0: न्यू साड़ी टू वेयर और आपको वही पुरानी साड़ी पहननी होती है सो आप इसको पे कर सकते हैं विद अ डिफरेंट ब्लाउज कंप्लीटली डिफरेंट वाइब मिलता है और साथ ही साथ जैसे हम कहते हैं कि अगर आपका ब्लाउज उसमें आपकी डिफरेंट नेक लाइन है आपकी स्लीव्स आपके टेक्सचर्स जो साड़ी को मैच करते हैं सो ये आपके लुक को और भी एलिवेट करती है सो ये एक स्टाइल आप ज़रूर ट्राई कर सकते हैं ब्लाउज जैसे हम कहते हैं कि चेंज कर सकता है कंप्लीट लुक को सो सेम साड़ी डिफरेंट ब्लाउज एक डिफरेंट लुक तो ज़रूर देता है साथ ही ड्रेपिंग जी हाँ साड़ी ड्रेपिंग ये आप कितनी तरह से अपनी साड़ीज को ड्रेप कर सकते हैं साड़ी का ड्रेप या फिर दुपट्टा प्लेसमेंट सिंपल आउटफिट को इंस्टेंटली एलिगेंट बना सकता है अगर आप चाहें तो वो आगे पल्लू वाली साड़ी आप डाल सकते हैं अगर आप पीछे प्लीटेड पल्लू रखना चाहते हैं ये भी अच्छा लगता है सिंपल फ्लोइंग पल्लू आप यूज़ करना चाहते हैं ये भी हो सकता है और आजकल तो जब आप जैसे हम कहते हैं प्लीट्स बना रहे होते हैं आगे सो ये भी काफ़ी डिफरेंट डिफरेंट स्टाइल से आप इसे बना सकते हैं अगर आप चाहें तो आप अपनी साड़ी को लहंगा लुक भी दे सकते हैं सो देर आर सो मेनी थिंग्स आप एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं अपनी साड़ी के साथ इस फेस्टिव सीजन में साथ ही यहाँ पर ट्रेडिशनल एंड कंटेम्प्रेरी का जो मिक्स है ये भी काफ़ी अच्छा लगता है साड़ी के साथ बेल्ट या फिर कुर्ते के साथ स्टेटमेंट इयररिंग्स लहंगा के साथ स्लीक हेयर स्टाइल थोड़ा मॉडर्न टच देता है और आपके लुक को कम्प्लीटली ट्रांसफॉर्म करता है और कलर्स जी हाँ कलर्स के साथ खेलना भी ज़रूरी होता है अगर आउटफिट ऑलरेडी वाइब्रेंट कलरफुल है तो एसेसरीज इसे आप थोड़ा सा कंट्रोल्ड रख सकते हैं और कभी कभार जैसे हम कहते हैं लेस इज मोर सो आप ट्राई कीजिए अपने स्टाइल को जैसे चाहे उस तरह से आप अपने आप को स्टाइल कर सकते हैं और जैसे हम कहते हैं कॉन्फिडेंस इज एवरीथिंग अगर आप कॉन्फिडेंटली कुछ भी पहनते तो वो अच्छा ही लगता है सो स्टे स्टाइलिश एंड स्टे म्यूजिकल RM2 रेडियो मस्ती के साथ
1: Fashion Tips was powered by Halkori Fashion, House of Ready-Made Garments.

0: Welcome to Radio Mystique.
1: The time is brought to you by
2: McDonald's. Ba-da-ba-ba-ba. I'm loving it.
1: And RKG Classic Pure Cow Ghee.
0: Radio Mystique.
1: North, South,
0: 103.5.
1: East, West,
0: 96.4.
1: Center,
0: 99.4.
3: RM2, Radio Mystique.
0: Radio Mystique.
3: The latest news and the greatest mix of music. Feel the Mystique.
4: Well, it's 5:55. थोड़ी देर में हम बढ़ने वाले हैं समाचारों की ओर, and उससे पहले it's time for your messages, your dedications.
0: Music, tuk tuk tuk.
3: RM2, Radio Mystique.
4: तो चलिए यहाँ पर ओजस्वी हमारा साथ दे रही हैं, साथ में है लवीश, आशी, सोहाती और पुद्र दो हैमलेट से हमारा साथ दे रहे हैं, पापा बॉबी और साथ में है नानी, नाना, रेशमा एंड मिस्टर विराज, सचिन है जो हम पास से हमारा साथ दे रहे हैं. सो गाना आप सभी के लिए. विशिंग यू अ वंडरफुल वीकेंड फैमिली के साथ. हैव अ ग्रेट ग्रेट टाइम. चलिए यहाँ पर रवि जी हमारा साथ दे रहे हैं. आप ऐसा क्या हो गया? चल उम्मीद करते हैं दैट सब कुछ ठीक ठाक ही होगा, लेकिन लाइफ है तो ये सब तो चलता रहता है. एंड यहाँ पर गुड विशेस पहुँचाने हम हमेशा आपके साथ हैं. सो नेक्स्ट वन गोज आउट फॉर यू एंड आई डू होप दैट आपका मूड सेट रहे ऑन दिस सैटरडे एंड ऑफकोर्स फॉर दिस वंडरफुल वीकेंड. विजया जी यहाँ पर अभी भी आप ठीक नहीं हुई है, सो उम्मीद करते हैं दैट यू गेट वेल वेरी वेरी सून. और आजकल मौसम ही थोड़ा सा ऐसा चल रहा है जहाँ पर मौसम चेंज हो रहा है और सर्दी भी है, सो ऐसे में डू टेक प्रिकॉशंस एंड डू टेक केयर ऑफ योरसेल्फ. प्रीतम जी साथ दे रहे हैं आप. प्रीतम बेटू ऑल द वे फ्रॉम पीटू आए हैं अपना प्यार लेकर और एंजॉइंग द ट्रैक्स. थैंक यू सो मच साथ दे रहे हैं आप. सो गाना आपके नाम फॉर योर ब्यूटीफुल वाइफ वर्षा एंड फॉर ऑल योर लव्ड वंस. राधे राधे शीतल हमारा साथ दे रही है. डेडिकेट करना चाहती हैं अगला गाना, ये होगा फॉर योर सिस्टर्स जो इस वक्त हमारा साथ दे रही हैं, कृष्णि है एंड मनीषा, और वी आर हैविंग गुड वाइब्स रेडियो मस्ती के साथ. दैट्स रियली स्वीट, थैंक यू सो मच. आप खुश तो हम भी खुश, और कोशिश यही करेंगे कि आपका जो हैप्पी मूड है उसे हम बनाए रखें. यहाँ पर तैयब जी हमारा साथ दे रहे हैं आप. प्यार भरा सलाम आपके नाम भी. थैंक यू सो मच फॉर ट्यूनिंग इन रेडियो मस्ती के साथ, और उम्मीद करते हैं यू एंजॉयिंग योर वीकेंड. चलिए थोड़ी ही देर में हम बढ़ने वाले हैं समाचारों की ओर, उसके बाद लौट कर आएंगे समाचारों के बाद. म्यूजिक कंटिन्यूज, दैट्स योर म्यूजिक टक टका टक. मैं हूँ परी आपके साथ राइट हियर ऑन RM2 रेडियो मस्ती.
0: म्यूजिक टक टका टक.
3: RM2 रेडियो मस्ती.

नमस्कार, समाचारों में आप सभी का स्वागत है। सबसे पहले आज की सुर्खियां। कल 20 सितंबर को वर्ल्ड क्लीन अप डे मनाया जाएगा। इस संदर्भ में आज मॉरिशस में जीरो डंपिंग अभियान की लॉन्चिंग की गई। मकसद है जनता के बीच जिम्मेदार आदतों को बढ़ावा देना और गैर कानूनी तरीके से कचरा फेंकने यानी इलीगल डंपिंग की समस्या से निपटना। 4 महीने से कम समय में देश में स्टेट एज पेंशन लागू होगा। इस दिशा में समाज सुरक्षा मंत्रालय अपने अफसरों को इस नई धारणा पर सटीक जानकारियां देने के लिए तत्पर है, ताकि वे इस बारे में संभावित पेंशन लाभार्थियों तक उचित जानकारियां पहुंचा सके। ट्रियोले में कल 60 वर्षीय एक महिला सरस्वती मुथिया का शव एक खेत में पाया गया। प्रारंभिक जांच से पता चला कि उसका गला घोंटकर उसे मारा गया है। इस मामले में पुलिस सब पहलुओं पर बारीकी से जांच कर रही है। विदेश में 2030 एजेंडा की समय सीमा ढलने में मात्र 4 साल बचे हैं और संयुक्त राष्ट्र का जायजा स्पष्ट है। दुनिया के देश निर्धारित 17 सतत विकास लक्ष्यों की पूर्ति के लिए जरूरी रफ्तार से आगे नहीं बढ़ रहे। और अब समाचार विस्तार से। कल 20 सितंबर को वर्ल्ड क्लीन अप डे मनाया जाएगा। इस संदर्भ में आज मॉरिशस में जीरो डंपिंग अभियान की लॉन्चिंग की गई। इसका मकसद है जनता के बीच जिम्मेदार आदतों को बढ़ावा देना और गैर कानूनी तरीके से कचरा फेंकने यानी इलीगल डंपिंग की समस्या से निपटना। आज पॉम्पलमुस में इस अभियान की लॉन्चिंग की गई। उपस्थित हुए पर्यावरण मंत्री राजेश भगवान ने इस बात पर बल दिया कि साफ सफाई का संघर्ष प्रत्येक व्यक्ति की जिम्मेदारी है और इस साल की शुरुआत से अब तक पर्यावरण पुलिस ने गैर कानूनी तरीके से कूड़ा फेंकने से जुड़ी लगभग 1000 शिकायतें दर्ज की है। और 4 महीने से कम समय में देश में स्टेट एज पेंशन लागू होगा। इस दिशा में समाज सुरक्षा मंत्रालय अपने अफसरों को इस नई धारणा पर सटीक जानकारियां देने के लिए तत्पर है, ताकि वे इस बारे में संभावित पेंशन लाभार्थियों तक उचित जानकारियां पहुंचा सके। पेंशन सुधार से जुड़ी सुविधाओं के बारे में मंत्रालय के अफसरों को सचेत कराने के वास्ते आज पांतोपिमा में एक प्रथम ग्रुप के लिए एक प्रशिक्षण सत्र लगाया गया। उपस्थित हुए जूनियर मिनिस्टर कुगान पागापेन ने बताया कि मंत्रालय अगले जनवरी महीने में लगभग 10,000 आवेदनों पर काम करने के लिए जरूरी तैयारी कर रही है। ट्रियोले में कल एक हादसा पेश आया। 60 वर्षीय एक महिला सरस्वती मुचिया का शव एक खेत में पाया गया।

0: गया। प्रारंभिक जांच से पता चला कि उसका गला घोंटकर उसे मारा गया है। इस मामले में पुलिस सब पहलुओं पर बारीकी से जांच कर रही है। ऐसे समझा जा रहा है कि ये चोरी का एक मामला था जिसने हिंसक सूरत ली। गीता सुनारान को सुनते हैं।
1: मुच्चा परिवार में गम और हैरानी का माहौल है। 60 साल की सरस्वती मुच्चा, जो दो बच्चों की माँ है, उनकी लाश उनके घर से ही कुछ दूर उनके खेत में पाई गई। जांच के शुरुआती तौर पर ये सामने आया है कि उनका गला घोंटा गया था और उनके शरीर पर चोट के कई निशान भी थे।
2: Ça joue là, les pannes retournent la case. Moi, c'est un téléphone, moi, mais j'ai moi, mais une finale, je disais, ma maman va encore retourner la case, mais jusqu'à avoir un coup. Mon bras, mon de skate, mon allé, mon a un coup. Mais, moi, mon trouvé, la porte, j'ai déjà ouvert, mais mauvais pensée, les points, non. Dans le terrain, quand on arrive à la matière, mon trouvé, l'une tombée, puis maintenant, à côté, l'une tombée là-bas. Mon galopé, mon allé, mon commence à crier, mon maman, m'a levé, mais.
1: जिस टेक्सटाइल कारखाने में सरस्वती मुच्चा काम करती थी, उसके बंद होने के बाद उन्होंने खेती बाड़ी का काम शुरू किया। वो हर रोज सुबह जल्दी अपने खेत जाती थी और बाद में थियोली में अपनी उगाई हुई सब्जियां बेचती थी। पुलिस इस जानलेवा हमले की पूरी घटना को समझने की कोशिश कर रही है। जांच में खास तौर से लूट की संभावना देखी जा रही है। महिला के गहने भी तलाश किए जा रहे हैं। प्राप्त जानकारियों के अनुसार पुलिस की नज़र में एक संदिग्ध व्यक्ति है, उसकी तलाश की जा रही है। इस बीच मुच्चा परिवार कल दोपहर बाद होने वाले अंतिम संस्कार की तैयारियाँ कर रहा है।
0: आपराधिक गतिविधियों से हासिल संपत्ति वापस पाना, गैर कानूनी तरीके से अर्जित संपत्ति जब्त करना या ऐसी संपत्ति के लिए लोगों को जवाबदेह ठहराना जिसका कोई उचित कारण न हो, ये सब जिम्मेदारियां भी फाइनेंशियल क्राइम्स कमीशन के अधिकार क्षेत्र में आती है। प्रस्तावित सुधार के तहत ये कार्य भावी नेशनल क्राइम एजेंसी को सौंपे जाएंगे। संपत्ति की रिकवरी और बिना स्पष्ट स्रोत वाली संपत्ति से जुड़ी प्रक्रियाओं के लिए एक अलग कानून, एसेट रिकवरी एंड अनएक्सप्लेन वेल्थ बिल लागू किया जाएगा। फाइनेंशियल क्राइम्स कमीशन ने जब्त की गई 69 संपत्तियों के ऑक्शन सेल से 33.4 मिलियन रुपये जुटाए थे। अब एफसीसी इस तरह का एक दूसरी कार्रवाई आयोजित कर रहा है। आते सोमवार और मंगलवार को रेजवी में लगभग 40 गाड़ियां नीलामी के लिए रखी जाएंगी, जबकि कल रविवार को एक ओपन डे निर्धारित है।
3: पहली नीलामी के बाद फाइनेंशियल क्राइम्स कमीशन जब्त की गई संपत्ति की एक और नीलामी आयोजित कर रही है। एफसीसी से दीपा रामसोहक बताती हैं, करीब 40 गाड़ियां बिक्री के लिए रखी गई हैं, मोटरसाइकिल, लॉरियां और नावें भी हैं। खरीदार बोली लगाने के लिए तैयार हैं, लेकिन बोली लगने से लेकर बिक्री पूरी होने तक कई औपचारिकताएं पूरी करनी होंगी। बिक्री एक इंडिपेंडेंट ऑक्शनर द्वारा की जाती है। बिडिंग के बाद जो सबसे ज्यादा बोली लगाएगा उसे खरीद की अनुमति दी जाएगी, लेकिन इससे पहले एफसीसी जांच करेगी कि खरीदार का संपत्ति के पूर्व मालिक से कोई संबंध तो नहीं है। 8 अचल संपत्तियां भी बिक्री के लिए हैं। ये प्रक्रिया ओपन बिडिंग के तहत चलेगी। अक्टूबर में ये नीलामी होगी। अपार्टमेंट, जमीन और घर बेचे जाएंगे। 21 सितंबर से फॉर्म उपलब्ध है। नीलामी में रखी गई चीजें रविवार को सुबह 9 बजे से दोपहर 1 बजे तक देखी जा सकती हैं। बोली सोमवार और मंगलवार को सुबह 10 से दोपहर 1:30 बजे तक लगेगी। पहली नीलामी में 69 चीजें कुल 33.4 मिलियन रुपए में बिकी थी। अब एफसीसी दूसरी नीलामी आयोजित कर रही है।
0: तो जैसे कि हम बता रहे थे, आपराधिक गतिविधियों से हासिल संपत्ति वापस पाना, गैरकानूनी तरीके से अर्जित संपत्ति जब्त करना या ऐसी संपत्ति के लिए लोगों को जवाबदेह ठहराना जिसका कोई उचित कारण न हो, ये सब जिम्मेदारी अभी फाइनेंशियल क्राइम्स कमीशन के अधिकार क्षेत्र में आती है और प्रस्तावित सुधार के तहत ये कार्य भावी नेशनल क्राइम एजेंसी को सौंपे जाएंगे। इस पर आधारित ये रिपोर्ट पेश है।
1: मुख्य तंत्र अब भी नहीं बदला है। ये व्यवस्था 10 मिलियन रुपए या इससे ज्यादा मूल्य की संपत्ति

0: पर लागू होगी और जब्त की गई नकदी के मामले में ये सीमा 2.5 मिलियन रुपए होगी। एक अन्य महत्वपूर्ण तत्व यानी सबूत पेश करने की जिम्मेदारी भी नहीं बदली है। संबंधित व्यक्ति को ही अदालत के सामने ये साबित करना होगा कि उसकी संपत्ति अज्ञात स्रोतों से प्राप्त नहीं हुई है। बिना पूर्व न्यायिक अनुमति के कुछ संपत्तियों को अस्थायी रूप से रोकने की शक्ति भी बरकरार रहेगी। इसके अलावा आज की FCC की तरह नेशनल क्राइम्स एजेंसी किसी ऐसी संपत्ति की बिक्री या हस्तांतरण को रोकने के लिए प्रतिबंध दर्ज करा सकेगी जो अज्ञात स्रोतों से प्राप्त संपत्ति की जांच के दायरे में हो। तो फिर क्या बदलाव आया है? एक बड़ा बदलाव ये है कि किसी मामले को अदालत के सामने ले जाने के फैसले से संबंधित प्रावधान बदलेंगे। FCC एक्ट के तहत जब आयोग के पास अज्ञात स्रोतों से प्राप्त संपत्ति होने का उचित संदेह होता है तो उसे अदालत में आवेदन करना अनिवार्य है। नई एजेंसी के लिए ये अनिवार्यता नहीं होगी। नई कानून व्यवस्था के तहत घोषित आय की तुलना में असंगत जीवन शैली को स्पष्ट रूप से ऐसा आधार माना जा सकेगा जिसके आधार पर अदालत ये फैसला निकाल सकती है कि संबंधित संपत्ति अवैध गतिविधियों से प्राप्त हुई है। एक और बदलाव अटैचमेंट ऑर्डर्स से संबंधित नागरिक कार्रवाइयों में है। अब न्यायाधीश संबंधित व्यक्ति को 48 घंटे के भीतर लिखित रूप से ये बताने का आदेश दे सकेंगे कि जब्त किए गए धन और संपत्तियों की प्रकृति क्या है और उनका स्रोत क्या है। नया कानून नेशनल क्राइम्स एजेंसी को कुछ संपत्तियों को अपने संचालन के लिए अपने पास रखने या उन्हें सार्वजनिक प्राधिकरणों को उनके औपचारिक कार्यों में प्रयोग के लिए हस्तांतरित करने की अनुमति भी देता है। इसके विपरीत FCC एक्ट के तहत ऐसी संपत्तियों को बेचना आवश्यक होता है।
1: राष्ट्रीय सभा में क्रियोल मॉरिशियन के इस्तेमाल को लेकर काम जारी है। जनता और संबद्ध साझेदार मंगलवार 22 सितंबर तक अपने प्रस्ताव और सुझाव इस अध्ययन की जिम्मेदार सिलेक्ट कमेटी के समक्ष प्रस्तुत कर सकते हैं। राष्ट्रीय सभा के स्पीकर शिरीन मिहोदी शिफा ने इस सलाहकारी चरण को महत्वपूर्ण बताया।
0: राष्ट्रीय सभा में क्रियोल मॉरिशियन शामिल करने के मामले पर इस समय सलाह मशवरा जारी है। सिलेक्ट कमेटी बनाए जाने के बाद अब आम जनता से अपने सुझाव देने को कहा गया है। राष्ट्रसभा की स्पीकर शिरीन ओमिरोदी जिफ्रा कहती हैं, संसद में प्रधानमंत्री का एक मोशन था जिससे एक सिलेक्ट कमेटी कायम की गई। इसमें संसद के सदस्य हैं जिन्हें मैंने चुना है और ये सिलेक्ट कमेटी निरंतर बैठक लगा रही है, पर मैं इसमें नहीं हूँ। ये गोपनीय तरीके से काम करती है, बंद कमरे में बैठक लगती है। लोग इसमें अपने प्रस्ताव भेजकर भाग ले सकते हैं लिखित रूप से 22 सितंबर तक। ये प्रस्ताव राष्ट्रसभा के क्लर्क को भेजने चाहिए ताकि सिलेक्ट कमेटी विचारों पर अमल कर सके। सुझाव भेजने की आखिरी तारीख मंगलवार 22 सितंबर रखी गई है। सुझाव लिखित रूप में ईमेल के जरिए या इस पते पर भेजे जा सकते हैं, क्लर्क ऑफ द नेशनल असेंबली, पार्लियामेंट हाउस, पोर्ट लुइस, रिपब्लिक ऑफ मॉरिशस, या फिर मेल के जरिए clerk@gov.mu.org पर। ये प्रक्रिया कमेटी को अलग अलग राय जानने में मदद करेगी जिसके बाद वो अपना काम आगे बढ़ा सकेगी।
1: फ्रांस की तरह थाईलैंड ने भी मॉरिशस के लिए एक नया राजदूत नियुक्त किया है जो दक्षिण अफ्रीका में कार्यरत होंगे। एकानल पुलपिपात ने कल स्टेट हाउस रेजुई में गणराज्य के राष्ट्रपति को अपना परिचय पत्र प्रस्तुत किया। दोनों महानुभावों के बीच सहयोग मजबूत करने के मुद्दे पर चर्चा हुई। रेड प्रेस सम्मेलन के दौरान फ्रों मिलिटेंट प्रोग्रेसिस के अधिकारियों ने नेशनल क्राइम एजेंसी कायम किए जाने के मुद्दे पर अपने विचार दिया। दल के नेता पॉल बेरांजे का मानना है कि ये नई संस्था मॉरिशस में पुलिस कमिश्नर के अधिकारों को कमजोर करेगी क्योंकि उनके अनुसार कुछ मामलों में उन्हें नेशनल क्राइम एजेंसी के महानिदेशक के निर्देशों का पालन करना होगा। पॉल बेरांजे ने सरकार से मांग की कि राष्ट्रीय सभा में नेशनल क्राइम एजेंसी बिल पेश न किया जाए और उन्होंने साथ ही कहा कि अगर ये विधेयक आगे बढ़ता है तो फ्रों मिलिटेंट प्रोग्रेसिस इसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट या प्रिवी काउंसिल में अपील करेगा। 17 सितंबर से तमिल समुदाय के भक्तों के लिए भगवान कृष्ण को समर्पित गोविंदन पूजा का व्रत शुरू हुआ। ये पवित्रता और त्याग का महिमा माना जाता है जो इस साल 5 हफ्तों तक चलेगा और 17 अक्टूबर को समाप्त होगा। इस शनिवार से देश भर के कोविलों में प्रार्थनाएं शुरू हो रही है और इसी संदर्भ में

0: रामायण गान हिंदू सांस्कृतिक का एक अभिन्न अंग है। ये परंपरा पीढ़ी दर पीढ़ी आवाज संगीत और रामचरितमानस की चौपायों के पाठ के माध्यम से आगे बढ़ती जा रही है। इसके लिए मुर्श सनातन धर्म टेम्पल्स फेडरेशन की तरफ से महत्वपूर्ण प्रयास किए जाते हैं। इसी परंपरा को आगे बढ़ाते हुए फेडरेशन ने रामायण गान प्रतियोगिता का आयोजन किया था और इसका फाइनल आज पोल्ट्री में आयोजित किया गया। विदेश में 2030 एजेंडा की समय सीमा ढलने में मात्र 4 साल बचे हैं और संयुक्त राष्ट्र का जायजा स्पष्ट है। दुनिया के देश निर्धारित सतत विकास लक्ष्यों की पूर्ति के लिए जरूरी रफ्तार से आगे नहीं बढ़ रहे। संघर्ष, जलवायु संकट, असमानताएं और फंडिंग की कमी विकास में बाधा पैदा कर रहे हैं। और राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने डेनमार्क के साथ ग्रीनलैंड में अमरीकी सैन्य मौजूदगी बढ़ाने के लिए समझौता होने का ऐलान किया है। समझौते के तहत डेनमार्क ग्रीनलैंड पर अपना अधिकार बनाए रखेगा, जबकि अमरीका को इस आर्कटिक इलाके की सुरक्षा पर स्थायी नियंत्रण मिलेगा। देश विदेश की खबरों के बाद आइए अब मौसम का हाल सुनते हैं।
1: पूर्वी से आ रहे अस्थिर बादल हमारे स्थानीय मौसम को प्रभावित कर रहे हैं। पूर्वानुमान है कि आज रात को देश भर में रह रहकर बरसात हो सकती है। हवा पूर्व दक्षिण पूर्व की ओर से 15 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से बहेगी। प्रवाह रेखा के परे समुद्र खराब रहेगा, विशेषकर दक्षिण पश्चिम में 2 मीटर ऊंची लहरें उठेंगी। दूर समुद्र में नहीं निकलने की सलाह दी जाती है। न्यूनतम तापमान सेंट्रल प्लेटो पर 15 से 17 डिग्री सेल्सियस, अधिकतम 21 से 24 डिग्री सेल्सियस। न्यूनतम तापमान शहरी इलाकों पर 19 से 22, अधिकतम 26 से 29 डिग्री सेल्सियस के बीच रहेगा। सूर्यास्त 5:05 पर, सूर्योदय 6:01 पर।

मौसम संबंधी जानकारियों के बाद ही ये समाचार समाप्त हुई। इसे आप तक पहुंचाने में हमें शेव और कोविला का साथ मिला, उन्हें धन्यवाद कहेंगे। जुड़े रहिए थोड़ी देर में शोक समाचार। बिकुलेन शामुनी में 65 साल के 65 के श्री ज्ञानदेव बिकु जो मालबाओ नाम से ज़रा जाने जाते थे कि मृत्यु हो गई। उनके अर्थी कल दिन के 11 बजे उनके घर बिकुलेन शामुनी से उठाकर दफनाने के लिए रिवियरा गाले के शमशान भूमि ले जाई जाएगी। फ्यूनरल टुमरो एट 11 AM। रॉय रोड पोलाजी में 78 साल के 78 के श्री बासुदेव मेगन जो रोहित नाम से ज़्यादा जाने जाते थे कि मृत्यु हो गई है। उनके अर्थी कल सुबह साढ़े नौ बजे उनके घर रॉय रोड पोलाजी से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए बुशों की शमशान भूमि ले जाई जाएगी। क्रिमिशन टुमरो एट 9:30 AM। रॉय रोड ग्लेन पार्क वाकुआमी 74 साल की 74 की श्रीमती बाईजाबाई एसू पैदाइशी नाम गणेश और जो बाईजा नाम से ज़्यादा जानी जाती थी कि मृत्यु हो गई है। उनके अर्थ थे कल दिन के 12 बजे उनके घर रॉय रोड ग्लेन पार्क वाकुआ से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए त्वामा मेल की शमशान भूमि ले जाई जाएगी। क्रिमेशन टुमरो एट नून। कोलंबो रोड लॉन्ग माउंटेन में 70 साल की 70 की श्रीमती जयवंती राम पैदाइशी नाम गुंदा जो शीला नाम से ज़्यादा जानी जाती थी कि मृत्यु हो गई। उनके अर्थी कल दिन के 11 बजे उनके बेटे श्री राकेश राम के घर कोलंबो रोड लॉन्ग माउंटेन से उठाकर दफनाने के लिए खोंगुप की शमशान भूमि ले जाई जाएगी। क्रिमिशन टुमरो एट 11 AM। बनाई द रोड विचिया मिल्ट्रियोले में 60 साल की 60 की श्रीमती सरस्वती मुचा पैदाशी नाम तानी और जो बनीता नाम से ज़्यादा

0: मानी जाती थी कि मृत्यु हो गई उनकी अर्थ है कल सपहर तीन बजे उनके बेटे श्री वेदाशय सूरज मुच्या के घर बुनाई रोड विच्या मिल ठियोड़ी से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए टर्मिनस ठियोड़ी की श्मशान भूमि ले जाया जाएगी क्रमिशन टुमरो एट 3 PM श्वाजी रोड बस द फ्लैक में 70 साल की 70 ईयर्स ओल्ड की श्रीमती राजकुमारी बिस्तुनुत जो चिकिया नाम से ज्यादा जानी जाती थी मृत्यु हो गई उनकी अर्थ कल दिन के 10 बजे उनकी बहन श्रीमती फुलमनी बिस्तुनुत के घर श्वाजी रोड बुस्तफलाक से उठाकर दफनाने के लिए श्वाजी बुस्तफलाक की श्मशान भूमि ले जाई जाएगी क्रिमेशन टुमरो एट 10 AM नंबर 49 रोबर्ट एडवा हाउट ट्रेफ रोजल में 49 रोबर्ट एडवा हाउट ट्रेफ रोजल में 58 साल की 58 ईयर्स ओल्ड की श्रीमती आरती कुमारी बंधु पैदाशी नाम सी बोरत और जो अमिता नाम से ज़्यादा जानी जाती थी कि मृत्यु हो गई उनकी अर्थी कल दिन के साढ़े बारह बजे उनके पति श्री धीरज बंधु के घर नंबर 49 रोबर्ट एडवा हाउट ट्रेफर रोजल से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए गांधी पालमा की श्मशान भूमि ले जाई जाएगी क्रिमेशन टुमरो एट 9:30 रॉयल रोड बनाना क्लूनी में 72 साल के 72 ईयर्स ओल्ड के श्री देवीदिन बाबूलाल जो अनिरुद्ध नाम से ज्यादा जाने जाते थे कि मृत्यु हो गई उनकी अर्थे कल दिन के 11 बजे उनकी पत्नी श्रीमती तारा बाबूलाल के घर वायर रोड बनान क्लूनी से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए बनान क्लूनी की श्मशान भूमि ली जाएगी क्रिमेशन टुमरो एट 11 AM लाकाविया नंबर दो वाकुआ में 86 साल के 86 ईयर्स ओल्ड के श्री श्रवण कुमार आजारी सिंह जो मेघदत्त नाम से ज़्यादा जाने जाते थे कि मृत्यु हो गई उनकी अर्थ कल दिन के सवा एक बजे उनके घर लाकाव्या नंबर 2 वाकुआ से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए सुल्फेनो की श्मशान भूमि ले जाई जाएगी क्रिमिशन टुमरो एट 1:15 PM शो पे डूबे सभी परिवारों के प्रति हमारी गहरी संवेदना है
1: Your news on NBC Play, NBCRadio.tv, NBCRadio.tv.
2: Music, Tactacata.
3: RM2, Radio Musti.

RM2 रेडियो मस्ती। तो चलिए आपका स्वागत करते हैं यहाँ पर, शाम के 6:26 हो चुके हैं। दैट्स योर म्यूजिक टक टकाटक। वंस अगेन अ वार्म वेलकम हमारे सभी लिसनर्स का जो इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आई डू होप यू हैविंग अ ग्रेट ग्रेट टाइम। दोस्तों सैटरडे है, मेक इट स्पेशल। अभी के लिए गानों का कारवा जारी है, अभी से लेकर शाम के 7 बजे तक मैं हूँ परी आपके साथ।

0: रेडियो मस्ती।
1: जिंदगी एक सफर है सुहाना, यहाँ कल क्या हो किसने जाना।
2: हम भी वो हैं जो कभी किसी के पीछे नहीं खड़े होते, जहाँ खड़े हो जाते हैं लाइन वहीं से शुरू होती है। चलते

सो वेल, ऐसे ही कुछ खूबसूरत गाने आपके लिए चलते रहेंगे और मेरे बाद ऑल सेट आप तक स्पोर्ट्स की लेटेस्ट अपडेट्स पहुंचाने हमारे स्पोर्ट्स गुरु विकास रामदिनी ऑलरेडी इन स्टूडियो आपको अकंपनी करेंगे थोड़ी ही देर में. सो उनका साथ निभाइए एंड एंजॉय योर सैटरडे इवनिंग प्यारे गानों के साथ आपके दिल को बहलाएंगे बिकॉज दैट्स योर एम टू रेडियो मस्ती. मुलाकात होगी कल मॉर्निंग इन योर टाइमलेस तड़का 8 से लेकर 11 बजे तक बनेंगे आपकी म्यूजिकल हमसफर. तब तक के लिए एंजॉय गुड म्यूजिक ऑन रेडियो मस्ती.

0: डोंट माइंड, लेकिन इतना अच्छा मौसम है और तुम्हें इन बीमारियों के अलावा और कुछ नहीं सूझता। गुलफाम साहब के फैन हो, कोई शायरी वायरी नहीं आती क्या?
1: बिल्कुल आती है, सुनो।
0: सुना।
1: अर्ज है, दवा भी काम ना आए कोई दुआ ना लगे, दवा भी काम ना आए कोई दुआ ना लगे, मेरे खुदा किसी को प्यार की हवा ना लगे। आदाब।

अर्ज है, कुछ मजनू बने, कुछ रांझा बने, कुछ रोमियो कुछ फरहाद हुए, इस रंग रूप की चाहत में जाने कितने बर्बाद हुए। वो देखो,

जिसे देखो दिल की धुनी रमाता। अरे ये मंदिर नहीं है, शिवाला नहीं है, हसीनों से कह दो कहीं और जाएं, मेरा दिल है दिल, धर्मशाला नहीं है।

0: दीवाने को और कितना दीवाना बनाना है।
1: फूल खिलते हैं, बहारों का समा होता है, ऐसे मौसम में ही तो प्यार जवां होता है। दिल की बातों को होंठों से नहीं कहते, ये फसाना तो निगाहों से बयां होता है।
0: चांद भी फीका लगने लगता है जब तुम सामने मुस्कुराती हो।
2: RM2
3: Radio Musti.
2: Feel the Musti.
0: अगर इश्क

कोई खूबसूरत दुआ है तो मेरी हर दुआ में तुम हो। You are tuned to Radio Masti RM2. Coming next, Jhankar Beats 7 to 9. Namaskar aur swagatam.

0: तुमसे ही और तुम्हारे लिए ही.
1: Ladies and gentlemen, you are listening to Jhumka Beats.
2: RM2 Radio Musti.
0: झंकार बीट्स एवरी सैटरडे इवनिंग 7 to 9. अभी रात के 7:06:12. नमस्कार, गुड इवनिंग, आदाब और प्रणाम. मैं हूँ विकास रामधनी, आपका होस्ट और साथी. शनिवार की रात 7 to 9 तक हमारे आपके बीच एक छोटी सी मुलाकात. सो आज शनिवार है, 7 to 9 इट्स झंकार बीट्स टाइम. और बीटिंग शुरू हो चुकी है इंग्लिश प्रीमियर लीग में. खेल का जोश है, संगीत का और आपके संदेशों का, आपके मैसेजों का रंग. ऑल इन वन 5499-1294-5499-1294 पे यू कैन टेक्स्ट मी. इंग्लिश प्रीमियर लीग में कुछ तो लोचा है. टोटेनहम हॉटस्पर ने अपने प्रथम प्रीमियर लीग गोल स्कोर तो किए आज, फर्स्ट 2 गोल्स, वो भी आखिरी मिनटों में, फिर भी उनकी हार हुई. और इस समय ब्राइटन एंड होव आर्सेनल, लीग लीडर आर्सेनल की हड्डी पसली एक कर रहा है. इट्स 2-0 फॉर ब्राइटन. फंटास्टिक न्यूज फॉर ब्राइटन एंड होव फैंस. सप्ताह के दौरान उन्होंने मैनचेस्टर यूनाइटेड को लुड़काया था, इस बार डिफेंडिंग चैंपियन आर्सेनल को धूल चटा रही है अपने होम मैदान में. ब्राइटन इज लीडिंग बाय 2-0. इट्स हाफ टाइम, अभी एक पूरा हाफ बाकी, यानी कि पिक्चर अभी बाकी है. इसलिए देखते रहिए और सुनते रहिए, अपना टेक्स्ट भेजते रहिए ऑन 5499-1294.

मजबूत हो तो आओ, देखते हैं कि कौन कितने पानी में है। When the going gets tough, the tough gets going.

हम तो आगे पर आप किधर रह गए? Fantastic news, sports news and music on RM2 Radio Masti. Welcome, welcome. ये आपका प्रोग्राम है स्पेशल स्पोर्ट्स एंड म्यूजिक सेगमेंट झंकार बीट्स के साथ।

0: करना है तो बेशुमार ही करना है, वरना ना करना।
1: Ladies and gentlemen, you are listening to Jhumka Beats.
2: RM2, Radio Musti.
0: सार बजकर 17 मिनट और 24 सेकंड। इट्स ए ग्रॉस मिसकंडक्ट बाय ब्राइटन। पास्कल ग्रॉस ने पहला गोल स्कोर किया फॉर ब्राइटन होव। एक दूसरा गोल चौरालंपस कोस्टुलास, एंड इस थर्ड गोल, एक तीसरा गोल भी स्कोर किया अभी अभी ब्राइटन एंड होव में। सो दे आर लीडिंग बाय 3-0 अगेंस्ट द डिफेंडिंग चैंपियन आर्सेनल। कौन एक्सेप्ट कर सकता है, कौन ये स्वीकार कर सकता है कि डिफेंडिंग चैंपियन आर्सेनल लूजिंग बाय 3-0। अभी आज सुबह ही एक दोस्त से बात हो रही थी, कह रहे कि आर्सेनल अजय है, इनविंसिबल है, उसको कोई भी हरा नहीं सकता है अभी समय। हालांकि मैच अभी समाप्त नहीं हुआ है। ब्राइटन लीडिंग बाय 3-0 अगेंस्ट आर्सेनल। सो वॉच आउट फॉर ब्राइटन 3-0। टोटेनहम हॉटस्पर की आज हार हुई, आज का पहला मुकाबला। अर्ली किक ऑफ टोटेनहम 2 एस्टन विला 3। इसमें 3 प्रथम गोल स्कोर किया एस्टन विला ने। मंजाम्बी ऑन टारगेट, निकोला जैक्सन, एमिलियानो बुएंडा का एक सुपर्ब गोल, 3-0 से आगे अंटिल 79th मिनट। तब तक टोटेनहम हॉटस्पर के फैंस मैदान छोड़कर भागने लगे थे। उसके बाद कोनो गलागेर ने एक गोल कम किया 86 मिनट पर। उसके बाद इंजुरी टाइम में एक और गोल, यान पोल वन हैक के ऑन टारगेट। टोटेनहम ने इस सीजन अपने 5वें मैच में जाकर 2 प्रथम गोल स्कोर किए, उनके पहले गोल है ये, लेकिन फिर भी उनकी हार हुई। सो हैट्स ऑफ टू एस्टन विला जिसकी जीत हुई 3-2 से टोटेनहम के मैदान पे। ब्राइटन 3-0, ये हाफ टाइम रिजल्ट।

0: गलत है। एवर्टन 1-0 से अभी इप्स्विच टाउन को हरा रही है। गोल कर्टेसी ऑफ चियानो बैरी फॉर एवर्टन। न्यूकासल यूनाइटेड 2-0 से हल सिटी को हरा रहा है। हल सिटी का हल निकल आया है इस बार। न्यूकासल 2 हल सिटी 0। जोसेफ विलॉक एंड लेविस हॉल ऑन टारगेट और इसमें एक पेनाल्टी युआन मिसा ने मिस भी की। सो न्यूकासल लीडिंग बाय 2-0 अगेंस्ट हल सिटी। रात के 8:30 आज का आखिरी मुकाबला होगा बिटवीन नॉटिंघम फॉरेस्ट एंड कोवेंट्री सिटी। सुनते रहिए, बाद में बताएंगे आपको कौन कौन से मैच कल के लिए रखे गए हैं। स्पेन के लालीगा, जर्मनी के बुंडेसलीगा, फ्रांस के लीग और बाकी इटली के सीरिया में भी कई मैच खेले जा रहे हैं। आज हम बात करेंगे लोकल फुटबॉल की भी। सो स्टे ट्यून टू आर एम ट्यू रेडियो मस्ती। विकास और हुआ आपके साथ रात के 9 बजे तक। 5499-1294 कीप टेक्सटिंग मी।
1: Radio Musti.
2: Jhankar Beats.
0: Coming next, aapke messages on 5499-1294.

0: इस प्यार के लिए शुक्रिया.
1: Ladies and gentlemen, you are listening to Jhankar Beats.
2: RM2 Radio Musti.
0: शुक्रिया मेहरबानी आपकी जुड़ने के लिए और चुनने के लिए रेडियो मस्ती आर एम टू एवरी सैटरडे 7 to 9. सो ग्रेट फुटबॉल मैचेस गोइंग ऑन स्टिल. आर्सेनल 0 ब्राइटन एंड होव 3. ब्राइटन के मैदान पे समय 3-0 से इट्स इनसेन, पागल कर देने वाला ये नतीजा है. बट कुछ भी हो सकता है, जस्ट वेट एंड सी. और सुनते रहिए आर एम टू रेडियो मस्ती झंकार बीट्स सैटरडे इवनिंग 7 to 9. सो संगीत भी एकदम जादू भरा संगीत. कहीं संगीत दिल की धड़कनों को तेज कर रहा है तो कहीं मैदान में खिलाड़ी पसीना बहा रहे हैं और कहीं कहीं तो खूब खून भी पी रहे हैं, वो भी बाल्टी भर भर के. जो खिलाड़ी खेल नहीं रहे हैं, जो कोच अपना काम ठीक से नहीं कर रहे हैं, ये सब भी खेलते हैं लेकिन खराब खेल खेलते हैं. एंड वी हैव सम मैसेज ऑन 5499-1294-5499-1294 पे. ये है श्वेता की ओर से फ्रॉम बोनाकई. अगला गीत डेडिकेटिंग द सॉन्ग टू आपके हब्बी, आपके दुदू हब्बी रोशन के लिए फ्रॉम हिज वाइफी बुब्बू. एंड आप उनसे कहना चाहती हैं कि आप उनसे बेतहा मोहब्बत करती हैं और प्यार करना भी चाहिए. फ्रॉम वाइफी टू हब्बी. सो दिस इज़ फ्रॉम श्वेता जी. नेक्स्ट मैसेज ऑन 5499-1294-5499-1294 पे. ऑल गुड. यस ये है फ्रॉम सोनी ऑफ सेंट फ्रांसवा कालोजिन. कह रहे हैं कि विशिंग यू ए सुपर्ब सैटरडे, विशिंग योर फैमिली, आपके परिवार को एक सुपर्ब सैटरडे. ऑफकोर्स सभी फैमिलीज को भी, फ्रेंड्स एंड डॉटर रीमा एंड सोन इन लॉ दामाद बाबू केविनाश को भी जो कनाडा में है, उनको आप विश कर रहे हैं फॉर ए सुपर्ब सैटरडे. और कनाडा की बात हुई तो बता दें कि हमारे भाई भी अभी आए हुए हैं कनाडा से. अनेश को कहेंगे हैप्पी बर्थडे, बिलेटेड हैप्पी बर्थडे. आपके लिए एक स्पेशल बर्थडे सॉन्ग भी अभी हम करेंगे, डेडिकेट करेंगे. सो अजय भी साथ में है, मुकेश भी है, एंड ऑल फैमिली एंड फ्रेंड्स सेलिब्रेटिंग टुनाइट. और आपके साथ भी हम भी हैं, चाहे यहाँ पर भी है लेकिन बॉडी माइंड एंड सोल साथ साथ आपको ढेर सारी शुभकामनाएं दी. लेकिन ये एंड देव साहब ने भी मैसेज भेजा है, कह रहे कि आज और कल उनके यहाँ दो ज़बरदस्त फुटबॉल मैच हैं जिनके बारे में बात करेंगे इस गीत के बाद.

0: Ladies and gentlemen, you are listening to Junga Beats.
1: RM2, Radio Musti.
2: तो चलिए फर्स्ट थिंग फर्स्ट, इंग्लिश प्रीमियर लीग के रिजल्ट। 77th मिनट बीइंग प्लेड और अभी तक ब्राइटन 3-0 से तोड़ रही है आर्सेनल को। अनबिलीवेबल, लेकिन फुटबॉल में ऐसा भी होता है और सब कुछ कुछ भी हो सकता है और सब कुछ हो सकता है। ब्राइटन 3 आर्सेनल 0, एवर्टन 1 इप्सविच टाउन 0। इप्सविच टाउन के लिए एक रेड कार्ड भी मिला है। न्यूकासल यूनाइटेड नाउ 2 हल सिटी 1। खेल का ये 75वां मिनट है, सो हल सिटी अपना हल ढूंढ सकता है कभी भी किसी भी समय। एंड मैच इज कमिंग लाइव ऑन MBC 11, न्यूकासल यूनाइटेड वर्सेस हल सिटी। और एवर्टन 1-0 से लीड करिए अगेंस्ट इप्स्विच टाउन। सो जबकि आज का जो पहला मैच था उसमें टोटेनहम हॉटस्पर की फिर हार हुई, टोटेनहम 2 एस्टन विला 3। स्पेन की ला लीगा में एक फुल टाइम रिजल्ट, ओसासुना 1 रेयो वालेकानो 1, मैच ड्रॉ पर संपन्न हुआ। और आज रात एफसी बार्सिलोना एवे जाएगी सेविलिया के मैदान पे। इटली के सीरिया में भी आज दो मैच पूरे हो चुके हैं फुल टाइम रिजल्ट। बोलोनिया 1 टोरिनो 1, उदिनेजे 0 कैग्लियारी 1। आज रात 8 बजे, यस गुड टाइम, एएस रोमा वर्सेस इंटर मिलान। फिर रात लगभग 11 बजे वेनेजिया का मुकाबला एसएस लाजियो से। और जर्मनी के बुंडेसलीगा में भी 4 मैच समाप्त हो गए हैं, इनके बारे में हम बात करेंगे। इस समय फ्रांस के लीग ए में पारी एफसी का मुकाबला स्ट्रासबूर से हो रहा है। सो आपके मैसेज ऑन 5499-1294, लेट्स ऑनर आवर लिसनर्स। आपके सम्मान में ये मैसेज। बात कर रहे थे फुटबॉल की, सो लोकल फुटबॉल में भी आपने बताया, देव साहब ने बताया अपने दोस्त आविश की ओर से कि कल प्लेंडी पपाई के मैदान पे दो मैच खेले जाएंगे दिन के शाम 4 बजे। एक पहला मैच ड्रैगन वर्सेस स्वानजी और कल शाम 6 बजे वहीं के मैदान पे व्हाइट स्पैरो का मुकाबला स्पर्स टीम बी से होगा। और अपने ग्रुप ए और ग्रुप बी की भी जानकारी दी है, थैंक यू इसके लिए। सो आपके जो ये सब खबरें हैं, जानकारी है, आप हम तक पहुंचाते रहिए ऑन 5499-1294, 5499-1294। कल जो है आप रिजल्ट भी दीजिए ताकि हम मंडे की सुबह इसको अनाउंस भी कर सकेंगे। एंड वन मोर मैसेज, कह रहे हैं कि इस समय आप लोग गाना सुन रहे हैं आपके ट्विन सॉन्स जुड़वा बेटे नील और शेन के लिए। आपकी बेटी है तेशा, हु आर हैविंग डिनर, सो आपको कहेंगे शुभाहार व्हाइल लिसनिंग टू द रेडियो। ऑल्सो टू योर हस्बैंड नितेश जो इस समय काम कर रहे हैं। फ्रॉम मामा शेषना, और ये सब आपके लिए।
0: झंकार बीट्स
1: RM2 रेडियो मस्ती।
0: झंकार बीट्स।

0: Ladies and gentlemen, you are listening to
1: Chunga Beats.
2: RM2, Radio Musti.
3: सर बजकर 49 मिनट और 10 सेकंड, द क्लॉक इज टिकिंग और आर्सेनल वर्सेस ब्राइटन अभी तक 3-0 से आर्सेनल टूट रही है. खेल का ये 86वां 86 मिनट बीइंग प्लेड और आर्सेनल कौन मान सकता था, हु कुड बिलीव कि ऐसा भी हो सकता है फुटबॉल में. सच ए मिक्स बैग ऑफ ए सीजन, कहीं उतार तो कहीं चढ़ाव, कहीं जीत तो कहीं हार. पर आर्सेनल के फैंस कह रहे हैं कि इनफ इज इनफ. ऐसा मालूम पड़ता है कि आर्सेनल के फैंस भी अभी मैदान छोड़कर भाग रहे हैं. कहते हैं ना, सबकी बारी आती है, सबकी बारातें आती हैं. सो आर्सेनल की भी बारी आ गई. बट दे आर गुड, दे आर बेटर, दे मे बी द बेस्ट. लेकिन ऐसा भी होता है,

0: कभी हार तो कभी जीत होती रहती है। सो इस समय आर्सेनल हार रही है 3-0 से और मैच समाप्ति की ओर बढ़ रहा है। एंड बाकी जगहों पे इट्स द सेम रिजल्ट, न्यूकासल 2 हल सिटी 1, एवर्टन 1 इप्सविच टाउन 0, ब्राइटन 3 आर्सेनल 0। और आपके मैसेज ऑन 54991294549912994 पे वी हैव ए बर्थडे विश, ये सालगिरह का संदेश जो है, टू हैप्पी फर्स्ट बर्थडे टू लिटिल आराध्वी, आपको हार्दिक बधाई आराध्वी, आपकी पहली सालगिरह है, पहला जन्मदिन है आराध्वी मुहूर्त। बेस्ट विशेस फ्रॉम मामा युदिशा, पापा नीतीश, दादी कविता, चाचा नीलेश, भाई आवेश, आपकी बड़ी माँ अनीशा है, बड़े पापा आतिश, नानी पूनम, नाना सूरज और मामू यौवन की ओर से ए वेरी हैप्पी फर्स्ट बर्थडे टू लिटिल आराध्वी। 54991294549912994 पे बता रहे थे कि ये किसका किसका मैसेज है। सो डू वी हैव ए मैसेज फ्रॉम, हाँ ये हो गया है। एंड नमस्ते सिस्टर, अच्छा भैया कह दो, कोई नहीं अभी भैया माइक पे है, मैं विकास, और आप भेजते रहिए 54991294 पे, 54991294 पे आपका मैसेज। और ये भदवग विदेश से आप कह रहे हैं कि किसी भी गाने पर आपका नाम लिखते, जैसे कभी कभी पत्र लिखते हैं ना, कहते हैं जब भेजते हैं वैकेंसी के लिए, कहते हैं टू हुम इट मे कंसर्न, ऐसा नहीं होता है ऐसा नहीं करना चाहिए, किसी भी गाने पर नहीं, कोई एक स्पेशल गाना आपके लिए चाहिए। On 54991294549914 पे। Also for किसके लिए है ये गाना, baby के लिए, listening right now, and आपको भी प्रणाम। This one Nagisa family of Saint Francois from Kev, Reem and Misha, listening right now from Canada, wishing your mother-in-law, आपकी सासुमा सोनी, a very happy birthday, और उनका birthday था 15th, 15वीं तारीख को, 15 सितंबर को, a belated happy birthday to you, सासुमा, regards to nani, mamu, mami and Nagisa family of Saint Francois from Kev, Reem and Misha.
1: Jhankar Beats
2: RM2 Radio Musti
1: Jhankar Beats
0: प्यार से प्यारा कुछ भी नहीं और इस गाने से प्यारा कोई भी गाना नहीं। 1989

0: संगीत ने यदि आपको थोड़ा सा सुकून दिया है तो दिल थाम कर बैठिए और बता दें आपको कि फुल टाइम रिजल्ट आज आर्सेनल की हार हुई. इट्स ए क्रैश. ब्राइटन 3 आर्सेनल 0. इट्स फुल टाइम रिजल्ट. एवर्टन 1 इप्सविच टाउन 0. और आज न्यूकासल यूनाइटेड की भी जीत हुई सेंट जेम्स पार्क में. इट्स न्यूकासल 2 हल सिटी 1. सबसे बड़ी हार तो आर्सेनल को हुई और वो भी एक नहीं दो नहीं तीन 3-0 से. एंड इट्स happening. It's a mixed bag of season. English Premier League ki race is still on.
1: RM2 Radio Musti.
2: The time is brought to you by
3: McDonald's. Ba-da-ba-ba-ba. I'm loving it.
2: And RKG Classic Pure Cow Ghee.
1: Radio Musti.
4: North. South.

0: झनकार बीट्स
1: RM2 रेडियो मस्ती
2: टू स्टूडियो और रेडियो मस्ती और RM2 पर आज झंकार बीट्स विद मी विकास रामथनी एंड यू आर ट्यून्ड टू द बेस्ट रेडियो स्टेशन अक्रॉस द आइलैंड. और आज एक स्पेशल बर्थडे विश है. आज की रात कोई अपना बर्थडे मना रहा है, सो वी से ए वेरी हैप्पी बर्थडे टू यू अनेश. अनेश रामथनी आज इस समय बड़ी जमावत में है और आए हैं कनाडा से यहाँ पर अपना बर्थडे मनाने के लिए. और आज की ये शुभकामना उस स्पेशल शख्स के लिए जो कनाडा से आकर यहाँ पर परिवार में, परिवार के साथ, फैमिली के साथ और फ्रेंड्स के साथ अपना 60th बर्थडे मना रहा है. सो वी से ए वेरी हैप्पी बर्थडे टू यू अनेश. परिवार के साथ मनाने के लिए वापस हमारे बीच आए हैं. सो 60 years, 60 साल सिर्फ उम्र का पड़ाव नहीं है, बल्कि यादों, रिश्तों, संघर्षों, स्ट्रगल्स, उपलब्धियों, अचीवमेंट्स और प्यार से भरी एक खूबसूरत यात्रा है. इट्स एक सफ़र है, एक ट्रैवल है जो आपने तय किया. और ये गाना जो है आपके नाम, ख़ासतौर पे आपके सभी दोस्तों की ओर से, आपके फैमिली मेंबर्स की ओर से. वी हैव आपका भाई है मुकेश एंड लूना है भाभी, फिर निशा, अनिल चतारू, रामधनी परिवार, चंद्रमणि पुप्पू है, हाय पुप्पू प्रणाम, और अभिषेक से गुलाम है, अक्षय साथ में है, विनय मामी वीना है, शीतल फैमिली, मुहाबीर परिवार, सीगुलाम फैमिली, अशोक बुआबल भी साथ में है, अश्मिता, गीता और अनिला. विशिंग अनेश ए वेरी हैप्पी बर्थडे बॉडी माइंड एंड सोल. पूरे आत्मा के साथ आपको कहेंगे ए वेरी हैप्पी बर्थडे, ढेर सारी शुभकामनाएं. कनाडा से मॉरिशस तक का ये सफ़र आज सचमुच खास हो गया है, क्योंकि 60वां जन्मदिन, 60th बर्थडे अपनों के बीच मनाने की खुशी ही अलग होती है. सो वी विश यू ए वेरी हैप्पी बर्थडे, हैप्पी 60th बर्थडे डियर ब्रदर. ईश्वर आपको लंबी उम्र, उत्तम हेल्थ, स्वास्थ्य, सुख, शांति और ढेर सारी खुशियाँ प्रदान करें. वी वॉन्ट टू प्ले दिस फॉर यू सबसे पहले, सो एंड देन गाना आएगा आपके लिए.

मैदान में कितना भी बड़ा या कड़ा मुकाबला हो, एक अच्छी धुन, एक अच्छी म्यूजिक तनाव को पल भर में दूर कर देती है ना? और पुरानी सुनहरी यादें एकदम फिर ताजा हो जाती है।

0: Ladies and gentlemen, you are listening to
1: Junka Beats.
2: RM2, Radio Musti.
3: बैक टू स्पोर्ट्स न्यूज. आर्सेनल को मिली उसकी पहली हार आज रात 3-0 से. ब्राइटन ने उसे हराया हो मैदान पे. सो आर्सेनल को मिली उसकी पहली हार. द गन इज गन डाउन 3 times. तीन तीन गोल वे कंसीड कर चुके हैं एंड हैंडेड देयर फर्स्ट लॉस. यानी कि अब आएगा मजा क्योंकि बाकी जो

में है, केवल मैनचेस्टर सिटी को छोड़कर बाकी सब टीमें कम से कम एक मैच हार चुकी हैं एंड कुछ तो अभी भी एक भी जीत नहीं हुई है, टोटनहम हॉटस्पर ने एक भी जीत हासिल नहीं की है। एंड टुमारो कल के जो मैच हैं, कल शाम 5 बजे बोर्नमुथ वर्सेस लिवरपूल, क्या ये एक नई जीवन धारा मिली है लिवरपूल को, नई लाइफलाइन, अन्यथा अभी स्टैंडिंग में लीग टेबल में आर्सेनल अभी सेकंड पोजीशन पे आ गया है ऑन गोल डिफरेंस, उसके पास हैं 12 अंक, मैन सिटी विद 12 पॉइंट्स इक्वली, लेकिन सिटी ने एक मैच कम भी खेला है। ब्राइटन तीसरे स्थान पर आ गई है मजबूती के साथ विद 10 पॉइंट्स। ब्रेंटफोर्ड ने कल जीत हासिल की और वह भी 9 अंक लिए चौथे स्थान पर हैं। एवर्टन 5वें पोजीशन पर, आज उसकी जीत हुई 9 अंक। लीड्स छठे पोजीशन पर है, उसके पास है 8 अंक, जबकि लिवरपूल 10वें स्थान पर उतर आई है क्योंकि बाकी टीमों की आज जीत हुई। सो लिवरपूल के पास है 4 मैचों के बाद 6 अंक, कल यदि उनकी जीत हुई तो वे थोड़ा सा ऊपर जा सकते हैं। सो इट्स हैपनिंग, अभी केवल 5वां सप्ताह है, पिक्चर अभी बाकी है, अभी केवल कुल मिलाकर 38 मैचेस कुल मिलाकर प्रीमियर लीग में खेले जाते हैं और अभी दिल्ली दूर है। सो कल के मैच बोर्नमुथ वर्सेस लिवरपूल कल शाम 5 बजे, उसी समय लीड्स का मुकाबला क्रिस्टल पैलेस से, मैनचेस्टर सिटी प्लेइंग सन्डरलैंड एतिहाद स्टेडियम में, सिटी सन्डरलैंड, ये मैच भी कल शाम 5 बजे खेला जाएगा। और कल का जो लेट मैच है, लेट तो नहीं लेकिन लेट हो सकता है द रेड डेविल्स के लिए, सिंस दे लॉस्ट अगेंस्ट ब्राइटन लीग कप में, और कल 7:30 PM इट्स गोइंग टू बी फुलहम वर्सेस मैनचेस्टर यूनाइटेड। कीप टेक्सटिंग मी ऑन 5499 1294। दोस्ती के लिए और दोस्तों के लिए।

बात करें अब लोकल स्पोर्ट्स की। स्थानीय फुटबॉल में कुसाफा अंडर 20 फुटबॉल टूर्नामेंट शुरू हो चुका। अभी फ्राइडे कल शुक्रवार को की शाम मॉरिशस की अंडर 20 टीम की हार हुई 1-0 से। नामीबिया ने उसे हराया 1-0 से, बट होता है 1-0 से, इट्स नॉट दैट ए बैड रिजल्ट। और अभी द बेबी डोडोज जो हैं उनको उनकी पहली हार हुई। अभी एक और मैच कल संडे को खेला जाएगा इसी टूर्नामेंट में, कल सेशल्स के विरुद्ध ये मैच होगा, इस बार मापुटो मोजाम्बिक में। सो हार्दिक शुभकामनाएं हमारी टीम को, जिसके जो जो सरजू कौरशंकर की अगुवाई में उनके लीडरशिप में ये टीम अभी ट्रेन कर रही है। सो एक पहला मैच हारने के बाद कल सेशल्स के खिलाफ ये टीम खेलने वाली है, मैदान पर उतर रही है। और बता दें कि इस टूर्नामेंट में ओनली वन टीम विल बी क्वालिफाइड, सो सभी के सभी मैच जीतने होंगे अनलेस नामीबिया भी हार जाए और बाद में क्लब एम बेबी क्लब एम बाकी सभी मैच जीतकर फर्स्ट पोजीशन पर आए। सो ये कुसाफा कप को लेकर ये खबर ये भी है कि मॉरिशस की टीम को एयर बैडमिंटन में अफ्रीकन चैंपियनशिप एयर बैडमिंटन टूर्नामेंट में मॉरिशस को मिला एक सिल्वर मेडल, चांदी का पदक मेंस ट्रिपल में। और हमारी टीम ने फाइनल में बेने को हरा, हमारी टीम नहीं हरा पाई और उनकी हार हुई 3-0 से अगेंस्ट से बेने। लेकिन इससे पहले सेमीफाइनल में मॉरिशस ने इजिप्ट को 3-2 से परास्त कर एक सिल्वर मेडल हासिल किया। हार्दिक बधाई मॉरिशस की टीम को। 5499-1294-549-9912-94 पे वी हैव ऑल्सो कल रोशनुआ स्पोर्ट्स क्लब द्वारा आयोजित टूर्नामेंट में कल संडे की शाम 3:30 वहीं के फुटबॉल मैदान पे सबाकुस बॉम्बू वेरिये का मुकाबला ब्लैक कैरोल ग्रां बे से है। ये है लोकल स्पोर्ट्स, आप भी हम तक पहुंच सकते हैं 5499-1294-549-9912-94 पे।

0: Ladies and gentlemen, you are listening to
1: Junga Beats.
2: RM2, Radio Musti.
3: बस बावला मत होना, आज तो कमाल हो गया, आर्सेनल हार गया 3-0 से अगेंस्ट ब्राइटन, और एक मैच अभी भी शुरू भी हुआ है, नॉटिंघम फॉरेस्ट वर्सेस कोवेंट्री सिटी, खेल का ये 10वां मिनट है, और अपने रिएक्शन में आर्सेनल के बॉस मिकेल आर्टेटा ने कहा कि उन्होंने रिस्पेक्ट नहीं किया, एंड ए रियली डिसअपॉइंटिंग रिजल्ट एंड परफॉर्मेंस, ब्राइटन वर अनदर गियर अप फ्रॉम अस, और वी वर एक्सट्रीमली पूर टेक्निकली एंड नॉट रिस्पेक्टिंग द गेम, ऐसा कहा मिकेल आर्टेटा ने, जिसने सारा क्रेडिट ब्राइटन को दिया कि जो

0: अनदर एक और लेवल पर थे आज, और सप्ताह के दौरान इन्होंने मैनचेस्टर यूनाइटेड को भी हराया था, और वो भी 2-0 से हारने के बाद, एंड देन दे पुट 3 goals. कुछ तो है इस टीम में, एंड बस वी हैव टू वॉच आउट कि ब्राइटन आगे आगे करता है क्या. सबकी बारी आती है और सबके बारे में होता रहता है, और हम आपको सुनाते रहेंगे ऑन आरएम चुरेजो मस्ती एवरी सैटरडे एंड संडे मॉर्निंग एट 7:30 AM शार्प विद मोर न्यूज व्यूज एंड रिव्यूज. So, क्या खबर है अभी, और बढ़ते हैं कुछ और चैंपियनशिप की ओर. स्पेन की लालीगा में वी हैव 2 matches, ओसासुना 1 रेयो वालेकानो 1 फुल टाइम रिजल्ट, एथलेटिक भी 0 अलावेस 0. इस समय सेल्टा विगो का मुकाबला रेसिंग सांतांडे से, और सेविल्ला खेलेगी रात को एफसी बार्सिलोना के विरुद्ध. इटली के सीरिया में 2 मैच समाप्त हो गए हैं, बोलोनिया 1 टोरिनो 1 उडिनेजे 0 कैग्लियारी 1, और एएस रोमा इस समय 38 मिनट बाद, ओनली आफ्टर 38 मिनट, Roma leading by 2-0 against Inter Milan. So, Manu Kone on target for AS Roma. Aur abhi picture baki hai. Roma 2, Inter Milan 0. Khel ka ye 38wa, 38 minute hai. Aur Germany ke Bundesliga mein kal to kamal hi ho gaya. Kal Harry Kane ki team Bayern Munich ne 7-0 se apne प्रतिद्वंदी को हराया, 7-0 से पछाड़ा. इसमें हैरी केन ने अपना सेंचुरी पूरा किया, बल्कि 101वां गोल भी, 101 गोल केवल कितने सारे मैचों में उसने, बहुत कम मैचों में उसने इतने सारे गोल, और एक नया रिकॉर्ड बनाया है बुंडेसलीगा में, सबसे ज़्यादा गोल बनाने वाले, और सबसे कम मैचों में उसने सबसे ज़्यादा गोल बनाया है. हैट्स ऑफ टू हैरी केन, जो कमाल कर रहा है अभी जर्मनी के बुंडेसलीगा में. एंड टुडे वी हैड 4 matches, चारों समाप्त हो गए हैं. फुल टाइम रिजल्ट, बोरुशा मोंचेनग्लादबाक 3, माइंस 4, आइंट्राख्ट फ्रैंकफर्ट 2, फ्रीबर्ग 2, हैम्बर्ग एसवी 2, एफसी कोलोन 1, और वर्डर ब्रेमेन ने ऑग्सबर्ग को 3-2 से परास्त किया.
1: झलकार बीट्स
2: RM2 रेडियो मस्ती
1: झलकार बीट्स.

0: Ladies and gentlemen, you are listening to
1: Junga Beats.
2: RM2, Radio Musti.
3: इंग्लिश प्रीमियर लीग का ये पांचवा सप्ताह है और एक मैच अभी खेला जा रहा है. नॉटिंघम फॉरेस्ट 0 कोवेंट्री सिटी 0. पर बता दें कि जिन्होंने अभी चुन किया है कि आज रात आर्सेनल डिफेंडिंग चैंपियन आर्सेनल की हार हुई, बुरी तरह से वो पिट गई. ब्राइटन ने उसे लगातार 3 सीजन के लिए इस बार 3-0 से हराया. और बता दें कि डिफेंडिंग चैंपियन है आर्सेनल, इंग्लिश प्रीमियर लीग चैंपियन. सो ब्राइटन हैज़ डिफीटेड द रेनिंग EPL चैंपियन एट होम फॉर 3 consecutive seasons. यानी कि ब्राइटन के साथ आर्सेनल चाहे वो चैंपियन हो या कुछ भी हो, आर्सेनल की दाल नहीं गलती है. Here we go. रोमानो कह रहा है कि बार्सिलोना साइन 16-year-old टैलेंट डैनी फ्रायर. फैब्रिजियो रोमानो के मुताबिक बार्सिलोना ने इस यंग टैलेंट को साइन कर लिया है, डैनी फ्रायर को. और बंदा जो है डील अग्रीड एंड हियर वी गो. पोर्टुगीज अटैकिंग मिडफील्डर है और उसने अपना ट्रायल भी पास कर लिया है एंड ही साइंस हिज बार्सिलोना कॉन्ट्रैक्ट टुडे. एंड ये यंग टैलेंट की बात हुई तो बता दें कि मैनचेस्टर यूनाइटेड का यंग टैलेंट जे गैब्रियल ने अपने रजिस्ट्रेशन रद्द कैंसिल करने की मांग की है मैनचेस्टर यूनाइटेड के साथ, प्रोबेबली ड्यू टू लेस गेम टाइम इन मैनचेस्टर यूनाइटेड. और वो फ्रांस भी गया था पेरिस सेंट जर्मेन में देखने के लिए और आजकल वो अभी कल ही शायद या आज सुबह वो स्पेन पहुंचा है जहां पर FC बार्सिलोना और रियल मैड्रिड भी उसे साइन करना चाहते हैं. लेकिन देखते हैं आखिर में होता है क्या. सो लास्ट फॉर द रोड ये गाना और एक और गाना एंड देन कल मिलेंगे 7:30 AM शार्प विद मोर न्यूज व्यूज एंड रिव्यूज.
0: Set

0: हमें भी ले चलिए आज के सफर में, कभी हम मैदान में दौड़े तो कभी संगीत की धुनों पर झूमे और कभी अपने पसंदीदा खिलाड़ियों और कलाकारों की दुनिया में खो गए। थैंक यू चुनने और जुड़ने के लिए। याद रखिए, खेल हमें जीतना सिखाता है और संगीत हमें महसूस करना सिखाता है। एंड दिस इज अ ब्लेंड ऑफ म्यूजिक एंड स्पोर्ट्स, केवल यहीं पर RM2 रेडियो बस्ती, एवरी सैटरडे 7 to 9। इसी खूबसूरत सोच के साथ मैं अपने आपसे लेता हूं विदा। जुड़े रहिए, मुस्कुराते रहिए और म्यूजिक का वॉल्यूम थोड़ा ऊंचा रखिए, क्योंकि जिंदगी की प्लेलिस्ट अभी बाकी है। नमस्कार और शुभ रात्रि।
1: झंकार बीट्स
2: RM2 रेडियो मस्ती
1: झंकार बीट्स।

0: Welcome to RM2
1: Radio Musti.
2: North, South,
3: 103.5,
2: East, West,
3: 96.4,
2: Center,
3: 99.

So well, ladies and gentlemen, a very good evening. It's time for your late night grooves. 9 से लेकर 12 बजे तक आपको एंटरटेन करेंगे हम इन प्यारे गानों के साथ. So मैं हूँ परी आपके साथ और आप सभी का वार्म वेलकम.

एक ख्वाब ने आंखें खोली हैं, क्या मूड आया है कहानी में।

कभी कभी ना दोस्तों हमें कभी किसी एडवाइस की ज़रूरत नहीं होती, बस एक अच्छा गाना और वो गाना जो है वो हमारे पूरे जो इमोशंस हैं उन्हें एक्सप्लेन कर जाता है. सो सिंपली फील द सॉन्ग्स टुनाइट एंड आई गेस कि ये जो गाने हैं वो भी आज आपके कुछ सवालों के जवाब दे जाएं और आपको बेटर फील करवा जाएं.

एंड वेल फ्रेंड्स, जैसे हम हमेशा कहते हैं देयर इज समथिंग ब्यूटीफुल अबाउट नाइट टाइम. दिन के नॉइज के बाद थॉट्स थोड़े से क्लियरर लगते हैं और मे बी इसीलिए लेट नाइट सॉन्ग्स दिल के थोड़े से

एंड वेल फ्रेंड्स, आज आपका दिन कैसा भी क्यों ना रहा हो, सक्सेसफुल, स्ट्रेसफुल, कंफ्यूजिंग या सिंपली ऑर्डिनरी, म्यूजिक जो है वो आपके माइंड को रीसेट जरूर करता है. नो प्रेशर, नो रश, बस गुड म्यूजिक एंड गुड वाइब्स. सो ऐसे ही कुछ प्यारे गाने आपके लिए हम चलाते जाएंगे. और अभी के लिए जो नेक्स्ट ट्रैक है हमारे सभी डियर लिसनर्स के नाम.

जाने वाली गाड़ी प्लेटफॉर्म नंबर 12 के बदली प्लेटफॉर्म नंबर 36 पे आएगी।

0: प्लेटफॉर्म नंबर 36 पे आएगी।
1: एंड वेल फ्रेंड्स, हर एक गाना खास होता है और नेक्स्ट ट्रैक के साथ हम बढ़ने वाले हैं नेक्स्ट आवर की ओर। परी का साथ रहेगा इन योर लेट नाइट ग्रूव्स रात के 12 बजे तक।

तो चलिए दोस्तों, यहाँ पर आपका हम स्वागत कर रहे हैं वंस अगेन इट्स योर ब्यूटीफुल शो, जहाँ पर रात के 9 से लेकर रात के 12 बजे तक हम लेकर आते हैं कुछ सुपर रोमांटिक सॉन्ग्स. सो इट्स टाइम फॉर योर लेट नाइट ग्रूव्स एंड अ वार्म वेलकम इन दिस आवर.

वेल फ्रेंड्स, कुछ गाने सुनते ही ना एक पर्टिकुलर फेस याद आ जाता है, एक प्लेस, एक कन्वर्सेशन या फिर कोई पुरानी फीलिंग। म्यूजिक की मेमोरी पावर कमाल की होती है, एक ट्यून और पूरा सीन रिवाइंड। सो आई गेस कि जो नेक्स्ट गाना है वो शायद आपको ऐसा ही फील करवाए। एंजॉय दिस वन।

एंड वेल फ्रेंड्स, टुनाइट वी आर नॉट चेजिंग द क्लॉक. रात से लेकर, यानी कि रात के 9 बजे से लेकर मिड नाइट तक मेलेडीज का सफर बस आप ही के नाम होने वाला है. सो वेर एवर यू आर, होम का, बालकनी या फिर सिंपली लाइंग इन योर बेड, लेट म्यूजिक कीप यू कंपनी अभी से लेकर रात के 12 बजे तक. मैं हूं परी आपके साथ.

वेल फ्रेंड्स, इन गानों की कुछ अलग ही बात होती है और ये जो गाने हैं कभी लगता है कि कुछ कह रहे हैं, कभी लगता है कि ये गाने जो है वो बिल्कुल हमारे लिए ही बने हैं और कभी लगता है कि वह क्या गाना है, जैसे कि कंप्लीट आपकी स्टोरी इस गाने ने बयां करती हो. सो दैट्स द पावर ऑफ सॉन्ग्स और यही प्यारे गाने मॉर्निंग से लेकर नाइट तक आपके लिए ऑन RM2 रेडियो मस्ती.

0: RM2
1: Radio Masti.
0: Feel the Masti.

सो वेल फ्रेंड्स, वॉल्यूम अभी के लिए थोड़ा सा हाई कर दीजिए और इसी ट्रैक के साथ हम बढ़ने वाले हैं आपके नेक्स्ट आवर की ओर। मुलाकात होगी 11 बजे के बाद। दैट्स योर लेट नाइट ग्रूव्स। मैं हूं परी आपके साथ।

0: बेबी को बेस पसंद है।
1: वेलकम टू RM2
2: रेडियो मस्ती
3: नॉर्थ साउथ
2: 103.5
3: ईस्ट वेस्ट
2: 96.4
3: सेंटर
2: 99.4
1: RM2 Radio Musti.
2: Radio Musti.
1: The latest news and the greatest mix of music. Feel the Musti.

वेल फ्रेंड्स, रात का एक अलग ही चार्म होता है। स्ट्रीट्स जो है क्वाइटर होती है, कन्वर्सेशंस जो है थोड़े से सॉफ्टर होते हैं और म्यूजिक थोड़ा सा और डीप फील होता है। मे बी इसीलिए ये जो लेट नाइट ग्रूव्स हैं थोड़े से और अच्छे लगते हैं। सो अभी से लेकर हम तो रात के 12 बजे तक है आपके म्यूजिकल हमसफर। हो जाइए नेक्स्ट ट्रैक आपके नाम।

वेल फ्रेंड्स, कभी नोटिस किया है कि हैप्पी सॉन्ग्स हमारे मूड को लिफ्ट करते हैं और इमोशनल सॉन्ग्स हमें समझाने में लग जाते हैं दैट टुनाइट इट्स अ स्पेशल नाइट। जैसे तो हम कहते हैं कि हर एक दिन हर एक पल खास होता है, लेकिन रात का एक अलग चार्म होता है। सो अभी के लिए जो भी मोमेंट्स आपके पास है, एंजॉय द मोमेंट्स एंड मेक इट स्पेशल। RM2 रेडियो मस्ती के साथ।

0: मनी बेन शकुंतला कांता की बड़ी बहन। मेरे डैड बोले कर ले शादी वरना मर जाएगी बूढ़ी दादी।
1: शादी कर आपको दिए शादी कर
2: और कुछ काम नहीं है क्या?
0: गई दिवाली आ गई होली, गई दिवाली आ गई होली। अरे पोस्टपोन कर दे डोली, मैं घर वालों

वेल फ्रेंड्स, अगर आज किसी को मिस कर रहे हैं, मे बी यू डोंट नीड टू फाइट दैट फीलिंग. कुछ मेमोरीज को बस एक सॉन्ग चाहिए होता है और फिर वो अपने आप अपनी पूरी कहानी, अपनी पूरी स्टोरी सुना देते हैं. सो आज ये गाना शायद आपके भी दिल को टच कर जाए, क्योंकि कुछ गाने होते ही खास हैं. हो जाए ये नेक्स्ट गाना आपके नाम, एंड ऑफ कोर्स इफ यू आर थिंकिंग ऑफ समवन वेरी स्पेशल, गाना उनके नाम भी.

रात का टाइम स्लोली स्लोली आगे बढ़ते जा रहा है और गानों का कारवां और भी सुनहरा होते जा रहा है। अभी से लेकर रात के 12 बजे तक ये ट्रैक्स आपके हम सफर बनेंगे और उसके बाद रात भर कुछ ब्यूटीफुल गाने आपके लिए चलते रहेंगे। सो वेल दैट्स योर लेट नाइट ग्रूव्स और साथ देने के लिए शुक्रिया।

एंड वेल फ्रेंड्स, इसी ट्रैक के साथ हम बढ़ने वाले हैं टुवर्ड्स द एंड ऑफ दिस शो. एंड थैंक यू सो मच, आपने इतने प्यार से हमारा साथ दिया. आप बने हमारे म्यूजिकल हमसफर और कोशिश यही रहेगी कि गानों के साथ आपको एंटरटेन करते रहें, गानों के साथ आपके दिल को बहलाते रहें. मुलाकात होगी नेक्स्ट प्रोग्राम में, तब तक के लिए हमारा साथ देते रहिए. एंड परी को दीजिए इजाज़त. हैव अ ग्रेट नाइट, टेक केयर, कीप स्माइलिंग एंड स्टे सेफ.

0: रेडियो मस्ती।
1: जिंदगी एक सफर है सुहाना, यहाँ कल क्या हो किसने जाना।
2: हम भी वो हैं जो कभी किसी के पीछे नहीं खड़े होते, जहाँ खड़े हो जाते हैं लाइन वहीं से शुरू होती है। चलते

वहां भी दिल कहने से डरता है, और मुझे तो इनकार का पूरा यकीन है। तुम ही कहो, उसे कैसे बताऊं, वो किसी और को चाहती है।